कागद मन मसवाणी बुरा पला दोए लेख पए। ज्यो ज्यो किरत चलाए त्यों चलिए तो गुण नाही अंक हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ जाली रैन जाल दिन हुआ जेती कड़ी फाही तेती। रस रस चोग चुगे नित फासे छूटस मूड़े कहन गुणी। काया आरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई। पया मनूर कंचन फिर होए जे गुर मिले तने हा। एक नाम अमृत उह देवे तो नानक त्रिष्टस देहा। मारू महला पहला बिमल मझार बस निर्मल जल पद्मन जावल रे। पद्मन जावल जल रस संगत संग दोख नहीं रे। दादर तू कब है ना जान सरे पक्ष सिबाल बसस निर्मल जल अमृत ना लखस रे। रहाओ बस जल नित ना वस्त अलियल मेर चचा गुन रे। चंद कुमदनी दूरों निवसस अनपौ कारण रे। अमृत खंड दूध मद संचस तू बन चातुर रे। अपना आप तू कब हो ना छोड़स पिसन प्रीत ज्यों रे। पंडित संग वसे जन मूर्ख आगम सास सुने। अपना आप तू कब हो ना छोड़स स्वान पूछ ज्यों रे। एक पाखंडी नाम ना राचे एक हर हर चरणी रे। पूरब लिखिया पावस नानक रसना नाम जप रे। मारू महला पहला श्लोक। पतित पुनीत असंख हो है हर चरणी मन लाग। अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक पाग। शब्द

तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, पणत नानक अंदेसा एही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू मैला पैला मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाउ सभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म ना करना जा।

हुकम पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण काए तो देवाना जानिए जा साहिब तरे प्यार मंदा जाने आपको अवर पला संसार मारू महला पहला इहो तन सर्व रहा भरपूर मन मुख फिर ऐसे जाने दूर सो तन वखर नाम हृदय हमारे जिस तू दे तिसे निस्तार रहाओ ना इहो तन जले ना

परमगत पाए। पंत नानक अकथ की कथा सुनाए, सतगुर मिले तायो तन पाए। मारू मैला पहला सूर सर सोस ले, सोम सर पोख ले, जुगत कर मरत सो संबंध की जय। मन की चपल स्यों जुगत मन राखी है।

मार ले प्रात तज छोड़ तो अप्यो पी जै मीन की चपल स्यों जुगत मन राखी है उड़े ने हंस नह कंद चीज है पणत नानक जनो रवे जे हर मनो मन पवन स्यों अमृत पी जै मीन की चपल स्यों जुगत मन राखी है उड़े ने हंस नह कंद चीज है मारू मैला पैला माया मोई ना मन मुआ सर लहरी मैं मत बोयत जल सिर तरट के साचा वखर जित मानक मन में मन मारसी सच ना लागे कत राजा तख्त टिके गुणी पै पंचायन रत बाबा साचा साहेब दूर ना देख सर्व ज्योत जग जीवना सिर सिर साचा लेख रहाओ ब्रह्मा विष्णु रिखी मुनि शंकर इंद तपे पे खारी माने हुक्म सोहे दर साचे आकी मरे अफारी जंगम जोद जति सन्यासी गुरपुरे विचारी बिन सेवा फल कभू न पावस सेवा करनी सारी नितनया तन निगुरिया गुर निमानिया तू मान अंदुले मानक गुर पकड़िया।

ज्ञान रतन मन मांझी है, बहुड़ना मैला होए, जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन न होए, नानक सिर दे छुट्टी है, मन तन साचा सोए, मारू मैला पहला, जोगी जुगत नाम निर्माइल, ता कै मैल न राती, प्रीतम नाथ सदा सच संगे, जन्म मरण गत बीती, गुसाई तेरा कहा नाम कैसे जाती, जा तो पीतर महल बुलावे, पूछो बात निरंती रहाओ, ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान स्नानी, हर गुण पूजे पाती, एको नाम एक नारायण, त्रिभुवन एका ज्योति, जिहवा डंडी एव कट छाबा, तोलो नाम अजाची, एको हाथ साओ सबना सिर, वनजारे एक पाती, दोवे सिरे सतगुरु निबेड़े, सो बूझे जिस एक लिव लागी, जियो रह निबराती, शब्द वसाए परम चुकाए, सदा सेवक दिन राती, ऊपर गगन गगन पर गोरख, ताका अगम गुरु पुनवासी, गुरु बचनी बाहर

जीओ जिसनु साचा सिफती लाए गुरमुख विरले किसे बुझाए अमृत की सार सोई जाने जे अमृत का व्यापारी जीओ रहाओ फिर सेती तन प्रेम रचाए गुर कै शब्द तथा चित लाए सहज सेती तन खरी सुहेली तृष्णा तिखा निवारी जीओ सहसा तोड़े परम चुकाए सहजे सिफती तनख चढ़ाए गुर कै शब्द मरे मन मारे सुंदर जोगा तारी जियो हों मैं जलिया मनो विसारे।

सतगुर प्रसाद। जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर शरण परे। दालद पंच सुदा में मिलियो भगति पाए तरे। भगत वचल हर नाम कीर्तारथ गुरमुख कृपा करे। मेरे मन नाम जपत उदे तू प्रहलाद बिदर दासी सुत गुरमुख नाम तरे रहाओ। कल युग नाम प्रदान पदार्थ भगत जना उदरे। नामा जय दियो कबीर त्रिलोचन सब दोख गए चमरे। गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किलबिक पाप तरे। जो जो नाम जपे अपराधी सब तिनके दोख पर हरे। बेसुआ रवत अजामल उदरियो मुख बोले नारायण नर हरे। नाम जपत उग्रसेन गत पाई तोड़ बंधन मुक्त करे। जन को आप अनुग्रह किया हर अंगीकार करे। सेवक पैज रखे मेरा गोविंद शरण परे उदरे। जन नानक हर कृपा धारी उर्धरयो नाम हरे। मारू महला चौथा सिद्ध समाध जप्यो लिव लाई। साधक मुन जपया जति सती संतोखी त्याया। मुख इंद्रादिक रविया शरण परे जप्यो ते पाए गुरमुख पार पया। मेरे मन नाम जप करया तन्ना जट बाल्मीक बटवारा गुरमुख पार पया रहाओ। सुर नर गण गंधर्वे जप्यो रिख बपुरे हर गाया। शंकर ब्रह्मे देवी जप्यो मुख हर हर नाम जप्या। हर हर नाम जिना मन पीना ते गुरमुख पार पया। कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत न पाया। वेद पुराण सिमरत हर जप्या मुख पंडत हर गाया। नाम रसाल जिना मन वस्या ते गुरमुख पार पया। अनत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकया। गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया। गुर तार कृपा हर नाम दृढ़ायो जन नानक नाम लया। मारू मैला चौथा कर तीजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर हर नाम निधान ले गुरमत हर पत पाए। हलत पलत नाल चलदा हर अंते ले छड़ाए। जिथे अवकट गलियां पीड़ियां तिथे हर हर मुक्त कराए। मेरे सतगुरा में हर हर नाम दृढ़ाए। मेरा मात पिता सुख बंद पो मैं हर बिन अवर नमाए रहाओ। मैं हर बिरही हर नाम है कोई आन मिलावे माए। तिस आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम दे मिलाए। सतगुरु पुरख दयाल प्रभ हर मेले टिल न पाए। जिन हर हर नाम न चेत्यो से पागहीन मर जाए। ओए फिर जोन पवाई है मर जम में आवे जाए। ओए जम दर बद्दे मारिये हर दरगे मिले सजाए। तू प्रभ हम शरणागति मोको मेल ले हो हर राय। हर तार कृपा जग जीवना गुर सतगुर की शरणाए। हर जियो आप दयाल होए जन नानक हर मेलाए। मारू महला चौथा हौं पूंजी नाम दसाईदा को दसे हर तन रास। हौं तिस विटो खन खनिये मैं मेले हर प्रभ पास। मैं अंतर प्रेम पिरम का क्यों सज्जन मिले मिलास। मन प्यारिया मित्रा मैं हर हर नाम तन रास। गुर पूरे नाम दृढ़ाया हर तीरक हर साबास राव। हर हर आप मिलाए गुर मैं दसे हर तन रास। बिन गुर प्रेम ना लब्बई जन वेखो मन निर्जास। हर गुर विच आप रखिया हर मेले गुर साबास। सागर भगत पंडार हर पूरे सतगुर पास। सतगुर तुठा खोल दे मुख गुरमुख हर प्रगास। मन मुख पाग विहूनिया तिख मोया कंदी पास। गुरदाता दातार है हौ मांगो दान गुर पास। चिरी विछुन्ना मेल प्रभ मैं मन तन वडड़ी आस। गुर पावे सुन बेनती जन नानक की अरदास। मारू महला चौथा हर हर कथा सुनाए प्रभ गुरमत हर हृदय समाणी। जप हर हर कथा वड पागिया हर उत्तम पद निर्वाणी। गुरमुखा मन प्रतीत है
गुरपुरे नाम समाणी। मन मेरे मैं हर हर कथा मन पाणी, हर हर कथा नित सदा कर, गुरमुख अकथ कहानी रहाओ। मैं मन तन खोज टंडोलिया, क्यों पाई है अकथ कहानी। संत जना मिल पाया, सुन अकथ कथा मन पाणी, मेरे मन तन नाम आधार है।

कर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा। हर भाव लगा बैरागिया वडपागी हर मन राख, मिल संगत सरदा उपजे गुर शब्दी हर रस चाख। सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख, मन प्यारिया मित्रा हर हर नाम रस चाख। गुरपुरे हर पाया हलत पलत पत राख, रहाओ हर हर नाम त्याये हर कीरत गुरमुख चाख। तन तरती हर बीजिए विच संगत हर प्रभ राख, अमृत हर हर नाम है गुरपुरे हर रस चाख। मन मुख तृष्णा पर रहे मन आशा देह दिस बहुलाख, बिन नामे त्रिग जीव दे

हर हृदय सदा सदा संभाली। हर हर नाम जपो मेरे जीड़े, जप हर हर नाम छड़ावे जियो रहाओ। सुख सागर अमृत हर नाओ, मंगत जन जाचे हर दियो पसाओ। हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जियो। नवे छिद्र स्रवें अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी, हर सिमरत मन लह जावे जियो। माया मोह बिखम है पारी, क्यों तरिये दुत्तर संसारी। सत गुर बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पार लंगावे जियो। तू सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा, हर पावे हर थाए पावे जियो। मारू महला चौथा, हर हर नाम जपो मन मेरे। सब किल विकाटे हर तेरे, हर तन राखो हर तन संचो। हर चलदिया नाल सखाई जियो, जिसनो कृपा करे सो त्यावे। नित हर जप जापे, जप हर सुख पावे। गुर प्रसादी हर रस पावे, जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ। निर्भव निरंकार सतनाम, जग में श्रेष्ठ उत्तम काम। दुश्मन दूत जम काल ठे मारो, हर सेवक नेर ना जाई जियो। जिस ऊपर हर का मन मानिया, सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया। जे उसका बुरा कहे कोई पापी, तिस जम कंकर खाई जियो। सब में एक निरंजन करता, सब कर कर वेखे अपने चलता। जिस हर राखे तिस कौन मारे, जिस करता आप छड़ाई जियो। हों अंदिन नाम लई करतारे, जिन सेवक भगत सबे निस्तारे। दस अठ चार वेद सब पूछो, जन नानक नाम छड़ाई जियो। मारू मैला पंजवा, कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद, डर पे तरत आकाश नखत्रा।

सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ देह तार अर देवा डर पै सिद साधक डर मोया लख चौरासी मर मर जन में फिर जोनी जोया राजस सातक तामस डर पै केते रूप उपाया छल बपुरी ए कौला डर पै अत डर पै धर्म राया सगल समग्री डरे व्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोहे दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ त्रू बारिक हर सिमरत अमर अटारे पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बिदारे मेरे ठाकुर केते अगनत उधारे मोह दीन अल्प मत निर्गुण परयो शरण द्वारे रहाओ बाल्मीक सुपचारो तरयो बद्धिक तरे बिचारे एक निमख मन माहे अराद्यो गजपत पार उतारे कीनी रखिया भगत प्रहलादे हर नाखस नखे।

हर हर कबो न गाए। ए विद खोजी बहु प्रकारा बिन संतन नहीं पाए। तुम दातार वडे प्रभ समरथ मांगन को दान आए। त्यागो सगला मान मैता दास रेण शरणाए। कहो नानक हर मिल पए कै महा आनंद सुख पाए। मारू मैला पंजवा कवन थान तीरो है नामा कवन बस्त अंकारा कवन चेहन सुन ऊपर छोयो।

को दौरे हो आज्ञा में पूक सोई कर सूखा सो घरख नहीं जाने हो जो जो हुकुम पयो साहिब का सो माथे ले माने हो पयो किरपाल ठाकुर सेवक को सवरे हल्त पलाता तन सेवक सफल उह आया जिन नानक खसम पछाता मारू मैला पंजवा खुलिया कर्म कृपा पै ठाकुर कीर्तन हर हर गाई श्रम था का पाए विश्रामा मिट गई सगली ताई अब मोहे जीवन

सद हजूर हाजर है नाजर कते न पयो दुराई सुख शीतल सरदा सब पूरी होए संत सहाय पावन पतत किए खिन पीतर महिमा कथन न जाई निरपो पय सगल पै खोए गोविंद चरण ओटाई नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिन सुलिवलाई मारू मैला पंजवा जो समरथ सर्व गुण नायक तिसको कबू न गाव सिरे छोड़ जाए खिन पीतर ताको हुआ को फिर तावसरे अपने प्रभु को क्यों ना समार सने बैरी संग रंग रस रचिया।

दान सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसारियो अज्ञानथ। होछा मद चाक होए तुम बावर दुलभ जन्म अकारथ। रे नर ऐसी करें इयानथ तज सारंग तर परम तू पूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ। रहाओ तरणी तर त्याग नीच कुल सेवे हौ हौ करत बिहावथ। फोकट कर्म करें अज्ञानी मनमुख अंध कहावत। सत होता असत कर्मान्या जो बिन सत सोने चल जानत। पर की को अपनी कर पकरी ऐसे पूल पुलानथ। खत्री ब्राह्मण सूद वै सब एक है नाम तरानथ। गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानथ। मारू मैला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभु डहकावे मनुखाए। विसार हर जियो बिखे पोगे तपत थम गल लाए। रे नर काए पर ग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दव तुम नहीं सुनियो तर्म राय। रहाओ विकार पाथर गले बांधे निंद पोट सिराए। महासागर समुद्र लंगना पार न पर ना जाए। काम क्रोध लोभ मोह व्याप्यो नेत्र रखे विराए। शीश उठावन न कबहू मिले महादुत्तर माए। सूर मुक्ता शशि मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अल्पाए। स्वभावत जैसे बैसंतर अल्पत सदा निर्मलाए। जिस कर्म खुलिया तिस लया पर्दा जिन गुर पै मनिया सुभाए। गुर मंत्र अवखद नाम दीना जन नानक संकट जोन न पाए। रे नर इन विद पार पराए त्याए हर जियो होए।

छाया था। अनुपौ अचरज रूप प्रपेखिया, मेरा मन छोड़ न कतहू जाया था। मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था, मोल अमोल न पाया जाई। कर कृपा गुरु दिवाया था रहाओ, अदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वज्यो, तें अमृत नाम चुआया था। तोट नाही मन तृष्णा बूझी, अखुट पंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे, अकड़ कड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा, सहजे मन खेलाया था। कहो नानक पर

ताओ लागा गोविंद स्यों काल पाई खाए, खेत मेरे जमिया निखुट ना कबू जाए, पाया अमोल पदार्थो छोड़ ना कतू जाए, कहो नानक सुख पाया तृप्त रहे आधाए। मारू मैला पंजवा फूटो आंडा परम का मने कयो परगा।

जिन गुरु मिल हर हर गाया, ऊंच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा, नामो वडियाई सोबा नानक खसम।

जिस होवे भाग मथाने सो मिलिया जे हर मन पाया सो पूला जे प्रभु पुलाया नह आपो मूर्ख ज्ञानी जे करावे सो नाम वखानी तेरा अंक न पारा वारा जन नानक सद बलिहारा।

मात गर्भ में जिन प्रतपारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया। कोई विधाता खिन खिन जपिए, जिस सिमरत अवगुण सब टपिए, चरण कमल उर अंतर तारो, दिखिया बनते जियो

नानक ता कै बल बल जाए, राम नाम मन तन आधारा, जो सिमरै तिसका निस्तारा रहाओ, लुचिया वस्त सत पर मानी, हित लायो सठमूर अज्ञानी, काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदले जन्म गवाता, अपना छोड़ पराया राता, माया मद मन तन संग जाता, कृष्ण ना बूझे करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला, आवत अकेला जात अकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला, पाए ठगोरी आप बुलायो, नानक कीर्त ना जाए।

अनेक दोख और बहुत सजाई, ताकि कीमत कह न जाए। प्रभु विसरत नरक में पाया, तह मात न बंद न मीत न जाया। जिसको होत कृपाल स्वामी, सोजन नानक पार ग्रामी। प्रमत प्रमत प्रव स्वर्णी आया, दीना नाथ जगत पित माया। प्रभु दयाल दुख दर्द बिदारण, जिस पावे तिस ही निस्तारण। अंधकूप से काडनहारा, प्रेम भगत होवत निस्तारा। साद रूप अपना तन तारिया, मां अगन ते आप उबारिया। जप तप संजम इस्ते किछ नाही, आद अंत प्रभ अगम अगाही। नाम दे मांगे दास तेरा, हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा। मारू महला पंजवा, कत कौ डह कावो।

आज्ञाकारी सदा सदा सुखदाई, अपने को कृपा करियो इस नाम से आई, नानक दीन नाम मांगे दुखिया परम चुकाई। मारू मैला पंजवा मेरा ठाकुर अपा

सेवा मारू महला पन्नवा तत्त उदाहरण तारण बल बल बले बल जाय ऐसा कोई पेट है संत जित हर हरे हर प्याय मोको कोई न जानत कयत दास तुम्हारा यहा ओट आधारा।

भूमंडल खंडल प्रभु तुम ही आछे, अटल अथयो देवा मोहन अलख अपारा, दान पावो संता संग नानक रेन दसारा। मारू मैला पंजवा त्रिपत अघाए संता, गुरजाने जिन मंता ताकि किछ कह न जाई, जाको नाम बढ़ाई। लाल अमोला लालो अगह अतोला नामो राव, अवगत सो मानिया मानो गुरमुख तत् ज्ञानो, तिरखत सगल त्यानो तजियो मन ते अभिमानो, ने चल तिनका।

बिना तै मिले सुख विश्राम, गुर प्रसाद नानक बखाने, हर भजन तक ज्ञान मारू मैला पंजवा। जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे के, पुत्र मित्र विलास बनता टूटते इहने, मेरे मन नाम नित नित लेहे, जलत नाही अगन सागर सुख मन तन देहे राव, देख छाया जैसे दिन सत पवन चूलत में, हर भगत दृढ़ मिल साध नानक, तेरे काम आवत एहे मारू मैला पंजवा। पुरख पूरन सुखे दाता संग बस्तो नीत, मरे ना आवे ना जाए बिन सह व्यापत उसन न सीत, मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत, चेत मन में हर हर निदाना ए निर्मल रीत, रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिसीद, नवल नव तन चतुर सुंदर मन नानक तिस संग बीद। मारू महला पंजवा, चलत बैसत सोवत जागत, गुर मंत्र हृदय चितार, चरण शरण पद संग साधु, पव सागर उतरे पार, मेरे मन नाम हृदय तार, कर प्रीत मन तन लाए हर्षों, अवर सगल विसार रहाओ, जियो मन तन प्राण प्रभ के, तू आपन आप निवार, गोविंद पज सब स्वार्थ पूरे, नानक कभू न हार। मारू मैला पंजवा, तज आप बिनसी ताप रेन साधु थियो, तिसें प्राप्त नाम।

हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमायड़े जी देही विच जियो आए पया जिथे अगन पखे परहारे पूरद मुख महा गुबारे सास सास समाले सोई उठे खत्म छड़ाए लया विच्चों गर्भे निकल आया खत्म विसार दुनी चितलाया आवे जाए पुवाये जोनी रहन न कितनी थाए बया मेरवा रख लयन आपे जी जंग सब तिसके थापे जन्म पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान थिया।

प्रदान है। कटकटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जा का थान है। आवे न जावे संगे समावे पूरन जाता काम है। भगत जना का राखना आरा संत जीवे जब प्राण अदा।

हर को नाम सदा सुखदाई, जा को सिमर अजामल उद्रियो गनता हुगत पाई। रहाओ पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधियाई, ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। जे नर जस कृपा निध गायो ताको पयो सहाय, कहो नानक में यही परोस है गही आम शरणाई।

काल फास जब घर में मेली ते सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट में को अब हो सहाय जो संपत अपनी कर मानी छिन में पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जग सब न गाई मारू मैला नामा माई में मन को मान न त्यागो माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लाग्यो राव जम को दंड पड़ो सिर ऊपर तब सोवत कह जाग्यो कहा होत अब कह पछताए छूटत नाहिं भाग्यो ए चिंता उपजी कट में जब गुर चरणन अनुरागियो सुफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभु जस में पाग्यो मारू अक्षदिया मैला पहला कर पहला ओंकार सतगुर प्रसाद वेद पुराण कथे सुने हारे मुनि अनेका हर सत तीर्थ बहु कहा परम था के देखा साचो साहिब निर्मलो मन माने एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख पारी रहा हर पढ़िए हर बुझिए गुरमति नाम उधारा गुरपुर पूरी मत है पूरे शब्द विचारा अठहठ तीर्थ हर नाम है किल विस्का तनहारा जल बिलो वै जल मत है तत लोड़े अंध ज्ञाना गुरमति जद मथी है अमृत पाई है नाम निदाना मन मुख तत न जाननी पशु माए समाना हौ मैं मेरा मरी मर मर जम मैं वारो वार गुर कै सबदे जे मरे फिर मरे ना दूजी वार गुरमति जग जीवन मन वसै।

है सारा साची संगत थान सच सच्चे करवारा सच्चा पोजन पाओ सच सच नाम आधारा सच्ची बाणी संतोखिया सच्चा शब्द विचारा रस भोगन पाप साइया दुख सुख संगारा मोटा नाव तराई है गल औगुण पारा मानस दात न हो वही तू दाता सारा अगम अगोचर तू तनी अवगत अपारा गुरु शब्दी दर जोई है मुक्ते पंडारा नानक मेल न चूकई साके वापारा मारू मैला पहला बिख बोयथा ला दिया दिया समुंद मंझार कंदी दिस ना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना केवटू जल सागर सराल बाबा जग पाथा मां जाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल रहाओ सतगुरु है बोए था शब्द लंगावन हार तिथे पवन ना पाव को ना जल ना आकार तिथे सच्चा सच नाए पव जल तारण हार गुरमुख लंगे से पार पए सच्चे सों लिवलाए आवागौन निवारया ज्योति ज्योत मिलाए गुरमति सहज उपजे सच्चे रह समाए सप पिड़ाई पाए दिख अंतर मन रोस पूरब लिखिया पाए किसनो दी जय दोष गुरमुख गारण जे सुने मने नाव संतोख मागर मच पाए कुंडी जाल बताए गुरमत फाथा पाए फिर पछोताए जमन मरण न सुजई कीर्तना में क्या जाए हों मैं बिख पाए जगत उपाया शब्द वसे बिख जाए जरा जोहे ना सकई सच रहे लिवलाए जीवन मुक्त सो आखिए जिस विचो हो मैं जाए तंदे तामत जग बांदिया ना बूझे विचार जमन मरण विसारिया मन मुख मुग्ध गवार गुरु राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार सुहट पिंजर प्रेम कै बोले बोलन हार सच चुगे अमृत पिए उडे ताए कावार गुर मिले खसम पछाणिए कहो नानक मोख द्वार मारू मैला पहला शब्द मरे ता मार मरे पागो किस तै जाओ जिस तै डर तै पागी है अमृत ता को नाओ मारे राखे एक तू बीजो नाही थाओ बाबा मैं कुचील काचो मत हीन नाम बिना को कछ नहीं गुरपूर है पूरी मत कीन रहाओ अवगण सुगर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ सहज शब्द सुख उपजे बिन पागा तन नाहे जिनके नाम ना मनवसे से बांधे दुख सहाए जिन्नी नाम विसारिया से कित आए संसार आगे पाछे सुख

फूले मार्ग जो दसे तिसके लागो पाए, गुरबिन दाता को नहीं कीमत कह न जाए। साजन देखा ता गल मिला साज पठायो लेख, मुख तिमाने तन खरी गुरमुख आखी देख। खुद पावे तू मन वसे नदरी कर्म विशेख, भूख प्यासे जे पवे क्या तिस मांगो दे। बीजो सूजे को नहीं मन तन पूरन दे, जिनकी आतिन देखिया आप वडाई दे। नगरी नायक नवतनो बालक लील अनूप, नार ना पुरख ना पंखनु साचो चतर स्वरूप। जो तिस पावे सोती है तू दीपक तू तूप, गीत साध चाखे सुने बाद साध तन रोग। सच पावे सच

साची कार कमावनी होर लालच बाद एह मन साचै मोहया जेवा सत्साद बिन नामे को रस नहीं होर चले दिखलाद ऐसा लाला मेरे लाल को सुन खत्म हमारे ज्यों फुरमावे त्यों चला सच लाल प्यारे राव अंदिन लाले चाकरी गोले सिर मीरा गुरबचनी मन वेचिया शब्द मन तीरा गुरपूरे साबास है काटे मन पीरा लाला गोला तनी को क्या कहो वड्याई है पाने बक्से पूरा तनी सत्कार कमाई है विछुड़िया को मेल ले गुर को बल जाई है लाले गोले मत खरी गुर की मतनी की साची सुरत सुहावनी मनमुख मत पी की मन तन तेरा तू प्रभु सच तीरथ पुर की साचे बैसन उठना सच भोजन पाख्या चित सच्चे वित्तो सच्चा साचा रस चाख्या साचे कर साचे रखे गुरबचन सुवाख्या मन मुख को आलस कणो साचे उजाड़ी साथा चुगे नित चोगड़ी लग बंद निगाड़ी गुर प्रसादी मुक्त होए साचे निज तारी अनहत लाला बेदिया प्रभ हेत प्यारी बिन साचे जियो जल बलों झूठे वेकारी बाद कारा सब छोड़िया साची

हर नाम तू बख्शे ता मेल ले नानक बल जाओ मारू मैला पहला लाले गर्व छोड़िया गुर के पैसे तुभाई लाले खत्म पछाणिया वड्डी वड्याई खत्म मिले सुख पाया कीमत कह न जाए लाला गोला खत्म का खत्म वड्याई गुर प्रसादी उबरे हर की शरणाई रहाओ लाले नो सिरकार है उर खत्म फुरमाई लाले हुकम पछाणिया सदा रह रजाई आपे मीरा बसले वड्डी वड्याई आप सच्चा सब सच है गुर शब्द बुझाई तेरी सेवा सो करे जिसनो लह तू लाई बिन सेवा किने न पाया दूजे परम खुआई सो क्यों मनो विसारी है नित देवे चले सलाया जियो पिंड सब तिसदा साओ तिने विक पाया जा कृपा करे ता सेवी है सेव सच समाया लाला सो जीवत मरे मर विच्चों आत गवाए बंधन टूटे मुक्त होए तृष्णा अग्न बुझाए सब में नाम निदान है गुरमुख को पाए लाले विच गुण किस नहीं लाला अवगणयार तुझ जेवर दाता को नहीं तू बख्शनहार तेरा हुक्म लाला मन्ने ए करनी सार गुर सागर अमृत सर जो इच्छे सो फल पाए नाम पदार्थ अमर है हृदय मन वसाए गुर सेवा सदा सुख है जिसनो हुक्म मनाए सोना रूपा सब तात है माटी रल जाई बिन नावे नाल न चलई सतगुर बूझ बुझाई नानक नाम रते से निर्मले साचे रहे समाई मारू मैला पहला हुक्म पया रहना नहीं तुर फाटे चीर तेहो मन अवगुण बांधया सहो दे शरीर है पूरे गुर बख्शाई है सब गुने फकीर है क्यों रही है उठ चलना बुद्ध शब्द बिचारा जिस तू मेले सो मिले और हुक्मा पारा रहाओ जो तू राखे त्यों रहा जो दे सो खाओ जो तू चलावे त्यों चला मुख अमृत नाओ मेरे ठाकुर हथ वड्याईया मेले मन चाओ कीता क्या साल आई है कर देखे सोई जिनकी आसो मन वसे मैं अवर न कोई सो साचा साल आई है साची पत होई पंडित पढ़ न पहुंचई बहु आल जंजाला पाप पुन दे संग में खुदिया जम

मेरे प्रभु पावन से उजले सब मैल परी जय। मैला उजर तांतिये पारस संग पी जय। वन्नी साचे लाल की किन कीमत की जय। पेठी हाथ न लबई तीरथ नहीं दाने। पूछो वेद पढ़न से आ मूठी गिन माने। नानक कीमत तो करे पूरा गुर ज्ञाने। मारू महला पहला मन मुख लहर कर तज विगूचे। अवरा के कर हेरे गृह धर्म गवाए सत गुरु ना पेटे। दुर्मत कूमन के रे दिसंतर पवे पाठ पढ़ थाका। तृष्णा होए वधेरे काकी पिंडी शब्द ना चीने। उधर परे जैसे टोरे बाबा ऐसी रवत रवे सन्यासी। गुर के शब्द एक लिव लागी तेरे नाम रते तृप्तासी। राव कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र पेट पे खारी। कापड़ तार बनाई खिंसा चोली माया तारी। कर कर मांगे जग प्रबोधे मन अंधे पतहारी। परम पुलाना शब्द ना चीने। जुए बाजी हारी अंतर अग्न ना गुर बिन बूझे। बाहर कुवर तापे गुर सेवा बिन भगत ना होवी। क्यों कर चीनस आपे निंदा कर कर नरक निवासी। अंतर आत्म जापे अथक तीरथ परम विगूचे। क्यों मल तो कै पापे छाणी खाक विपूत चढ़ाई। माया का मग जो है अंतर बाहर एक ना जाने। साच कहे ते छो है पाठ पढ़े मुख झूठो बोले। निगुरे की मत को है नाम न जपे क्यों सुख पावे।

आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महा बिकती रे माया का देवाना कृष्णा मिटे हुक्म न बूझे पशुआ माए समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन कृष्णा उपजी पारी स्त्री तज कर काम व्याप्या चितलाया पर नारी सिख करे कर शब्द न चीने लंपट है बाजारी अंतर दिख बाहर निबराती ताजम करे खुआरी सो सन्यासी जो सतगुर सेवे विच्चों आप गवाए साधन पोजन की आस न करे अचिंत मिले सो पाए बके ना बोले खिमा तन संग्रह तामस नाम जलाए तन गिरही सन्यासी जोगी जे हर चरणी चितलाए आप निराश रहे सन्यासी एक क्यों लिवलाए हर रस्ती वे ता सांत आवे निज कर ताड़ी लाए मनवा न डोले गुरमुख बूझे तावत वर्ज रहाए गृह शरीर गुरमति खोजे नाम पदार्थ पाए ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ नाम रते विचारी खानी बाणी गगन पताली जनता जो तुम्हारी सब सुख मुक्त नाम तुन बाणी

पहला मात पिता संयोग उपाए रखत बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे। संसार पव जल क्यों तरे गुरुमुख नाम निरंजन पाले सफर यो पार अपार करे रहाओ ते गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करो हरे। तू दाता दयाल सदै सिर एनिस दास संवार करे चार पदार्थ ले जग जन्मिया शिव शक्ति कर वास करे लागी पूख माया मग जो है मुक्त पदार्थ मोहे खरे। करन पलाव करे नहीं पावे कि उत टूंडत थाक परे काम क्रोध अंकार व्यापे कूड़ कुटुंब क्यों प्रीत करे। खावे पोगे सुन तो देखे पहर दिखावे काल करे बिन गुर सब दिन आप पचाने बिन हर नाम ना काल करे। जे कामो हो मैं कर पूले मेरी मेरी करते छीन खड़े तन तन बिन सह सह सह सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे। बिरद पया जो बन तन खुपया कफ कंठ बिरु दो नैनो नीर तरे चरण रहे कर कंपन लागे साकत राम ना हृदय हरे। सुरत गई काली हूँ तोले किसे न पावे रखियो करे विसरत नाम ऐसे दोख लागे जम मार समारे नरक खरे। पूरब जन्म को लेख न मिटई जन्म मरे का को दोष तरे दिन गुर बाद जीवन होर मरना दिन गुर शब्द जन्म जरे। खुशी खुआर पै रस पोगण फोकट कर्म विकार करे नाम विसार लोभ मूल खोयो फिर कर्म राय का दंड परे। गुरमुख राम नाम गुण गावे जा को हर प्रभ नदर करे ते निर्मल पुरख अपरम पर पूरे ते जग में गुरु गोविंद हरे। हर सिमरो गुरु बचन समारो संगत हर जन पाव करे हर जन गुर प्रदान द्वारे नानक तिन जन की रे।

मैं गल अवगुण मुठड़ी बिन फिर चूर मराओ तेरे फिर समला सौरले करवास सुख संबंध सुहागनी फिर पाया गुण पास लेख निहाली पटकी कापुर अंग बनाए फिर मुट्टी डोहागनी तिन दुखी रहन विहाए।

सच्चा साथ न टुटई गुर मेले सहिया। बलिहारी गुरे अपने सद बलिहारे जाओ, गुर बिन एता पव तकी, गुर फिर मेलम दित्तम मिलाए रहाओ। फुफी नानी मासियां देर जिठानड़िया, आवन मंजन ना रहन पूर परे पहिया। मामे ते मामानिया पायर बाप ना माओ, साथ लड़े तिन नाठिया,

सा तन कंक पछाणिया सुख सुखी निस देहो पत्तन कूके पातनी वंजो तुक विलाड़ पार पवंदड़े डिठ में सतगुरु बोहित चाड़ छिक नी लद्या हिक लद गए छिक पारे पर नाल जिन्नी सच वणंजिया से सच्चे प्रवनाल ना हम चंगे आखिए बुरा न दिसै कोए नानक हो मैं।

ताने जिसनो नदर तुम्हारी जियो रहाओ। दिव्य दृष्ट जागे परम सुखाए, गुरु प्रसाद परम पद पाए। सो जोगी ए जुगत पछाने, गुरु के शब्द विचारी जियो। संजोगी तन फिर मेला होवे, गुरमत विचो दुरमत होवे। रंग सो नितर

एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख तृष्णा कुख गवाए आपन लिया किछु ना पाये कर कृपा कल तारी जियो अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने कर आया अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नजर तुम्हारी जियो गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचों गवाए सतगुर बाजो सब तंग कमावे देखो मन विचारी जियो एक परम पूले फिरे अंकारी इकना गुरमुख हो मैं मारी सच्चे शब्द रते बैरागी और परम पुले गावारी जियो गुरमुख जिन्नी नाम न पाया मनमुख बिरसा जन्म गवाया अगे बिन नामे को बेली नाही बूझे गुर विचारी जियो अमृत नाम।

कार्तीजा अष्टपदियां इको ओंकार सतगुरु प्रसाद लख चौरासी परमते दुर्लभ जन्म अब पायो रे मूड़े तू हो छह रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या क्यों उर्जायो राव रतन जवे हर बंजन आयो कालर लाद चलायो जे कर मैं तुद रहना बसना सो कर कीतना आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो जहां जाना सो थान विसार्यो एक निमख नहीं मन लायो पुत्र कलत्र ग्रह देख समगरी इस ही मैं उर्जायो जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो जो पयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो मारू महला पंजवा कर अनग्रो राख लीनो पयो साधु संग हर नाम।

जम कंकर किछ ना कही, मोख मुक्त द्वार जा कै संतरिदा पंडार, जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखन हार, दुख दर्द कलेश बिन सहै जिस बसे मन माहे, मृत नरक स्थान बिखड़े बिख न पोहै ताहे, रिद्ध सिद्ध नवनिद जाके अमृता प्रवाह, आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह, सिद्ध साधिक देव मुन जन वेद करें उचार, सिमर स्वामी सुख सहज पुंचे नहीं अंत पारावार, अनिक प्राचत मिटे खिन में हृदय जप भगवान, पावना से महापावन कोट दान स्नान, बल बुद्ध शुद्ध प्राण सर्व सुसंतना की रास, बिसर नाही।

कृपाल गोविंद सुन संतना की रीत रहाओ। चरण तले उगाहे बैस्यो श्रम ना रहो शरीर, महासागर नह व्यापै खिने उतरयो तीर। चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीत, विष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन ना मनी विपरीत। ऊंच नीच विकार सुकृत संलगन सब सुख छत्र, मित्र सत्र ना कछु जाने सर्व जी समत। कर परगास पर चंड प्रगट्यो अंधकार विनाश, पवित्र अपवित्र है किरण लागे मन ना पयो बिखाद। शीत मंद सुगंध चल्यो सर्व थान समान, जहां सा किछ ता लागयो तिल ना संका मान। सुभाए अभाए जो निकट आवे शीत ता का जाए, आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुभाए। चरण शरण सनाथ एहो मन रंग राते लाल, गोपाल गुण नित गाओ नानक पै प्रभ कृपाल। मारू महला पंजवा कर चौथा अष्टपदियां इको अंकार सतगुर प्रसाद। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर।

काम क्रोध लोभ त्यागना, मांगना मांगननी का हर जस गुर से मांगना, जागना जागननी का हर कीर्तन में जागना, लागना लागननी का गुर चरणी मन लागना, ए विदित से प्राप्ते जा के मस्तक पागना, कहो नानक तिस सब किछ नीका जो प्रभ की शरणागना। मारू महला पंजवा, आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनाम ना रहाओ, तुद आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना, संत कृपा ते हृदय वासे दूजा पाओ मिटावना, भगत दया ते बुद्ध परगासे दुर्मत दुख सजावना, दर्शन भेटत होत पुनीता पुनरप गर्भ न पावना, नौ निद रिद सिद पाई जो तुमरे मन पावना, संत बिना मैं थाओ न कोई अवर न सूजे जावना, मोहे निर्गुण को कोई न राखे संता संग समावना, कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मध्य हर हर रावना। मारू महला पंजवा, जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ, पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना, खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्तीवना, पहनना रख पत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना, पोगना मन मदे हर रस संत संगत में लीवना, बिन तागे बिन सुई आनी मन हर पगति संग सीवना, मात्या हर रस में राते तिस बहुर न कबहू औखीवना, मिलियो तिस सर्व निधाना प्रभ कृपाल जिस दीवना, सुख नानक संतन की सेवा चरण संत तोय पीवना। मारू महला पंजवा, कर अठवा अंजुलिया इको अंकार सतगुरु प्रसाद, जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता, दोहु व्यवस्था ते जो मुक्ता सोई सुहेला पालिए, ग्रह राज में नरक उदास करोदा बहुविध बेद।

पंजवा बिरखे हेठ सब जंत इकठे एक तत्ते एक बोलन मिठे अस्त उदोत पया उठ चले ज्यो ज्यो औद विहानिया पाप करेंदर सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे दो जग पाए सिरजनहार है लेखा मंगे बाणिया संग ना कोई पया बेबा माल जोबन तन चोड़ वजे सा करण करीम ना जातो करता तिल पीड़े ज्यो कानिया खुश खुश लेंदा वस्त पराई वेखे सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लब पया खात अंदर अगली गल ना जानिया जम जम मरे मरे

साचा सच सोई अवर न कोई, जिन सिर जी तिन ही फुन गोई, ज्यों पावे त्यों राखो रहना, तुम स्यों क्या मुकराई है, आप उपाए आप खपाए, आपे सिर सिर तंदे लाए, आपे विचारी गुणकारी, आपे मार्ग लाई है, आपे दाना आपे बीना, आपे आप उपाय पतीना, आपे पौन पानी बैसंतर, आपे मेल मिलाई है, आपे सतसूरा पूरो पूरा, आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जोहे न साके, साचे स्यों लिवलाए।

आपे पवर फुल फल तरवर, आपे जल थल सागर सरवर, आपे मच कच करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है। आपे दिन आपे ही रहनी, आप पति जय गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदिन कट कट शब्द रजाई है। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बक्से आपे दे ले पाई है। आपे तनक आपे सरबाना, आपे सुगड़ स्वरूप से आना, कहता बकता सुनता सोई आपे बनक बनाई है। पौन गुरु पानी पित जाता, उदर संजोगी तरती माता, रैन दिनस दोय दाई दाया, जग खेल खेलाई है।

शब्द सहज रस अंतर माने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता, भगत पाए मन पाई है। आप निरालम गुरुगम ज्ञाना, ज्योति सह तुझ माहे समाना, नानक नीच पिखिया दर जाते है, मैं दीजे नाम बढ़ाई है। मारू महला पहला, आपे तरती तौल आकाशं, आपे साचे गुण प्रगासं, जति सती संतोखी आपे आपे।

पंच चोर चंचल चित चाले, पर कर जो है कर नहीं पाले। काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूजे त्रिभुवन सूजे, मनसा मार मने स्यों लूजे। जो तुद सेवे से तुद ही जे है, निरपव बाल सिखाई है। आपे सुर्ग मच पयाला, आपे ज्योत स्वरूपी बाला। जटा विकट विकराल स्वरूपी, रूप न रेख्या काई है। वेद कटे भी पेद न जाता, ना तिस मात पिता।

कोई न काटे अवगुण मेरे, सुर नर नाथ साहिब सबना सिर, पाए मिले पौ जाई है, फूले चूके मार्ग पावे, आप पुलाए तू है समझावे, बिन नावे मैं अवर न दिसे, नामो गत मित पाई है, गंगा जमुना केल किदारा, काशी कांती पुरी द्वारा, गंगा सागर बेणी संगम, अठसठ अंक समाई है, आपे सिद्ध साधिक विचारी, आपे राजन पंचाकारी, तख्त बह अदली प्रभ आपे, परम पेद पौ जाई है, आपे काजी आपे मुल्ला, आप अपुल ना कबहू पुल्ला, आपे मेहर दया पत दाता, ना किसे को बैराई है, जिस बख्शे तिस देव डियाई, सबसे दाता तिल ना तमाई, परपुर तार रहा ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है, क्या साला ही अगम अपार है, साचे सिर जनहार मुरार है, जिसनो नदर करे तिस मेले, मेल मिले मेल आई है, ब्रह्मा विष्ण महेश द्वार है, उबे सेवे अलख अपार है, होर के ती दर्दी से बिललांदी, मैं गणत ना वे काई है, साची कीरत साची बाणी, होर नदी से वेद पुराणी, पूंजी साच सच्चे गुण गावा, मैं तर होर न काई है, जुग जुग साचा है भी होसी, कौन न मुआ कौन न मरसी, नानक नीच कहे बेनंती, दर देखो लिवलाई है, मारू महला पहला, दूजी दुर्मत अन्नी बोली, काम क्रोध की कच्ची चोली, कारवार सहज न जाने छोहर, दिन फिर नींद न पाई है, अंतर अगन जले पड़कारे, मन मुख तक के कुंडाचारे, बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाये, साचे हाथ वडाई है, काम क्रोध अंकार निवारे, सत्तर पंच शब्द संगारे, ज्ञान खड़ग ले मन स्यों लूजे, मन सामन है समाई है, माँ की रकत पिता बिंद तारा, मूरत सूरत कर अपारा, जोत दात जेती सब तेरी, तू करता सब ठाई है, तुझ ही किया जमन मरना, गुर ते समझ पड़ी क्या डरना, तू दयाल दया कर देखे, दुख दर्द शरीरों जाई है, निज कर बैस रहे पौ खाया, तावत राखे ठाक रहाया, कमल बिगास हरे सर सुबर, आत्म राम सखाई है, मरण लिखाए मंडल में आए, क्यों रही है चलना पर थाए, सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिले वडाई है, आप उपाया जगत सवाया, जिन सिरिया तिन संदे लाया।

राम सच्चि वड्याई साच तखत वड़ाई है। सत युग सत संतोख शरीरा सत सत वरते गहर गंभीरा सच्चा साहिब सच परख है साच हुक्म चलाई है। सत संतोखी सत गुर पूरा गुर का शब्द मने सो सूरा साची दरगे साच निवासा माने हुक्म रजाई है। सत युग साच कहे सब कोई सच वरते साचा सोई मन मुख साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई है। त्रेत धर्म कला इक चूकी तीन चरण इक दुबदा सूकी गुरमुख होवे सो साच वखाणे मन मुख पचे अवाई है। मन मुख कदे ना दर

कर्म तर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ सब सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न होई, परपंच कर परमाई है। माया ममता चोदी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, एनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यो बन आई है। एक जप तप कर कर तीर्थ नावे, जो तुद पावे तिवे चलावे, हठ निग्रह अब तीज ना पीजे, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में इक कल राखी, बिन गुर पूरे किन न पाखी, मन मुख कूड़ वरते वरतारा, बिन सतगुर परम न जाई है। सतगुर वे परवाह सिरंदा, ना जमकान ना छंदा बंदा, जो तिस सेवे सो अविनाशी, ना तिस काल संताई है। गुर में आप रखिया करता रे, गुरमुख कोट असंख उधारे, सर्व जिया जग जीवन दाता, निरपव मैल न काई है। सगले जाते गुर पंडारी, आप निरंजन अलखा पारी, नानक साच कह प्रभ जाते, मैं दीजे साच रजाई है। मारू महला पहला, साचे मेले शब्द मिलाए, जात पाना सहज समाए, त्रिभुवन ज्योत करी परमेश्वर।

यो वाड़ी ओजार उजाड़ी नाम बिना किस साधना लागे है हर बित्रय दुख पाई है पोजन साच मिले आघाई नाम रतन साची वड्याई चीने आप पछाणे सोई ज्योति ज्योत मिलाई है नाम पुल्ली चोटा खाए बहुत स्यान पर्व न जाए पच पच मोए अचेत न चेते अजगर पार लदाई है बिन बाद विरोध है कोई नाही मैं दिखा लियो तिस्ता लाही मन तन अर्प मिले जग जीवन हर स्यों बंत बनाई है प्रभ की गत मित कोई न पावे देखो वड्डा कहाए वडाई खावे साचे साहिब तोट न दाती सगली तिन्हें उपाई है वड्डी वड्याई वे परवाहे आप उपाय दान समाहे आप दयाल दूर नहीं दाता मिलिया सहज रजाई है एक सोगी एक रोग व्यापे जो किछ करे सो आपे आपे भगत पाओ गुर की मत पूरी अनहद शब्द लखाई है एक नांगे भूखे पवे पवाए एक हट कर मरे ना कीमत पाए गत अवगत की सार न जाने बूझे शब्द कमाई है एक तीरथ नावे अन न खावे एक अगन जलावे दे खपावे राम नाम बिन मुक्त न होई किन विद पार लंगाई है गुरमत छोड़े उजड़ जाई मन मुख राम न जपे आवाई पच पच बूढ़े कूर कमावे कूर काल बैराई है हुक्मे आवे हुक्मे जावे बूझे हुक्म सोसाज समावे नानक साच मिले मन पावे गुरमुख कार कमाई है मारू मैला पहला आपे करता पुरख विदाता जिन आपे आप उपाय पछाता आपे सतगुर आपे सेवक आपे श्रेष्ठ उपाई है आपे नेड़े नाही दूरे बूझे गुरमुख से जन पूरे तिनकी संगत एहन सलाहा गुर संगत ये वडाई है जुग जुग संत पले प्रभ तेरे हर गुण गावे रसन रसेरे उस्तत करें पर हर दुख दालद जिन नाही चिंत पराई है ओए जागत रहे न सूते दिसे संगत कुल तारे सात परिसे कलमल मैल नाही ते निर्मल ओए रहे भगत लिवलाई है बूजो हर जन सतगुर बाणी यह जो बन सात है देह पुराणी आज काल मर जाइए प्राणी हर जप जप हृदय त्याई है छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा कूड़ मारे काल उछाड़ा साकत कूड़ पचे मन हो मैं दोहो मार्ग पचे पचाई है छोड़ो निंदा तात पराई पर दज्जे सांत नाई मिल सत्संगत नाम सलाहो आत्म राम सखाई है छोड़ो काम क्रोध बुरियाई हों मैं तंद छोड़ो लंपटाई सतगुर शरण परो ता उबरो क्यों तरिये पव जल पाई है आगे बिमल नदी अगन बिख तेला तिथे अवर न कोई जियो इकेला पर अगन सागर दे

साच पछाणो अंदर, दूर नाही देखो करनंदर, विघन नाही गुरमुख तरकारी, क्यों पावजल पार लंगाई है, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी, ना जियो मरे न मारिया जाई, कर देखे सब रजाई है, ओ निर्मल है नाही अंधियारा, ओ आपे तख्त बह सचियारा, साकत कूड़े बंद पवाये, मर जन में आई जाई है, गुर के सेवक सतगुर प्यारे, कोई बैसे तक सो शब्द विचारे, तत लहे अंतर्गत जाने, सत्संगत साथ वडाई है, आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुक्त सो पार उतारे, नानक तिस का लाला गोला, जिन गुरमुख हर लिवलाई है, मारू मैला पहला, केते जुग वरते गुबारे, तारी लाई अपर अपारे, तुंदू कार निरालम बैठा, ना तद तंद पसारा है, जुग छत्ती तिने वरताए, ज्यों तिस पाना तिवे चलाए, तिसे सरीत न दिसे कोई, आपे अपर अपारा है, गुप्ते बूजो जुग चतवारे, कट कट वरते उदर मजारे, जुग जुग एका एकी वरते, कोई बूजे गुर विचारा है, बिंद रक्त मिल पिंड सरिया, कौन पानी अग्नि मिल गिया, आपे चोज करे रंग महली, होर माया मोह पसारा है, गर्भ कुंडल में उर्द त्यानी, आपे जाने अंतर जामी, सास सास सच नाम समाले, अंतर उदर मजारा है, चार पदार्थ ले जग आया, शिव शक्ति करवा

काली हुफुन तौले आए, विणना में गत गया गवाए, दुर्मत अंधला बिनस बिनासे, मुठे रोए पुकारा है, आप विचार न रोवे कोई, सतगुर मिले ता सोजी होई, बिन गुर बजर कपाट न कूले, शब्द मिले निस्तारा है, बिर्द पया तन छीजे देही, राम न जतई अंत स्नेही, नाम विसार चले मुँह काले, दरगे झूठ खुआरा है, नाम विसार चले कूड़ियारो, आवत जात पड़े सिर छारो, सौरड़े कर वास न पाए, पेयड़े सिर मारा है, खाजे पैजे रली करीजे, बिन अब पगती बाद मरीजे, सर अफसर की सार न जाने, जम मारे क्या चारा है, परवृत्ति नरवृत पछाने, गुर के संग शब्द कर जाने, किस ही मंदा आँख न चले, सच खरा सच आरा है, साच बिना दर्श जय न कोई, साच शब्द कह जय पत होई, आपे बख्श लय तिस पावे, हों मैं गर्भ निवारा है, गुर कृपा ते हुकम पछाने, जुगे जुगंतर की विद जाने, नानक नाम जपो तर तारी, सच तारे तारण हारा है, मारू मैला पहला, हरसा मीत नाही मैं कोई, जिन तन मन दिया सुरत समोई, सर्व जिया प्रतपाल समाले, सो अंतर दाना बीना है, गुर सर्वर हम हंस प्यारे, सागर में रतन लाल बहु सारे, मोती मानक हीरा हर जस, गावत मन तन पीना है, हर अगम अगाओ अगाध निराला, हर अंत न पाये गुर गोपाला, सतगुर मत तारे तारण हारा, मेल ले रंग लीना है, सतगुर बाजो मुक्त किनेही, ओ आद जुगादी राम स्नेही, दरगे मुक्त करे कर कृपा, बक्से अवगुण की नाहे, सतगुर दाता मुक्त कराए, सब रोग गवाए अमृत रस पाए, जम जागात नाही कर लागे,

श्रेष्ठ उपाय रह प्रभ छाजे, पौन पानी बैसंतर गाजे, मनुआ डोले दूत संगत मिल, सो पाए जो किछ की नाहे, नाम विसार दोख दुख सही है, हुकुम पया चलना क्यों रही है, नरक कूप में गोते खावे, जो जलते बाहर मीना है, 84 नरक साकत पोगाये, जैसा की तै तैसो पाये, सतगुर बाजो मुक्त न होई, केत बांदा ग्रफ दीना है, खंडे तार गली अत पीड़ी, लेखा ली जय तिल जो पीड़ी, मात पिता कलत्र सुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त न कीना है, मीत सके केते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त परा।

गुरमुख खोज लहे जन पूरे क्यों समदर्शी की नाहे प्रभ बेअंत गुरमत को पावे गुर के शब्द मन को समझावे सतगुर की बाणी सत सत कर मानो।

असुर संहारण राम हमारा, कट कट रमैया राम प्यारा, नाले अलख ना लखी है मूले, गुरुमुख लिख विचारा है। गुरुमुख साधु शरण तुम्हारी, कर कृपा सब पार उतारी, अगन पानी सागर अत गहरा, गुरु सतगुर पार उतारा है। मन मुख अंगले सोजी नाही, आवे जाए मरे मर जाही, पूरब लिखिया लेख ना मिटे, जमदर अंध खुआ।

भूख कनेरे नरक पचे अज्ञान अंधेरे कर्म राय की बाकी लीजे दिन हर का नाम विसारा है सूरज तपे अगन बिख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आशा मनसा कूड़ कमावे रोग बुरा बुरे आ रहा है मस्तक पार कलर

यम के फाहे सतगुर तोड़े गुरमुख तत् विचारा है। कूड़ मुठी चाले बहुराही मन मुख दाजे पड़ पड़ पाही। अमृत नाम गुरु वडदाना नाम जपो सुख सारा है। सतगुर तुठा थच दृढ़ाए सब दुख मेटे मार्ग पाए। कंडा पाए ना गडई मूले जिस सतगुर राखण हारा है। खेहू खेर ले तन छीजे मन मुख पाखर फैल न पीजे। करण पलाव करे बहुतेरे नरक सुर्ग अवतार।

कूकर कूकर कहिए कूड़ियारा, पौ के मरे पौ पौ पौ हारा, मन तन चूठे कूड़ कमावे, दुर्मत दरगे हारा है। सतगुर मिले तमनुआ टेके, राम नाम दे शरण परे के, हर तन नाम अमोलक देवे।

राम जपो अंतर्गत प्याने, लालच छोड़ रचो अपरंपर, क्यों पावो मुक्त द्वारा है। जिस बिसरे जम जोहन लागे, सब सुख जाहे दुखां फुन आगे। राम नाम जप गुरमुख जीड़े, एहो परम तत्व विचारा है। हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा। एनस राम रहो रंग राते, एहो जप तप संजम सारा है। राम नाम गुरबचनी बोलो, संत सभा में ए रस कोलो। गुरमत खोज लहो कर अपना, बौड़ना गर्व मजारा है। सच तीरथ नावो हर गुण गावो, तत विचारो हर लिवलावो। अंतकाल जम जोहे न साके, हर बोलो राम प्यारा है। सत गुर पुरख दाता वरदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना। जिसको सतगुर मेल मिलाए, तिस चूका जम पै पारा है। पंच तत् मिल काया कीनी, तिसमें राम रतन लै चीनी। आत्म राम राम है आत्म, हर पाये शब्द विचारा है। सत संतोष रहो जन पाई, खिमा गहो सतगुर शरणाई। आत्म चीन पर आत्म चीनो, गुर संगत क्यो निस्तारा है। साकत पूर कपट महते का, हैनत निंदा करें अनेका। बिन सिमरन आवे फुन जावे, गर्व जोनी नरक मजारा है। साकत जम की कान न चूके, जम का दंड न कबू मूके। बाकी तर्म राय की लीजे, सिर अफरियो पार अफारा है। बिन गुर साकत कहो को तरिया, हो मैं करता पव जल परिया। बिन गुर पार न पावे कोई, हर जपिये पार उतारा है। गुर की दात न मेटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई। जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभ अपर अपारा है। गुर ते पूले आवो जावो, जन्म मरो फुन पाप कमावो। साकत मूर अचेत न चेते, दुख लागे ता राम पुकारा है। सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए। किसको दोष दे तू प्राणी, सो अपना किया करारा है। हो मैं ममता करदा आया, आसा मनसा बंद चलाया। मेरी मेरी करत क्या ले चाले, बिखला दे चार बिकारा है। हर की भगत करो जन पाई, अकथ कथो मन मने समाई। उठ चलता ठाक रखो कर अपने, दुख काटे काटन हारा है। हर गुर पूरे की ओट पराती, गुरमुख हर लिव गुरमुख जाती।

मारी, तू समरथ दयाल मुरारी, तेरे चोज न जाने कोई, तू पूरा पुरख विदाता है, तू आद जुगाद करे प्रतपाला, कट कट रूप अनूप दयाला, ज्यों तुद पावे तिवे चलावे, सब तेरो किया कमाता है, अंतर ज्योत पली जग जीवन, सब कट पो गए हर रस पीवन, आपे ले वे आपे देवे, तिहो लोई जगत पित दाता है, जगत उपाय खे

काला, कोई गुरमुख बूझे सब निराला, साकत दुर्मत डूबे दाजे, गुर राखे हर लिवराता है, अब तेज वाए पृथ्वी आकाशा, दिन में पंच तत्व करवासा, सतगुर शब्द रहे रंग राता, तज माया हो मैं प्राता है, तिव मन पीजे शब्द पति जय, बिन नावे क्या टेक की जय, अंतर चोर मुह कर मंदर, इन साकत दूत ना जाता है, दुंदर दूत पूत पिहाले, किंचो तान करें बेताले।

राम नाम बिन मुक्त न सूजे, आज काल पच जाता है। सतगुरु बाजना बेली कोई, एथे उथे राखा प्रभु सोई। राम नाम देवे कर कृपा, क्यों सलल सलल मिलाता है। फूले सिख गुरु समझाए, उजड़ जांदे मार्ग पाए। जिस गुरु सेव सदा दिन राती, दुख पंजन संग सखाता है। गुर की पगत करे क्या प्राणी, ब्रह्म इंद्र महेश न जाने। सतगुर अलख कहो क्यों लखिए, जिस बख्शे तिसे पछाता है। अंतर प्रेम परापत दर्शन, गुरबाणी स्यों प्रीत सो प्रसन्न। एनत निर्मल ज्योत सबाई, काट दीपक गुरमुख जाता है।

तिन कट कट अंतर ब्रह्म पहचाना। नानक हर जस हर जन की संगत दीजे, जिन सतगुर हर प्रभ जाता है। मारू महला पहला साचे साहिब सृजन हारे, जिन कर चक्र तरे विचारे आपे करता कर।

जिस तन पल्ले शब्द पचै ओ माहा है। काची सौदी तोता आवे गुरमुख वणज करे प्रभ पावे। पूंजी साबत रात सलामत।

डाल छोड़ तत मूल पराता मनसाचा ओ माहा है। हर के लोग नहीं जम मारे ना दुख देखे पंथ करारे, राम नाम कथ अंतर पूजा और न दूजा कहा है, कोड़ न कथने सिफ सजाई।

कर्म तर्म सच हाथ तुम्हारे, वे प्रवाह अखुट पंडार है, तू दयाल कृपाल सदा प्रभ, आपे मेल मिलाएगा, आपे देख दिखावे, आपे आपे थाप उठापे, आपे आपे जोर विछोड़े करता, आपे मार जीवाएगा, जेती है तेती तुद अंदर, देखे आप बैठ बिज मंदर, नानक साच कह बेनंती, हर दर्शन सुख पाएगा, मारू महला पहला दर्शन।

जो किस करे सो आपन पाने, लख चौरासी जी उपाय पाने सहलवाएंदा, जो तिस पावे सो नेचो होवे, मनमुख आप गनाए रोवे, नामो पुल्ला ठौर न पाए, आए जाए दुख पाएंदा, निर्मल काया उजल हंसा, तिस विच नाम निरंजन अंसा, सगले दुख अमृत कर पीवे, बहुर दुख न पाएंदा, बहु साधो दुख प्राप्त होवे, ओगो रोग सो अंत विगोवे, हरखो सोग न मिटई कभू, बिन पाने परमाएंदा, ज्ञान विहूनी पवे सभाई, साचा रव रहा लिव लाई, निरपौ शब्द गुरु सच जाता, ज्योति ज्योत मिलाएंदा, अटल अडोल अतोल मुरारे, खिन में चाहे फिर उसारे, रूप न रेखिया मृत नहीं कीमत, शब्द पेद पति आएंदा, हम दासन के दास प्यारे, साधक साच पले विचारे, मन्ने नाओ सोई जिन जासी, आपके साथ जिड़ाएंदा, पल्ले साच सचे सच्यारा, साचे पावे शब्द प्यारा, त्रिभुवन साच कला तर सापी, साचे ही पति आएंदा, वड्डा वड्डा आखे सब कोई, गुरु बिन सो जी किने न होई, साच मिले सो साचे पाए, ना विचर दुख पाएंदा, कुरों विचुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन में मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस देवडे आई, मेल न पछोताएंदा, आपे करता आपे पुगता, आपे तृप्ता आपे मुक्ता, आपे मुक्त दान मुक्ति सर

नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा मारू मेला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा तरन ना गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन ना चंद ना सूरज सुन समाद लगाएंदा खानी ना बाणी पौन ना पानी ओपत खपत ना आवन जानी खंड पताल सपत नहीं सागर नदी ना नीर वहाएंदा ना तद सुरग।

आर पुरख नहीं जात ना जन्मा ना सो दुख सुख पाएदा ना तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम पेख ना कोई ना को नाथ कहाएदा जप तप संजम ना व्रत पूजा ना को आख वखाने दूजा आपे आप उपाय विगसे आपे कीमत पाएदा ना सुच संजम तुलसी माला गोपी कान न गऊ गुआला संत मंत पखंड न कोई ना को वंश बजाएदा कर्म तर्म नहीं माया माखी जात जन्म नहीं दिसे आखी ममता जाल काल नहीं माथे ना को किसे त्याएदा निंद बिंद नहीं जियो न जिंदो ना तद गोरख ना माचिंदो ना तद ज्ञान प्यान कुल ओपत ना को गणत गणाएदा वर्ण पेख नहीं ब्राह्मण खत्री देव न देहोरा गौ गायत्री होम जग नहीं तीरथ नावन ना को पूजा लाएदा ना को मुल्ला ना को काजी ना को शेख मसाई कहाजी रैयत राव ना हो मैं दुनिया ना को कहन कहाएदा पाओ न पगती ना शिव शक्ति साजन मीत बिन

कहता बक्ता आप अगोचर आपे अलख लखाएंदा जात पाना ता जगत उपाया बाज कला आदान रहाया ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय माया मोह वधाएंदा विरले को गुर शब्द सुनाया कर कर देखे हुक्म सवाया खंड ब्रह्मंड पता।

नानक साच रते बिस्मादी। बिस्म पए गुण गाएंदा मारू मैला पहला, आपे आप उपाय निराला, साचा थान कियो दयाला, पौन पानी अग्नि का बंधन काया, कोट रचाएंदा नौ कर खापे खापन हारे, दसवें वासा अलख अपारे, सायर सपत परे जल निर्मल, गुरमुख मैल न लाएंदा, रव सच दीपक जोत सबाई, आपे कर वेखे वडियाई, जोत स्वरूप सदा सुखदाता, सच्चे सोभा पाएंदा, गर्म है हाथ पटनवा पा।

ते पंडार है सर्व कला ले आपे रहया गुरमुख से बुझाएंदा नदर करे पूरा गुर पेटे जम जंदार न मारे फेटे ज्यों जल अंतर कमल बिगासी आपे बिरसते आएंदा आपे वर्त है अमृत तारा रतन जवे हर लाल अपारा सतगुर मिले ता पूरा पाये प्रेम पदार्थ पाएंदा प्रेम पदार्थ ले अमोलो कभी न काटस पूरा तोलो सच्चे का वापारी हो वे सच्चो सौदा पाएंदा सच्चा सौदा बिरला को पाए पूरा सतगुर मिले मिलाए गुरमुख होए सो हुकम पछाने माने हुकम समाएदा हुक्मे आया हुक्म समाया हुक्मे दीसे जगत उपाया हुक्मे सुर्ग मच पयाला हुक्मे कला रहाएदा हुक्मे तरती तौल सिर पारंग हुक्मे पौन पानी गैनारंग हुक्मे शिव शक्ति करवासा हुक्मे खेल खिलाएदा हुक्मे आडाने आगासी हुक्मे जल फल त्रिभुवनवासी हुक्मे सास गिरा सदा सुन हुक्मे देख दिखाएदा हुक्म उपाय दस अवतारा देव दानव अगणत अपारा माने हुक्म सो दरगह पै जाए साथ मिलाए समाएदा हुक्मे जुग शक्ति गुदारे हुक्मे सिद्ध साधक विचारे आप नाथ नथी सब जाकी बख्शे मुक्त कराएदा काया कोट करे महराजा नेब खवास पला दरवाजा मिथ्या लोभ नाही करवासा लब पाप पछताएदा सत संतोख नगर में कारी जत सत संयम शरण मुरारी नानक सहज मिले जग जीवन गुर सबदी पत पाएदा मारू महला पहला सुन कला अपरंपर तारी आप निरालम अपर अपारी आपे कुदरत कर कर देखे सुनो सुन उपाएदा कौन पानी सुने के साजे श्रेष्ट उपाय काया गढ़ राजे अगन पानी जियो जोत कुमारी सुनने कला रहाएदा सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय सुनने वर्ते जुग सवाए इस पद विचारे सो जन पूरा इस मिलिए परम चुकाएदा सुनो सपत सरोवर थापे जिन साजे विचारे आपे तित सत्सर मनुआ गुरमुख नावे फिर बहुड़ जोन न पाएदा सुनो चंद सूरज गैनारे किसकी ज्योत त्रिभुवन सारे सुनने अलख अपार निरालम सुनने ताड़ी लाएदा सुनो तरत आकाश उपाए जिन थम्मा राखे सच काल पाए त्रिभुवन साज में खुली माया आप उपाय खपाएदा सुनो खाणी सुनो बाणी सुनो उपजी सुन समाणी कुछ कुछ चलत किया सुर करते विस्माद शब्द देखाएदा सुनो रात दिन सदोए किए ओ पत खपत सुखा दुख दिए सुख दुख ही ते अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएदा साम वेद ऋग जुजर असर बन ब्रह्म ने मुख माया है त्रै गुण ताकि कीमत कह न सके को त्यों बोले ज्यों बोलाएंदा सुनो सपत पताल उपाय सुनो पवन रखे लिवलाए आपे कारण किया परंपर सब तेरो किया कमाएंदा राज तम सत कल तेरी छाया जन्म मरण हो मैं दुख पाया जिसनो कृपा करे हर गुरमुख गुण चौथा

गुरमुख समझे रोग न होई, हे गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुग है जुगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त पया पत पाएदा, पंच तत् सुनो परिघाषा, दे संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा पला दोई मस्तक लीके, पाप पुन भी जाएदा, उत्तम सतगुर पुरख निराले, शब्द रते हर रसमत वाले, रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाये, पूरे पाग मिलाएदा, इस मन माया को न्यो कनेरा, कोई बूझो ज्ञानी करो निवेरा, आशा मनसा हो।

अंदर जुगत समाई रहो निरालम राया, जग तिस की छाया जिस बाप न माया, ना तिस पैन ना प्राव कमाया, ना तिस ओपत खपत पुल जाती, ओ अजरावर मन पाया। तू अकाल पुरख नाही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला।

निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया। उत्तम जन संत पले हर प्यारे हर रस माते पार उतारे। नानक रेण संत जन संगत हर गुर प्रसादी पाया। तू अंतर जामी जी सब तेरे।

पाया पंच तत् मिल ए तनसिया आत्म राम पाए सुखतिया कर्म करतूत अमृत फल लागा हर नाम रतन मन पाया ना किस भूख प्यास मन मान्या सर्व निरंजन कट कट जान्या अमृत रस राता केवल बैरागी गुरमत पाए सुवाया अध्यात्म कर्म करे दिन राती निर्मल ज्योत निरंतर जाती सब दिर साल रसन रस रसना बेन रसाल बजाया बेन रसाल बजावे सोई जाकी त्रिभुवन सोजी होई नानक बूजो ए विद गुरमत हर राम नाम लिवलाया ऐसे जन विरले संसारे गुर शब्द विचारे रहे निरारे आप तरह संगत कुल तारे तिन सफल जन्म जग

दस में पुरख अतीत निराला आपे अलख लखाया पुरख अलेख सच्चे दीवाना हुक्म चलाए सच निशाना नानक खोज लहो कर अपना हर आत्म राम नाम पाया। सर्व निरंजन पुरख

दुख पै पंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे साथी जम फाती, नानक हर प्रभ सो पो पंजन, गुर मिले हर प्रभ पाया, काले कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाने, आपे जाने आप पछाने, सब किसका चोज सवाया, आपे साव आपे वनजारा, आपे परखे परखनहारा, आपे कस कसवटी लाए, आपे कीमत पाया, आप दयाल दया प्रवतारी, कट कट रव रहा बनवारी, पुरख अतीत वसे ने केवल, गुरु पुरख है पुरख मिलाया, प्रवदाना बीना गर्भ गवाए, दूजा मेटे एक दिखाए, आशा माए निरालम जोनी, अकल निरंजन गाया, हों में मेट शब्द सुख होई, आप विचारे ज्ञानी सोई, नानक हर जस हर गुण लाहा, सत्संगत सच फल पाया, मारू मैला पहला, सच कहो सत्य कर रहना, जीवत मरो पव जल जग तरना, गुर बोहित गुर बेड़ी तुल्हा, मन हर जप पार लंगाया, हों मैं ममता लोभ विनाशन, नौ दर मुक्ते दसवें आसन, ऊपर परे परे अपरंपर, जिन आपे आप उपाया, गुरमत ले वो हर लिव तरिये, अकल गाये जम से क्या डरिये, जत जत देखो तत तत तुम ही, अवर ना दुतिया गाया, सच हर नाम सच है सरना, सच गुर शब्द जिते लग तरना, अकत कथ है देखे अपरंपर, सुन गर्व ना जो नी जाया, सच बिन सत संतोख ना पावे, बिन गुरु मुक्त ना आवे जावे, मूल मंत्र हर नाम रसायन, कहो नानक पूरा पाया, सच बिन पाव जल जाए न तरिया, एहो समुंद अथा मां बिक परिया, रह अतीत गुरमतले ऊपर, हर निरपो कह कर पाया, झूठी जग हित की चतराई, बिलम न लागे आवे जाई, नाम विसार चले अभिमानी, उपजे बिन खपाया, उपजे बिन से बंधन बंदे, हो मैं माया के गल फंदे, जिस राम नाम नाही मत गुरमत,

जो ब्रह्मंड खंड को जानो, गुरमुख बूजो शब्द पछाणो, कट कट पोगे पोगनहारा, रह अतीत सवाया, गुरमत बोलो हर जस सूचा, गुरमत आखी देखो ऊंचा, श्रवणी नाम सुने हर बाणी, नानक हर रंग रंगाया, मारू महला पहला, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज हो निचिंदा, क्रम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया, नित दामन जो चमक चंदायन देखे, एनस ज्योत निरंतर देखे, आनंद रूप अनूप स्वरूपा, गुरपुरे देखाया, सतगुर मिलो आपे प्रभ तारे, सत्तर सूर दीपक गहनारे, देख अदिश रहो लिव लागी, सब त्रिभवन ब्रह्म सबाया, अमृत रस पाए तृष्णा पौ जाए, अनपौ पद पावे आप गवाए, ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा, निर्मल शब्द कमाया, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग जुग हर जस दीजे, हर जपिए अंत न पाया, अंतर नाम प्राप्त हीरा, हर जपते मन मन से तीरा, दुकट कट पौ पंजन पाये, बाहुर जन्म न जाया, भगत हेत गुर सब तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा, हर पावे गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सवाया, जिन जप जपियो सतगुर मत वाके, जम कंकर काल सेवक पगता के, उत्तम संगत गत मित उत्तम, जग पौजल पार कराया, ए पौजल जगत शब्द गुर तरिये, अंतर की दुबदा अंतर जरिये, पंच बाण ले जम को मारे, गगनंतर तनख चढ़ाया, साकत नर शब्द सुरत क्यों पाये, शब्द सुरत बिन आये जाये, नानक गुरमुख मुक्त परायण, हर पूरे पाग मिलाया, निरपौ सतगुर है रखवाला, भगत परापत गुरु गोपाला, सुन आनंद अनाहद वाजे, गुर शब्द निरंजन पाया, निरपौ सो सिर नाही लेखा, आप अलेख कुदरत है देखा, आप अतीत अजोनी संभो, नानक गुरमत सो पाया, अंतर की जब सतगुर जाने, सो निरपौ गुर शब्द पछाने, अंतर देख निरंतर बूझे, अंत न मन डोलाया, निरपौ सो अब अंतर वसया, एनस नाम निरंजन रसया, नानक हर जब संगत पाये, हर सहजे सहज मिलाया, अंतर बार सो प्रभ जाने, रह अलिप्त चलते कर आने, ऊपर आद सर्ब तिहु लोई, सच नानक अमृत रस पाया, मारू मैला पहला, कुदरत करने हार अपारा, कीते का नाही क्यों चारा, जी उपाय रिजक दे आपे, सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहा पर पूरे, किस नेड़े किस आखां दूरे, गुप्त प्रगट हर कट कट देखो, वर्ते ताक सबाया, जिसको मेले सुर समाए, गुर शब्दी हर नाम से आए, अनद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले परम जाया, मन तन तंते नाम प्यारा, संत सखाई चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मिलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरेवो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर के, हर दर गै जस गाया, सत गुर मिले ता महल बुलाए, साची दर गै गत पत पाए, साकत ठोर नाही हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया, सेवो सतगुर समुंद अथाहा, पावो नाम रतन तन लाहा, दिखिया मल जाए अमृत सरनावो, गुर सर संतोख पाया, सतगुर सेवो संत न की जय, आशा माहे निराश रही जय, संसा दुख बिना सन सेवो, फिर बहुर रोग न लाया, साचे पावे तिस वडी आए, कौन सो दूजा तिस समझाए, हर गुर मूरत एका वर्त है, नानक हर गुर पाया, वाचे

दर कपट कहो क्यों खुले, बिन सतगुर तत न पाया, करे विपूत लगावे पस में, अंतर क्रोध चंडाल सोहो में, पखंड की ने जोग न पाये, बिन सतगुर अलख न पाया, तीरथ वर्त नेम करे उद्याना, जत सत संजम कथे ज्ञाना, राम नाम बिन क्यों सुख पाये, बिन सतगुर परम न जाया, न्योली करम प्रियंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मनहाठी, पाखंड तरम प्रीत।

जले संसारा जल जल खपे बहुत विकारा मन मुख ठौर न पाए कबहू सतगुरु बूझ बुझाई है सतगुरु सेवन सेवड पागी साचे नाम सदा लिव लागी अंतर नाम रविया ने केवल कृष्णा शब्द बुझाई है सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख विरले किने पछाणी सच्चे शब्द रते बैरागी आवन जान रहाई है शब्द बुझे सो मैल चुकाए निर्मल नाम वसे मन आए सतगुरु अपना सद ही सेवे हो मैं विच्चों जाई है गुर ते बूझे तां दर सूझे।

जय आम दिन नाम रवे दिन राते मिल प्रीतम सुख होई है मन मुक्तात दूजे है लागा जन्मत की नाम वो अपागा आवत जात बिरथा जन्म गवाया बिन गुरु मुक्त ना होई है काया कुसुद हो मैं मल लाई।

काया संगारे मर मर जम में शब्द ना विचारे अंतर माया मोह गुबारा जो सुपने शुद्ध ना होई है। एक पंचा मार शब्द है लागे सतगुर आए मिलियावट पागे अंतर साथ रहे रंग राते सहज समावे सोई है। गुर की चाल गुरु ते जापे पूरा सेवक शब्द जापे सदा शब्द रवे कट अंतर रसना रसा कह सच सोई है। हम मारे शब्द निवारे हर का नाम रखे उधारे एक बिन हो होर ना जाना सहजे हुए सो होई है। बिन सतगुर सहज किने नहीं पाया गुरमुख बूझे सत समाया सच्चा सेव शब्द सच राते हो मैं सब देखोई है। आपे गुण दाते

है। सात से ते पत होए है, मारू महला तीजा, जग जीवन साचा एको दाता। गुर सेवा से शब्द पछाता, एको अमर एका पत साही, जुग जुग सिरकार बनाई है, सोजन निर्मल जिन आप पछाता, आपे आए मिलिया सुखदाता, रसना शब्द रसी गुण गावे, दर्शा से पत पाई है, गुरमुख नाम मिले वड्याई, मनमुख निंदक।

आचा मन पी वे पाय सुवाई है। पर पंडित अवरा समझाए कर जलते की खबर न पाए, बिन सतगुरु से वे नाम न पाई है, परखा के सांत न आई है। एक पसम लगाए फिर पेक तारी, बिन शब्द हूँ मैं किन मारी, हम दिन जलत रहे दिन राती, परम पेक परमाई है। एक ग्रह कुटुम्ब में सदा उदासी, शब्द मोए हर नाम निवासी, हम दिन सदा रहे रंग राते, तय पाए भगत चित लाई है। मन मुख निंदा कर कर विगुता, अंतर लोग पहुंचे जिस कुत्ता, जम काल तिस कदे न छोड़े, अंत गया पछताई है। सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नाम मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुरु को नाम न पाए, प्रभ ऐसी बंत बनाई है। एक सिद्ध साधिक बहुत विचारी, एक एनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मिलाए सो बूझे, भगत पाए पहु जाई है। स्नान दान करे नहीं बूझे, एक मनुआ मार मने सो लूझे, साचे शब्द रते एक रंगी, साचे शब्द मिलाई है। आपे सिर जे दे वड्याई, आपे पाने दे मिलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभ क्यों फुरमाई है। सतगुरु सेवे से जन साचे, मन मुख सेव न जानन काचे, आपे करता कर कर वेखे, जो पावे त्यों लाई है। जुग जुग साचा एको दाता, पूरे पाग गुर शब्द पछाता, शब्द मिले से विछड़े नाही, नदरी सहज मिलाई है। हूँ मैं माया मैल कमाया, मर मर जम मैं दूजा पाया, बिन सतगुरु सेवे मुक्त न होई, मन देखो लिव लाई है। जो तिस पावे तोई करसी, आपो हुआ ना किछ होसी।

सूफी का मुख बोले, दुर्मत नाम न पाई है, अवगणियारी कंस न पावे, मन की जूठी जूठ कमावे, फिर का साओ न जाने मूरख, बिन गुरु बूझ न पाई है, दुर्मत खोटी खोट कमावे, सिगार करे फिर खत्म न पावे, गुणवंती सदा पिर रावे, सदगुरु मेल मिलाई है, आपे हुक्म करे सब लेख है, इकना बख्श ले तुर लेख है, हम दिन नाम रते सच पाया, आपे मेल मिलाई है, हूँ मैं तात मुह रस लाई, गुरमुख लिव साची सहज समाई, आपे मेल है आपे कर वेख है, बिन सतगुरु बूझ न पाई है, एक शब्द विचार सदा जन जागे, एक माया मोह सोए रहे अपागे, आपे करे कराए आपे, होर करना किछु न जाई है, काल मार गुर शब्द निवारे, हर का नाम रखे उधारे, सतगुरु सेवा के सुख पाया, हर के नाम समाई है, दूजे पाए फिरे देवानी, माया मोह दुख माए समानी, बहुते पेख करे न पाए, बिन सतगुरु सुख न पाई है, किसनो कहिए जा आप कराए, जित पावे तित राह चराए, आपे मेहरवान सुखदाता, ज्यो पावे तिन चलाई है, आपे करता आपे पुगता, आपे संजम आपे जुगता, आपे निर्मल मेहरवान मधुसूदन, जिसदा हुक्म ना मेटिया जाई है, सेवड पागी जिन्नी एको जाता, कट कट वस रहा जग जीवन दाता, एक है गुप्त प्रगट है आपे, गुरमुख परम पहु जाई है, गुरमुख हर जियो एको जाता, अंतर नाम शब्द पछाता, जिस तू दे सोई जन पाए, नानक नाम वडाई है, मारू महला तीजा, सत्साला ही गहर गंभीर है, सब जग है तिस ही कैचीर है, सब कट भोग में सदा दिन राती, आपे सुख निवासी है, सच्चा साहिब सच्ची नाई, गुरु प्रसादी मन वसाई, आपे आए वस्या कट अंतर, टूटी जम की फांसी है, किस सेवी तै किस सलाही, सतगुरु सेवी शब्द सलाही, सच्चे शब्द सदा मत उत्तम, अंतर कमल प्रगासी है, देही काची कागद मिकदारा, बूंद पवे बिन सह कहत ना लागे बारा, कंचन काया गुरमुख बूझे, जिस अंतर नाम निवासी है, सच्चा चौका सुरत की कारा, हर नाम पोजन सच आधारा, सदा तृप्त पवित्र है पावन, जित कट हर नाम निवासी है, हों तिन बलिहारी जो साचे लागे, हर गुण गावे अन दिन जागे, साचा सुख सदा तिन अंतर, रसना हर रस राशी है, हर नाम चेता अवरना पूजा, एको सेवी अवरना दूजा, पूरे गुर सब सच दिखाया, सच्चे नाम निवासी है, परम परम जोनी फिर आया, आप पूला जा खत्म पुलाया, हर जियो मिले ता गुरमुख बूझे, चीने शब्द अवनासी है, काम क्रोध परे हम अपराधी, क्या मुँह ले बोले, ना हम गुण ना सेवा सादी, डुबदे पाथर मेल ले हो तुम, आपे साथ नाम अविनाशी है, ना कोई करे न करने जोगा, आपे करे करावे तो होएगा, आपे बख्श ले सुख पाए, सभी नाम निवासी है, तिर तन तरती शब्द बीज अपारा, हर साचे सेती वनज अपारा, सच तन जमया कोट ना आवे, अंतर नाम निवासी है, हर जियो अवगणियारे नो गुण की जय, आपे बख्श ले नाम दी जय, गुरमुख होवे सो पत पाए, इकत नाम निवासी है, अंतर हर तन समझ ना होई, गुरु प्रसादी बूझे कोई, गुरमुख होवे सो तन पाए, सभी नाम निवासी है, अनलवाओ परम फुलाई, माया मोह सुध न काई, मनमुख अंधे किछु न सूझे, गुरमत नाम प्रगासी है, मनमुख हो मैं माया सूते, अपना कर न संभाले अंत बिगूते, पर निंदा करें बो चिंता जाले, दुखे दुख निवासी है, आपे करते कार कराई, आपे गुरमुख दे

मन मुख ना बूझे फिर आणी, जमकाल कड़ी मोत निहाले, अंधिन आरजा छीजे, अंतर लोभ करे नहीं बूझे, सिर ऊपर जमकाल ना सूझे, ऐठे कमाना सो अग्गे आया, अंतकाल क्या कीजे, जो सच लागे

माया मोह मैल पतंग ना लागे, गुरमती हर नाम पी जाए, सब नाम विच वरते एक सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, हौ मैं मार सदा सुख पाया, नाए साचे अमृत पी जाए, किल विख दुख निवारण हारा, गुरमुख सेविया शब्द विचारा, सब किछ आपे आप वरते, गुरमुख तन मन पी जाए, माया अगन जले संसारे, गुरमुख निवारे शब्द विचारे, अंतर सांत सदा सुख पाया, गुरमति नाम ली जाए, इंद्र इंद्रासन बैठे जम का पौ पावे, जमना छोड़े बहु कर्म कमावे, सतगुरु पेटे ता मुक्त पाये, हर हर रसना पी जाए, मनमुख अंतर पगत न होई, गुरमुख पगत शांत सुख होई, पवित्र पावन सदा है बाणी, गुरमत अंतर पी जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश विचारी।

वेद पढ़े हर नाम न बूझे, माया कारण पढ़ पढ़ लूजे, अंतर मैल अज्ञानी अंधा, क्यों कर दुत्तर तरी जय हे, वेद बाद सब आंख वखाने, ना अंतर पीजे ना शब्द पछाने, पुन पाप सब वेद दृढ़ाया, गुरमुख अमृत पीजे हे, आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा

सच्चे सच्चा तख्त रचाया, निज कर वस्या तिथे मोह न माया, सद ही साथ वस्या कट अंतर, गुरमुख करनी सारी है। सच्चा सौदा सचवा पारा, ना तिथे परम ना दूजा पसारा, सच्चा तन खटिया कदे तोत ना आवे, बूझे कोई चारी है। सच्चे लाए से जन लागे, अंतर शब्द मस्तक।

गुरमत ऊंचो ऊंची पौड़ी, ज्ञान रतन हूँ मैं मारी है, माया मोह शब्द जलाया, सच मन वस्या जा सुद पाया, सच्चे की सब सच्ची करनी, हूँ मैं सिखाने वारी है, माया मोह सब आपे कीना, गुरमुख विरले किन्ही चीना, गुरमुख वो वैसो सच कमावे, साची करनी सारी है, कार कमाई जो मेरे प्रभु पाई, हूँ मैं तृष्णा शब्द बुझाई, गुरमत सद ही अंतर शीतल, हूँ मैं मार निवारी है, सच लगे तिन सब किस पावे, सच्चे शब्दे सच सुहावे, ऐसे साचे से दर साचे, नगरी नदर सवारी है, बिन साचे जो दूजे लाया, माया मोह दुख सवाया, बिन गुर दुख सुख जाते नाही, माया मोह दुख पारी है, साचा शब्द जिना मन पाया, पूरब लिखिया तिनी कमाया, सच्चो

हर हर करत्या मन निर्मल होआ, गुर की सेव प्यारी है। से जन सुखिए सतगुर सच्चे लाए, आपे पाने आप मिलाए, सतगुर राखे से जन उभरे। होर माया मोह खुआरी है, गुरमुख साचा शब्द पछाता, ना तिस कुटुंब ना तिस माता, एको एक रविया सब अंतर, सब ना जिया का आधारी है। हौ मैं मेरा दूजा पाया, किछ ना चले तुर खत्म लिख पाया, गुर साचे ते साच कमावे, साचे दुख निवारी है। जा तू देह सदा सुख पाए, साचे सब दे साच कमाए, अंदर साचा मन तन साचा, भगत परे पंडा।

महला तीजा आपे आप उपाय उपन्ना सब में वर्तै एक प्रसन्ना सबना सार करे जग जीवन जिन अपना आप पछाता है जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय फिर सिर संदे आपे लाए जिस पावे तिस आपे मेले जिन गुरुमुख एक हो जाता है आवा गौण है संसारा माया मोह बहुचित है विकारा तिर साचा साला ही सदही जिन गुरु का शब्द पछाता है एक मूल लगे ओनी सुख पाया डाली लागे तिन्नी जन्म गवाया अमृत फल तिन जन को लागे जो बोले अमृत बाता है।

जा तुद पाना ता सच्ची कारे लाए अवगुण छोड़ गुण माए समाए गुण में एको निर्मल साचा गुर कह सबद पछाता है जह देखा तह एको सोई दूजी दुर्मत सब देखोई एक स्ने प्रभ एक समाना अपने रंग सदराता है काया।

जो इच्छे सोई फल पाए, जो रंग मजी ठहराता है, मनमुख ज्ञान कते न होई, फिर आवे ठौर न कोई, गुरुमुख ज्ञान सदा साला है, जुग जुग एको जाता है, मनमुख कार करे सब दुख सवाए, अंतर शब्द नाही क्यों डर जाए, गुरुमुख शब्द वसे मन साचा, सद सेवे सुख दाता है। जह देखा तू सबनी थाई, पूरे गुर सब को जी पाई, नामो नाम त्याय सदा सद,

इतना गुरुमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुरु बूझ बुझाई, बिन नामे मुक्त किने ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साज सलाहे साज समावे, जिन गुरुमुख एक को

दर सात चै सात पछाता है मारू सो ले तीजा। आपे करता सब जिस करना जी जंक सब तेरी सरना। आपे गुप्त वर्ते सब अंतर गुर के शब्द पछाता है। हर के भगत परे पंडारा आपे बसे शब्द।

माया मोह सब जगत उपाया, ब्रह्मा विष्णु देव सबाया, जो तुड पाने से नाम लागे, ज्ञानमती पछाता है, पाप पुनवर्ते संसारा, हर्ष शोक सब दुख है पारा, गुरुमुख हो वह सो सुख पाए, जिन गुरुमुख नाम पछाता है, कीर्तन कोई मेटन हारा, गुर कै शब्दे मोक्ष द्वारा, पूरब लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है, माया मोह हर क्यों चितना लागे, दूजे पाए कणा दुख आगे, मनमुख परम पुले पेख सारी, अंतकाल पछताता है, हर कै पाणे हर गुण गाए, सब किल विष काटे दुख सवाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर तेती मन राता है, जिसनो नजर करे सो गुण निद गाए, हो मैं मेरा ठाक रहाए, गुण अवगुण का एको दाता, गुरुमुख विरली जाता है, मेरा प्रभ निर्मल अत अपारा, आपे मेले गुर शब्द विचारा, आपे बक्षे सच दृढ़ाए, मन तन साचे राता है, मन तन मेला विच जोत अपारा, गुरमत बूझे कर विचारा, हो मैं मार सदा मन निर्मल, रसना सेव सुख दाता है, गर काया अंदर बहु हट बजारा, तिस विच नाम है अत अपारा, गुर कै शब्द सदा दर्शो है, हो मैं मार पछाता है, रतन अमोलक अगम अपारा, कीमत कवन करे बेचारा, गुर कै शब्दे तोल तोलाए, अंतर शब्द पछाता है, सिमरत शास्त्र बहुत विस्तारा, माया मोह पसरिया पासारा, मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझे, गुरमुख विरले जाता है, आपे करता करे कराए, सच्ची बाणी सच दृढ़ाए, नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एको जाता है, मारू महला तीजा, हो सच सेवियो सृजन हारा, सबदे दुख निवारण हारा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, आपे अगम असहा है, आपे सच्चा सत वर्ताए, एक जन सच है आपे लाए, साचो सेवे साच कमावे, नामे सच समाहा है, तुर पगता मेले आप मिलाए, सच्ची पगती आपे लाए, साची बाणी सदा गुण गावे, इस जन्मे का लाहा है, गुरमुख वणज करे पर आप पछाणे, एक बिन को अवर न जाने, सच्चा साव सच्चे वन जारे, पूंजी नाम विसाहा है, आपे साजे सृष्ट उपाए, विरले को गुर शब्द बुझाए, सतगुर सेवे से जन साचे, काटे जम का फाहा है, पन्ने करे सवारे साजे, माया मोह दूजे जंत पाजे, मन मुख फिरे सदा अंध कमावे, जम का जेवड़ा गल फाहा है, आपे बख्शे गुर सेवा लाए, गुरमती नाम मन वसाए, अंदर नाम त्याए साचा, इस जग में नामो लाहा है, आपे सच्चा सच्ची नाई, गुरमुख देवे मन वसाए, जिन मन वस्या से जन सो है, तिन सिर चूका कहा है, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुर प्रसादी मन वसाई, सदा शब्द सलाही गुण दाता, लेखा कोई न मंगे ताहा है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा, अंत न पावे अलख वेवा, जिनको नजर करे तू अपनी, गुरमुख अलख लखाहा है, पूरे सतगुर सो जी पाई, एको नाम मन वसाई, नाम जपी तै नाम त्याई, महल पाए गुण गाहा है, सेवक सेवे मन हुक्म अपारा, मन मुख हुक्म न जाने सारा, हुक्मे मन्ने हुक्मे वड्याई, हुक्मे वे परवाहा है, गुर प्रसादी हुक्म पछाने, तावत राखे इकत

खबर सलाह है से जन निर्मल निज करवा साता है सदा भगत तेरी शरणाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद पावे त्यों तू राखे।

सच देवो सच समाहा है मारू मैला तीजा। सतगुर सेवन सेवड पागी अंदिन साच नाम लिव लागी। सदा सुख दाता रविया कट अंतर शब्द सच्चा ओ माहा है। नजर करे ता गुरु मिलाए हर का नाम मन वसाए। हर मन वस्या सदा सुख दाता शब्दे मन ओ माहा है। कृपा करे ता मेल मिलाए हौ मैं ममता शब्द जलाए। सदा मुक्त रह इक रंगी नाही किसे नाल कहा है। बिन सतगुर सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई न पावे पारा। जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्दे लाहा है। दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा पाओ आप वर्ताया। गुरमुख होवे सो अलिप्तो वर्ते मन मुख का क्या बेसाहा है। से मन मुख जो शब्द ना पछाने गुर के तय की सार न जाने। तय बिन क्यों निरपो सच पाये जम काट लेगा सहा है। अफ्रियो जम मारिया न जाई गुर के शब्दे नेर न आई। शब्द सुने ता दूरों पागे मत मारे हर जियो वे परवाह है। हर जियो की है सब फिरकारा एहो जम क्या करे विचारा। हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्मे कटदा सहा है। गुरमुख साचे किया आकारा गुरमुख पसरिया सब पासारा। गुरमुख होवे सो सच बूझे शब्द सच्चे सुख ताहा है। गुरमुख जाता कर्म विधाता जुगचारे गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरे ना जन्मे गुरमुख गुरमुख शब्द समाहा है। गुरमुख नाम शब्द साला है अगम अगोचर।

गुरुमुख हो वह सो नाम बूझे काटे दुर्मुख पाहा है। गुरुमुख उपजे साज समावे ना मर जमे ना जूनी पावे गुरुमुख सदा रहे रंग राते अन दिन लेन दे लाहा है। गुरुमुख भगत सोहे दरबारे सच्ची बाणी सब सवारे अन दिन गुण गावे दिन राती सह छेती कर जाहा है। सतगुर पूरा सब सुनाए हम दिन भगत करो लिव लाए हर गुण गावे सद ही निर्मल निर्मल गुण पात सहा है। गुण का दाता सच्चा कोई गुरमुख बिरला बूझे कोई नानक जन नाम सलाहे बिजसे सो नाम बेपरवाह है। मारू महला तीजा हर जियो सेवियो अगम अपारा किसदा अंत न पाये पारा वारा गुर प्रसाद रविया कट अंतर तित कट मत अगाहा है। सब मैं वरते एको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई सबना प्रतपाल करे जग जीवन दींदा रिजिक संभाहा है। पूरे सतगुर बूझ बुझाया हुक्मे ही सब जगत उपाया हुक्म मन्ने सोई सुख पाए हुक्म सिर साहा पास साहा है। सच्चा सतगुर शब्द अपारा तिस दे शब्द निस्तर है संसारा आपे करता कर कर वेख है देंदा सास गिराहा है। कोट मदे किसे बुझाए गुर कै शब्द रते रंग लाए हर साला है सदा सुखदाता हर

सच्चै सब सदा गुण गाए, गुण दाता वरतै सब अंतर, सिर सिर लिखदा साहा है, सदा हदूर गुरमुख जातै, सब दे सेवै सो जंत्रापै, अनदिन सेवै सच्ची बाणी, शब्द सच्चै ओ महा है, अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाए, मन हठ कर्म फिर जो नी पाए, विख्या कारण लभ लोभ कमावै, दुर्मत का दो रहा है, पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए, गुर के शब्द हर नाम चित लाए, मन तन हर रविया तट अंतर, मन पीने भगत सलाहा है, मेरा प्रभ साचा असुर संगारण, गुर के शब्द भगत निस्तारण, मेरा प्रभ साचा सद ही साचा, फिर साहा पाप साहा है, से भगत सच्चे तेरे मन पाए, दर कीर्तन करे गुर शब्द सुहाए, साची बाणी अम दिन गावे, निरसन का नाम विसाहा है, जिन आपे मेल बिछोड़े नाही, गुर के शब्द सदा सलाही, सबना सिर तू एको साहिब, सबदे नाम सलाहा है, बिन शब्द तुद नो कोई न जानी, तुद आपे कथी अकथ कहानी, आपे शब्द सदा गुरदाता, हर नाम जप संभा है, तू आपे करता सृजनहारा, तेरा लिखिया कोई न मेटनहारा, गुरमुख नाम देवे तू आपे, सहसा गणत ना ताहा है, भगत सच्चे तेरे दरबारे, सब दे सेवन

वर्ते अवर न बिया गुरु प्रसादी आप पछाने कमल विकसे बुद्ध ताहा है अपनी गहन गत आपे जाने और लोग सुन सुन आख वखाने ज्ञानी होवे सो गुरमुख बूझे साची सिर्फ सलाहा है देही अंदर वस्त अपारा आपे कपट खुलावना।

गुरु कै शब्द अमृति आया, अमृति अमरा पद होए, गुरु कै शब्द रस पाहा है, आप पछाने सो सब गुण जाने, गुरु कै शब्द हर नाम वखाने, अंगिन नाम रता।

गुरु का शब्द अमृत है बाणी, अंगिन हर का नाम वखाणी, हर हर सच्चा वसै कट अंतर, सो कट निर्मलता है, सेवक सेवे शब्द सलाहे, सदा रंग राते हर गुण गावे, आपे बक्से शब्द मिलाए, परमल वास मन ताहा है, शब्दे अकप सफे साला है, मेरे प्रभ साचे वे परवाहे, आपे गुण दाता शब्द मिलाए, शब्द का रस ताहा है, मन मुख पूला ठौर न पाए, जो तुर लिखिया तो कर्म कमाए, दिखिया राते दिखिया खोजे, मर्जन में दुख ताहा है, आपे आप आप साला है, तेरे गुण प्रभ तुझी माँ है, तू आप सच्चा तेरी बाणी सच्ची, आपे अलग अथाहा है, बिन गुरदाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए, गुर कृपा ते तत अंतर वस्या, शब्दे सच सलाहा है, से जन मिले तुर आप मिलाए, साची बाणी शब्द सुहाए।

होवै, दूजी दुर्मत कारज न होवै, संजोग विजोग करते लिख पाए, कीर्तना चले चलाहा है, जीवन मुक्त गुर शब्द कमाए, हास्यो सद ही रह समाए, गुर कृपा से मिले वड्याई, हो मैं रोग ना ताहा है, रस सस खाए पिंड वधाए, एक करे गुर शब्द ना कमाए, अंतर रोग महा दुख पारी, बिस्ता माए समाहा है, वेद पढ़े पढ़ बाद वखाने, कट में ब्रह्म तिस शब्द ना पछाणे, गुरमुख होवे सो तत बिलोवे, रसना हर रस्ता।

पारवत छोड़े बाहर तावे मनमुख अंधे साध न पावे अन रस राती रसना फीकी बोले हर रस मूल न ताहा है मनमुख देही परम पकारो दुर्मत मरे नित होए खुआरो काम क्रोध मन दूजे लाया सुपने सुख न ताहा है कंचन देही शब्द पतारो आम दिन पोग पोगे हर स्यो प्यारो महला अंदर गैर महल पाए पाना बुझ समाहा है आपे देवे देवन हारा किस आगे नहीं किसे का चारा आपे बक्के शब्द

गुरुमुख सच्चो सच वखाणे, गुरुमुख सच्चे मैं सच्चो सच्चा, गुरुमुख सबद सुनाएदा, गुरुमुख हो वै सो जी पाए, हो मैं माया परम गवाए, गुर की पौड़ी उत्तम ऊंची, दर सच्चे हर गुण गाएदा, गुरुमुख सच संजम करनी सार, गुरुमुख पाए मोख द्वार, पाए पगत सदा रंग राता, आप गवाए समाएदा, गुरुमुख हो वै मन

गुरमुख निर्मल मैल न लावे, नानक नाम रते विचारी, नाम में नाम समाएदा, मारू महला तीजा, आपे श्रेष्ट हुकम सब साजी, आपे खाप उठाप निवाजी, आपे न्याऊ करे सब साचा, साचे साथ मिलाएदा, काया कोट है आकारा।

दिसंतर पवे अंतर नहीं पाले, माया मोह बद्दा जम काले, जम की फांसी कबू न टूटे, दूजे पाए परमाए दा, जब तब संजम होर कोई नाही, जब लग गुर का शब्द ना कमाही, गुर के शब्द मिलिया सच पाया, सच्चे सच समाए दा, काम क्रोध सबल संसारा, बहु कर्म कमावे सब दुख का पसारा, सतगुर सेवे से सुख पावे, सच्चे शब्द मिलाए दा, पौन पानी है बेसंतर, माया मोह वर्ते सब अंतर, जिनकी ते जात से पछाने, माया मोह चुकाएं दा, एक माया मोह गर्भ

सच नाम सितलाएंदा मारू महला तीजा आद जुगाद दया पत दाता पूरे गुर कै शब्द पचाता सुदनो सेवै से तुझे समावै तू आपे मेल मिलाएंदा अगम अगोचर कीमत।

कोई सबना सार करे सुखदाता आपे रिजक पहुंचाएंदा अगम अगोचर अलख अपारा कोई न जाने तेरा परवारा अपना आप पछाने आपे गुरमति आप बुझाएंदा पाताल पुरिया लो अकारा इस विश्वर्त हुक्म करा।

मत देह सो होवे तू आपे शब्द बुझाएंदा अन दिन आर जा छिजदी जाए रैन दिन दोए साखी आए मन मुख अंध ना के तै मूड़ा सिर ऊपर काल रुआएंदा मन तन शीतल गुर चरणी लागा अंतर परम गया पौ पागा सदा आनंद सच्चे गुण गावे सच बाणी बोलाएंदा जिन तू जाता कर्म विधाता पूरे पाग गुर शब्द पछाता जत पत सच।

लख चौरासी आप उपाए, मानस जन्म गुर भगत दृढ़ाए, बिन भगती बिस्ता विचवासा, बिस्ता विच कृपाए दा, कर्म होवे गुर भगत दृढ़ाए, बिन कर्मा क्यों पाया जाए, आपे करे कराए करता, ज्यों पावे तिवें चलाए दा, सिमरत सासत अंत न जाने, मूरख अंधा तप न पछाने, आपे करे कराए करता, आपे परम पुलाए दा, सब किस आपे आप कराए, आपे सिर सिर संदे लाए, आपे थाप उठापे वेखे, गुरमुख आप बुझाए दा, सच्चा साहिब गहर गंभीरा, सदा सलाही तामन तीरा, अदम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुरमुख मन वसाए दा, आप निराल मोहर संदे

जुग छत्ती कियो गुबारा, तू आपे जाने सिरजनहारा, होर क्या को कह के आख वखाने, तू आपे कीमत पाएंदा। ओंकार सब सृष्ट उपाई, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई, आपे वेख करे सब साचा, आपे पन कराएंदा। बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुरते नदरी आई, सदा अलिप्त रह गुर सबदी, साचे सो चितलाएंदा। बाजे बाजे तुन आकारा, आप वजाए वजावन हारा,

कैसा मूल न चुके विकारा, गुरमुख हो वैसो गणत चुकाए, सच्चे सच समाए दा, जे सच दे ता पाए कोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, सच नाम सलाहे रंग राता, गुर कृपा ते सुख पाए दा, जप तप संजम नाम प्यारा, किलविख काटे काटन हारा, हर कै नाम तन मन शीतल होआ, सहजे सहज समाए दा, अंतर लोभ मन मैले मल लाए, मैले कर्म करे दुख पाए, कूड़ो कूड़ करे वा पारा, कूड़ बोल दुख पाएंदा, निर्मल बाणी को मन वसाए, गुर प्रसादी सहसा जाए, गुर कै पाणे चले दिन राती, नाम चेत सुख पाएंदा, आप सिरंदा सच्चा सोई, आप उपाय खपाए सोई, गुरमुख हो वैसो सदा सलाहे, मिल साचे सुख पाएंदा, अनेक जतन करे इंद्री वस ना होई, काम क्रोध जले सब कोई, सतगुरु से

हर जियो दाता अगम अथाहा, उस तिल न कमाए वे परवाहा, जिसनो अपड़ न सके कोई, आपे मेल मिलाएगा, जो किस करे सो निहचो होई, जिस बिन दाता अवर न कोई, जिसनो नाम दान

जय रसना नाम से आए रस पी जय रस ही से रस पाएगा महले अंदर महल को पाए गुर कै शब्द सच चित लाए जिसनो सच देव सोई सच पाए सच्चे सच मिलाएगा नाम विसार मन तन दुख पाया माया मोह सब रोग कमाया बिन नाम है मन तन है कुश्ती नरके वासा पाएगा नाम रते तिन निर्मल देहा निर्मल हंसा सदा सुख नेहा नाम सलाए सदा

गुर कै शब्द हर मन वसाए, गुर कृपा ते नाम वसिया कट अंतर, नामो नाम ते आइंदा, नावे नो लोचे जेती सब आई, नाव तिना मिले तुर पुरब कमाई, जिन्नी नाव पाया सेवट पागी, गुर कै शब्द मिलाएंदा, काया कोट अत अपारा, तिस विच बह प्रभ करे विचारा, सच्चा न्याओ सच्चो वापारा, निचल वासा पाएंदा, अंतर कर बंके थान सुहाया, गुरमुख विरले किने थान पाया, इस साथ निभ है साला है सच्चे, हर सच्चे

यह शरीर सब मूल है माया, दूजे पाए परम फुलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएगा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर्श कह जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएगा, बिन पादा गुर सेविया न जाए, मन मुख फूले मोए बिल्लाए, जिनको नजर होवे गुर केरी, हर जियो आप मिलाएगा, काया कोट पके हट नाले, गुरमुख ले वह वस समाले, हर का नाम त्याए दिन राती, उत्तम पदवी पाएगा,

अंदर आप लुकाया, गुर प्रसादी हर मिले मिलाया, सच्चा प्रभ सच्चा वापारा, नाम अमोलक पाएदा, इस काया की कीमत किने न पाई, मेरे ठाकुर ए बणत बनाई, गुरमुख हो वै सो काया सो दे, आपे आप मिलाएदा, काया विच तोटा काया विच लाहा, गुरमुख खोजे वे परवाहा, गुरमुख वणज सदा सुख पाए, सहजे सहज मिलाएदा, सच्चा महल सच्चे पंडारा, आपे देवे देवनहारा, गुरमुख साला हे सुखदाते, मन मेले कीमत पाएदा, काया विच वस्त कीमत नहीं पाई, गुरमुख आपे दे वड्याई, जिसदा हट सोई वत जाने, गुरमुख दे ना पछोताएदा, हर जियो सब में रहा समाई, गुर प्रसादी पाया जाई, आपे मेल मिलाए आपे, सब दे सहज समाएदा, आपे सच्चा शब्द मिलाए, शब्दे विच्चों परम चुकाए, नानक नाम मिले वड्याई, नामे ही सुख पाएंदा, मारू महला तीजा, अगम अगोचर वे परवाहे, आपे मेहरवान अगम अथाहे, अपड़ कोई न सकै तिसनो, गुर शब्दी मेलाया, तुदनो सेवे जो तुद पावे, गुर कै शब्दे सच समावे, आन दिन गुण रवे दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मरे से मरण सवारे, हर के गुण हृदय उतारे, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा पाव चुकाया, हर जियो मेले आप मिलाए, गुर कै शब्दे आप गवाए, आन दिन सदा हर पगती राते, इस जग में लाहा पाया, तेरे गुण कहां मैं कहन न जाई, अंत न पारा, कीमत नहीं पाई, आपे दया करे सुखदाता, गुण में गुणी समाया, इस जग में मोह है पसारा, मनमुख अज्ञानी अंध अंधारा, तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुरु पाए, हौ मैं मैल शब्द जलाए, मन निर्मल ज्ञान रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हृदय वसाई, कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू आपे सहज समाया, नाम अमोलक अगम अपारा, ना को होआ तो लनहारा, आपे तोले तोल तोलाए, गुर शब्दी मेल तोलाया, सेवक सेवे करे अरदास, तू आपे मेल बहाले पास, सबना जिया का सुखदाता, पूरे कर्म ते आया, जत सत संजम जे सच कमावे, यो मन निर्मल जे हर गुण गावे, इस बिख में अमृत प्राप्त होवे।

समाया अज्ञान तृष्णा इस तने जलाए इस दी बूजे जे गुर शब्द कमाए कान मन शीतल।

मिलाया, पूरे शब्द भगत सुहाई, अंतर सुख तेरे मन पाई, मन तन सच्ची भगती राता, सच्चे सो चितलाया। हऊ मैं विच सब जले शरीरा, कर्म होवे पेटे गुरपूरा, अंतर अज्ञान शब्द बुझाए, सतगुर ते सुख पाया, मन मुख अंधा अंध कमाए, बहु संकट जो नी परमाए, जम का जेवड़ा कदे न काटे, अंते बहु दुख पाया, आवन जाना शब्द निवारे, सच नाम रखे उधारे, गुर के शब्द मरे मन मारे, हऊ मैं जाए समाया, आवन जाने परज विगोई, बिन सतगुर थिर कोई न होई, अंतर जोत शब्द सुख वस्या, ज्योति जोत मिलाया, पंच दूत चित में विकारा, माया मोह का इहो पसारा, सतगुर सेवे ता मुक्त होवे, पंच दूत वस आया, बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डुब्बे वारो वारा, सतगुर पेटे सच दृढ़ाए, सच नाम मन पाया, साचा दर साचा दरवारा, सच्चे सेवे शब्द प्यारा, सच्ची तुन सच्चे गुण गावा, सच्चे माए समाया, करे अंदर को कर पाए, गुर के शब्दे सह सुवाए, उथे सोग विजोग ना व्यापे, सहजे सह समाया, दूजे पाए दुष्टा का वासा, पौंदे फिरे बहु मोह प्यासा, कुसंगत बह सदा दुख पावे, दुखो दुख कमाया, सतगुर बाजो संगत ना होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई, सहजे गुण रवे दिन राती, ज्योति जोत मिलाया, काया बिरख पंखी विचवासा, अमृत चुगे गुर

जन नानक नाम जपो पव खंडन, सुख सहजे रहन विहानी है, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, जो शरण परे तिसकी पत राखे।

हर हर नाम जिन ही सदा ते आया, तिन्नी गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो ताणी है। तू सब में वरते हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुरमस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक।

गगन रहाया हुक्मे चरणा, अगन उपाय ईदन मह बांधी, सो प्रभ राखै पाई हे। जी जंत को रिजक संभाहे, करण कारण समरथ अपाहे, खिन मह थाप उथापन हारा, सोई तेरा सहाय हे। मात गर्भ में जिन प्रतपालिया, सास गिरास होए संग समालिया, सदा सदा जपिय सो प्रीतम, वड्डी

तृप्त रहे आगाई है मीत हमारा सोई स्वामी। थांथनंतर अंतर जामी सिमर सिमर पूरन परमेश्वर चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा हर जस कीर्तन संग तन ताहा ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना दूत मारे करताई है। हर का जाप जपो जप जपने जीत आवो वसो कर अपने लख चौरासी नरक न देखो रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मंड उदाहरण हारा ऊंच अथा अगम अपारा जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी सो जनत सहते आई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले कर कृपा की ने कर गोले अनहद ऋण चुनकार सहज तुन साची कार कमाई है। मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी बिनस गई हो मैं मत मेरी अंगीकार किया प्रभ अपने जग में शोभ सुहाई है। जय जय काल जपो जगदीश है बल बल जाई प्रभ अपने ईश है तिस बिन दूजा अवर न दीस है एका जगत सवाई है। सत सत सत प्रभ जाता गुर प्रसाद सदा मन रात।

प्रिय प्रदेश न जाओ वसो कर मोरे, ऐसा बणज करो ग्रे पीतर, जित उतरे भूख प्यासा है, सगले कर्म धर्म जुग सादा, बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा, पई कृपा नानक सत्संगे, तो तन फिर आनंद उलासा है, तन अंधी फिर चपल सियाना, पंच तत्कारत

तन कछु ना समझै चंचल काचे, बहुर बहुर फिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासाए। आई आ गया फिरों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया।

मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटा खावे, जितने नरक से मनमुख पोगे, गुरमुख लेप ना मासा है, गुरमुख सोए जे हर जियो पाए।

जाचें सिद्ध साधिक बनवासी, जाचें जति सती सुखवासी, इक दातार सगल है जाचक, दे दान सृष्टि जाहे, करहें पगत अर रंग अपारा, खिन मैं थाप उथापन हारा, पारो तोल बेअंत स्वामी, हुकुम मन पगती जाहे, जिस देहे दर्श सोई

सुरत शब्द रिद अंतर जागी अम्यो चोल चोल पी जाहे मरे नाही सद सद ही जीवे अमर पया अविनाशी थी वे ना को आवे ना को जावे गुरदूर

संत संग महा सुख पाया, देख दर्शन इहो मन पी जाहे, मारू महला पंजवा सोलहे। इको अंकार सतगुर प्रसाद। गुर गोपाल गुर गोविंदा, गुर दयाल सदा बख्शिंदा, गुर सासत सिमरत खट कर्मा, गुर पवित्र स्थाना है, गुर सिमरत सब किल विखनास है, गुर सिमरत जम संग न फास है, गुर सिमरत मन निर्मल होवे, गुर काटे अपमाना है, गुर का सेवक नरक न जा।

सतगुर पेट हर जस मुख पणी है, कल कलेश मिटाए सतगुर हर दरगे देवे माना है। अगम अगोचर गुरु दिखाया, पूला मार्ग सतगुर पाया, गुर सेवक को बिघन न पगति, हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना है। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहा गोसाई, ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहत्याना है। गुर मिले सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले न जो है माई, सत संतोख दिया गुरपुर है, नाम अमृत पी पाना है। गुर की बाणी सब माए समाणी, आप सुनी तै आप वखाणी, जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया ने चल थाना है। सतगुर की महिमा सतगुर जाने, जो किच करे सो आपन पाने, साधु तूर जाचे जन तेरे नानक।

गुरुमुख जपिए लाए त्याना। आप तरह सगले कुल तारे हर दरगे पत से जाएंदा, खंड पताल दीप सब लोआ सब काले वस आप प्रभ किया। नेचल एक आप अविनाशी सो नेचल ज्योत सैंत आएंदा, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा, जो जल तरंग उठ

हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अतीत उदासी, अनेक रंग करें बहु पांति, जो पिता पूत लड़ाए दा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ता मिली है जान ले मिलाई, गुरमुख प्रगट पया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखाए दा, तू आपे करता कारण करना, सृष्ट उपाय तरी

श्रवण सुनिए दूजी अवर न जाप सकाई सगल तुम्हारी तारण आप चितारे अपना किया आपे आप प्रवथिया आप उपाय रचुन पसारा आपे कट कट सारणा एक उपाय वड दरबारी एक उदासी एक करबारी एक पूखे एक त्रिपत अघाए सब सह तेरा पारणा आपे सत सत सत साचा ओत पोत भगतन संगराचा आपे गुप्त आपे है प्रगट अपना आप पसारणा सदा सदा सद होवन हारा ऊंचा अगम अथा।

मोह सोग सब परम मिटाए, एको मंत्र दृढ़ाए औखद सच नाम रिद गायना। जिस नामे को तरसें बो देवा।

सेव न जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई जिसनो लाए ले सो सेवक जिस वड पाग मथाएना गुर की महिमा वेद न जाने तुच्छ मात सुन सुन वखाने पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर जिस सिमरत मन शीतलायना जां की सोए सुनी मन जीवे हृदय वसे ता ठंडा थीवे गुरमुखों अलाए ता शोभा पाए तिस जम के पंथ न पाएना संतन की शरणाई पड़िया जियो प्राण तन आगे तरिया सेवा सुरत न जाना काई तुम करो दया किरमाएना निर्गुण को संग लिहो रलाए कर कृपा मोह टहले लाए पखा फेरो पीसो संत आ गए चरण तोए सुख पाएना बहुत दुआरे परम परम आया तुमरी कृपा ते तुम शरण आया सदा सदा संतें संग राखो इहो नाम दान देवाएना पए किरपाल गुसाई मेरे

सिमरै जख दैत सब सिमरै अगनत ना जाई जस गना सिमरै पश पंखी सब पूता सिमरै बन पर्वत अवधूता लता बलि साख सब सिमरै रव रहया स्वामी सब मना सिमरै थूल सूखम सब जनता सिमरै सिद्ध साधिक हरमंता गुप्त प्रगट सिमरै प्रभ मेरे सगल पवन।

आरत सोजिना जाके मन बूठा प्रभ अपना पूरे कर्म गुरु का जप जपना सर्व निरंतर सो प्रभ जाता बहुड़ना जोनी परम रुना गुरु का शब्द वसे मन जाके दुख दर्द प्रमता का भागे सुख सहज आनंद नाम रस अनहद बाणी सहज तुना सो तनवंता जिन प्रभ त्याया सो पतवंता जिन

पंजवा प्रभ समरथ सर्व सुख दाना सिमरो नाम हो मेहरवाना हर दाता जी जंत पेखारी जन बांचे जा चंगना मांगो जन तूर परम गत पावो जन्म जन्म की मैल मिटावो दीर्घ रोग मिट

पंगना मन तन अर्प तरी हर आगे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत त्यागी हो मैं हंतना जल थल पूरन अंतर जामी कट कट रव्या अचल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर तोट भंडार नाही रत्न।

एको एक रविया सब ठाई, तिस बिन दूजा कोई नाही, आद मद अंत प्रभ रविया, त्रिष्ण बुझी परमंगना, गुर परमेश्वर गुर गोविंद, गुर कर्ता गुर सदबक्संद, गुर जप जाप जपत फल पाया, ज्ञान दीपक संत संगना।

एको दान सर्व सुख गुण निद आन मंगन नेह किंचना ताया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बनी हर बाणी मन नाम मजी ठहरंगना सोले कला संपूर्ण फलिया अनत कला होए ठाकुर चढ़िया अनद विनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोले मैला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद तू साहेब हों।

इकना पार लंघावे आपे सतगुरु जिन का सच बेड़ा कौतक काल एहो हुकम पठाया जी जंत उपाय समाया वेखे विकसे सब रंग माने रचन की ना इक आखाड़ा वड्डा साहिब वड्डी नाई वड्डा तार वड्डी जिस जाई अगम अगोचर बेअंत अतोला है नाही किछ आहारा कीमत कोई न जाने दूजा आपे आप निरंजन पूजा आप सुज्ञानी आप त्यानी आप सतवंता अत गाड़ा केतड़िया दिन गुप्त कहाया।

गंगा मोहन माधव कृष्ण मुरारे जगदीशर हर जियो असर संगारे जग जीवन अविनाशी ठाकुर कट कट वासी है संगा तरणी तर ईश नरसिंह नारायण

कुट बैन शंख चक्र गदा है तारी महासारथी सत्संगा पीत पीतंबर त्रिभवन धनी जगन्नाथ गोपाल मुखपणी सारंग तार भगवान बीठला मैं गणत ना आवे सरबंगा नेह कंटक नेह केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मृत लोक पयाल।

सुद लेप नहीं एक तिल रंगा, एक जी गुण कमन बखाने, सहज फनी शेख अंत ना जाने, नवतन नाम जपे दिन राती, एक गुण नाही प्रभ कह संगा, ओट गही जगत पित सरनाया।

मस्तक लाए परम पद पावो, जिस प्राप्त सो पावेगा, जिनको कृपा करी सुख दाते, तिन साधु चरण लै हृदय पराते, सगल नाम निधान तिन पाया, अनहद शब्द मन वाजंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जेबा।

छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे, हुए पै खाक फकीर मुसाफर, इहो दरवेश कबूल दरा, सच निवाज यकीन मुसल्ला, मनसा मार निवार्यो आसा, दे मसीत मन मौलाना, कलम खुदाई पाक खरा।

दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदक ले बांधो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पैखा का, पिस्त पीर लफज कमाए अंदाजा, हूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लाह आला हुजरा। सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे होई हाजी, सो मौला मलऊन निवारे।

सिमरत नाम अन दिन जागे अनद विनोद करे हर सिमरन तिस माया संग न ताल का रोग सोग दुख तिस नाही साध संग हर कीर्तन गाए।

तिनकी तोड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरै नाही काहू बेरा, तिनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अंकार तजाए, तिस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हों बलिहारी सतगुरु पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ विसरे नाही, आठ पैर हर हर को त्याई।

निरंकार सतगुर प्रसाद। चरण कमल हृदय नित पारी, गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी। तन मन अर्प तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना। सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड देश आज सवारे। सास दरास समाले करता, कीता अपना पावना। जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही। साध संग पज अचुत स्वामी, दरगह शोभा पावना। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निध। सर्व कल्याण जे मन में चाहे, मिल साधु स्वामी रावणा। सासत सिमरत वेद बखान।

नितताता अकिर्त कने को रखे न कोई नरक कोर में पावना जियो प्राण तन तन जिन साजिया मात गर्भ में राख निवाजिया तिस्यो प्रीत छाड़ अनराता काहू सिरे ना लावना तार अनग्रो स्वामी मेरे कट कट वसे सबन कहने रे हाथ हमारे कछुए नाही जिस जाना है तिसे जनावना जाके मस्तक तुर लिख पाया तिसी पुरुख ना व्यापे माया।

कटे ना कटाए सोई होए जे करते भावे कह कह आप वजावना अंधकूप ते से ही काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कृपा तार रखे कर अपने मिल साधु गोविंद त्यावना तेरी कीमत कहना जाई अचरज रूप वड्डी वड्याई।

कारा, हर का नाम मन वस्या गुरु शब्द विचारा, सच संजम मत ऊतमा हर लगा प्यारा, सब सचो सच वर्तदा सच सिरजनहारा। श्लोक महला तीजा, केदारा रागा विच जानिए पाई शब्दे करे प्यार, सत्संगत च्यों मिल दो रहे सच्चे तरे प्यार, विच्चों मल कटे अपनी कुला का करे उधार, गुणा की रास संग रहे अब गुण कढ़े विडार, नानक मिलिया सो जानिए गुरु ना छोड़े अपना, दूजे ना तरे प्यार। मैला चौथा, सागर देखो डर मरो पै तेरे डर ना है, गुर के शब्द संतोखिया नानक बिकसा नाए। मैला चौथा, चढ़ बोए थे चाल सो सागर लहरी दे, थाक न सच्चे बोए थे जे गुर तीरक दे, तित दर जाए उतारिया गुर दिसे सावधान, नानक नदरी पाई है दरगे चले मान। पौड़ी, ने कंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई, सच्चे तख्त बैठा न्याओ कर सत्संगत मेल मिलाई, सच्चा उपदेश हर जापना हर स्यो बन आई, एथे सुखदाता मन वसे अंत होए सिखाई, हर स्यो प्रीत उपजी गुरसो जी पाई। श्लोक महला पहला, पूली पूली मैं फिरी पादर कह ना कोए, पूछो जाए सियाणिया दुख काटे मेरा कोए, सतगुर साचा मन वसे साजन उत ही ठाए, नानक मन तृप्तासी है।

बेकार कमाए। नानक चानन गुर मिले दुख बिख जाली नाए पौड़ी। माया वेख ना पुल तू मन मुख मूर्खा, चल दिया नाल ना चले सब झूठ दर्ब लखा। अज्ञानी अंध ना बूझे सिर ऊपर जम खड़ग कलखा, गुर प्रसादी उबरे जिन हर रस चखा।

हर का नाम अमोल है। क्यों कीमत की जय, आपे श्रेष्ठ सब साजियन आपे वर्ती जय। गुरुमुख सदा सलाही है, सच कीमत की जय। गुरु शब्दी कमल विकासिया।

है मनमाए समाना, हर जियो का महल पाया सच लाए ते आना, जिन गुरु प्रसादी मन जीतिया जग तिन्हें जिताना। श्लोक महला तीजा, जोगी होवा जग पवा कर कर पीखिया लेओ, दरगे लेखा मंगी है किस किस उत्तर देओ, पिखिया नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल, देखी हाथ ना लदिया सब बदी जमकाल, नानक गल्ला झूठिया सच्चा नाम समाल। मैला तीजा, जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवियो ना कोय, ऐसा सतगुरु लोड़ लहो जिस जेवड़ अवर ना कोय, तिस सरनाई छूटी है लेखा मंगे न कोए, सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे, हृदय जिस दे सच है तन मन भी सच्चा होए, नानक सच्चे हुक्म मने सच्ची वड्याई दे, सच्चे माहि समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी, सूरे ए ना आखिए अंकार मरे दुख पावे, अंधे आप ना पछाणनी दूजे पच जावे, अत क्रोध स्यो लूज दे अगे पिछे दुख पावे, हर जियो अंकार ना पावे।

मारे एवं मन मारे या न मरे जे लोचे सब कोए नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुरु पेटे सोए पौड़ी। दोवे तरफा उपाय उन विच सकत शिव वासा शक्ति किने न पायो फिर जन्म विनाशा गुर सेवे सांत पाये जब सांस गिरासा सिमरत सासत सोध देख उत्तम हरदासा नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। श्लोक महला तीजा होवा पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुखचार नवखंड मध्य पूजिया अपने चज विचार मत सच्चा अखर पुल जाए चौके पिटे ना कोए झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा आप उपाय करे आप आपे नजर करे आपे दे वडिआइया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजे अफरियो जग में वर्तदा पापी स्यों लूजे गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजे सो हर शरणाई छुट्टी है जो मन स्यों जूजे मन विचार हर जप करे हर दरगे सीजे। श्लोक महला पहला।

इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाए हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुबाए पौड़ी मनमुख काल वे आपदा मोय माया लागे खिन मैं मार पछाड़ सी पाए दूजे ठागे फिर वेला हथ ना आवई जम का डंड लागे तिन जम डंड ना लगे जो हर लिव जागे सब तेरी तुद छड़ावनी सब तुदे लागे। श्लोक महला पहला। सर्बे जोय अगच्छमी दुख कनेरो आत कालर लादस सर लागणो।

नानक मेलन नाम पौड़ी आपे पिंड सवारियों विच नव निध नाम इक आपे परम पुलायन तिन ने फल काम इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम इकनी सुन के मन्या हर उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम श्लोक महला पहला पोल तन पै मन वसे है कै पादर हीड अत डापन दुख कणो तीने खा परीड महला पहला मांदल बेद से बाजनो कणो तड़िए जोए नानक नाम संभाल तू बीजो अवर न कोई महला पहला सागर गुणी अथा किन हाथा ला देखिए वड्डा वे परवाव सतगुर मिले ता पार पवा मज पर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथी पुख पौड़ी जिन्नी अंदर पालिया गुर शब्द सुहावे जो इच्छन सो पाएंदे हर नाम ते आवे जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले सो हर गुण गावे तरम राय तिन का मित है जम मग ना पावे हर नाम ते आवे दिन सरात हर नाम समावे श्लोक महला पहला सुनिए एक वखाणी है सुरग मृत पयाल हुक्म न जाई में

मने दुख जाए, आपे दाता सुखैदा आपे दे सजाए, नानक एवे जानिए सब किछ तिसैर जाए। पौड़ी हर नाम बिना जगत है निर्धन, बिन नामे तृप्त नाही, दूजे परम पुलाया हो मैं दुख पाही। बिन कर्मा किछु ना पाये जे बहुत लो चाही, आवे जाए जम्मे मरे गुर सब छुटाही, आप करे किस आखिए दूजा को नाही। श्लोक मैला तीजा, इस जग में संती तन खटिया, जिना सतगुर मिलिया प्रभ आए, सतगुर सच दृढ़ाया इस तन की कीमत कही न जाए, इत तन पाये पुख लथी सुख वस्या मन आए, जिना को तुर लिखिया तिनी पाया आए, मन मुख जगत निरतन है माया नो बिलाए, अंदिन फिरदा सदा रहे पुख न कदे जाए, सांत ना कदे आवई न सुख वसे मन आए, सदा चिंत चित वदार है सहसा कदे न जाए, नानक विण सतगुर मत पवी, सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए, सदा सदा सुख में रहे सच्चे माए समाए। मैला तीजा, जिन उपाय मेदनी सोई सार करे।

पाए रहो तिस बिन अवरना कोए खाना शब्द चंगिया जित खादे सदा तृप्त होए पैनन सिफत सनाए है सदा सदा ओ उजला मैला कदे न होए सहजे सचतन खटिया थोड़ा कदे न होए देही नो शब्द सिगार है जित सदा सदा सुख होए नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप विखा ले सोए पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापे हर हर नाम ते आई है हो मैं अज्ञान गवापे अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापे जिन चाखिया से निरपो पे से हर रस्त्रा पे हर कृपा तार पियाया फिर काल न व्यापे श्लोक मैला तीजा लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी गुण न विहाजे कोए गुण का गाहक नानका विरला कोई होए गुर प्रसादी गुण पायन जिसनो नदर करे महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार नानक हुकम मने सुख पाये गुर सबदी विचार पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याओ गुर सबदी दर जानिए अंदर मेहर सराओ खरे पर खजाने पायन खोटिया नाही थाओ सब सच्चो सच वर्तदा सदा सच न्याओ

सब कोए पौड़ी सबे थोक विसार इको मित कर मन तन होए निहाल पापा दह हर आवन जाना चुके जन्म ना जाए मर सच नाम आधार सोग नाम होए जर नानक नाम निदान मन में संजतार।

पाणे जेवड़ होर दात नाही सच आग सुनाया, जिनको पूरब लिखिया तिन सच कमाया, नानक ते शरणागति जिन जगत उपाया। श्लोक महला तीजा, जिनको अंदर ज्ञान नहीं पै की नाही बिंद, नानक मोया का क्या मारना, जे आप मारे गोविंद। महला तीजा, मन की पतरी वाचनी सुखी हूँ सुखसार, सो ब्राह्मण पला आखिए जे बूझे ब्रह्म विचार, हर साल आहे।

अंदर सुख न होवई मन मुख जन्म खुआर। नानक नाम रते से उबरे गुर कै हेत अपार पौड़ी। आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा, जो हुक्म न बूझे खसम का सोई नरक।

जित पावे तित लाएंदा गुरुमुखार सच्चा, सबना का साहिब एक है गुर शब्दी रचा। गुरुमुख सदा सलाहिए सब तिस दे जचा, जो नानक आप नचाएंदा तिभी को नचा सुध

कपड़ भोग डरावने जिचर फिरी न देख महला पंजवा उठी जालू कंतड़े हो पसी तो दीदार काजल हार तमोल रस बिन पसे हबरस छार पौड़ी तू सच्चा साहिब सच सच सब धारिया गुरमुख की तो

दुर्जन तू जल पहाड़ी वे छोड़े मर जाए, कंता तू सौ से जुड़ी मैंडा हबो दुख लाए। महला पंजवा। दुर्जन दूजा भाव है वे छोड़ा हो मैं रोग, सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग। पौड़ी। तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन, तुद सिरजा सब संसार तू नायक सगल पौन। तेरी कुदरत कोई न जाने मेरे ठाकुर सगल रौन, तुद अपड़ कोई न सके तू अब नासी जग उधरण।

आपके सतवंता, जति सति प्रभु निर्मला मेरे हर भगवंता। सब ब्रह्म पसार पसारयो आपे खेलंता, यो आवागमन रचायो कर चोज देखंता। तिस बौड़ गर्भ ना पावई जिस देवै गुरमंता, जो आप चलावे त्यों चल दे किछ वस ना जनता। दखने महला पंजवा, कुरिये कुरिये वैद्या तल गाड़ा महरेर, वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर। महला पंजवा, सच जान कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे, नानक आतसड़ी मंज नैनू बिया ढल पबन ज्यो जुम।

से अपर परा जिस मेले सतगुर आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा दखने महला पंजवा गैड डड़ा त्रिन छाया।

इन माया मोहनी मोइया नित फिरे परमाइया हाठा दो मैं कीतियों शिव सकत वरताइया शिव अगे शक्ति हारिया एवं हर पाइया एक विचों ही तुद रखिया जो सतसंग मिलाइया जल विचों बिंब उठा लियो जल माए समाइया दखने

सजन मैंडा चाहिया हब कही दा मित, हबे जानन अपना कही न ठाहे चित। महला पंजवां गुजड़ा लदम लाल।

जित भुख ले जावे प्रभ जीओ देवो दर्शन अपना। जित डाढ़ी तृप्तावे अरदास सुनी दातार प्रभ डाढ़ी को महल बुलावे। प्रभ देख दया दुख भुख गई ढाढ़ी।

पौड़ी। बिन कर्मा हर जियो न पाईए, बिन सतगुर मनवा न लगे। धर्म धीरा कर अंदरे, यो पापी मूल न तगे। अह कर करे सो अह कर पाए, एक घड़ी मोहत ना।

मुखो अलाए हब मरण पछाणंदो कोए, नानक तिन्ना खाक जिना यकीना हित स्यों। महला पंजवा। जान वसंदो मंज पछाणु को हेकड़ो, तैतन पड़दा नाहे नानक जय गुरु भेटया। महला पंजवा। मतड़ी कांड कुआ पाव धोवंदो पीवसा, मूतन प्रेम अथा पसन को सच्चा धनी। पौड़ी। निर्भव नाम विसारिया नाल माया रचा, आवे जाए भवाई है बो जो नी नचा। बचन करे तै खिसक जाए बोले सब कच्चा, अंदरों थोथा कूड़ियार कूड़ी सब खच्चा। वैर करे निर्वैर नाल झूठे लालचा, मारिया सच्चे पातशाह वेग धुर कर मचा। जमदूती है हेरिया दुख ही मैं पचा, हुआ तपावस धर्म का नानक दर सच्चा। दखने महला पंजवा। परबाते प्रभु नाम जप गुरु के चरण ध्याए, जन्म मरण मल उतरे सच्चे के गुण गाए। महला

सुखदायक ज्ञान रास नाम धन सौ प्यों इस सौदे लायक सांझी गुरु नाल बहालिया सर्व सुख पायक मैं नालों कदे न विछड़े हर पिता सबना गल्ला लायक श्लोक दखने महला पंजवा नानक कचड़िया सो तोड़ ढूंढ सजन संत पक्या ओए जीवन दे विछड़े ओए मोया न जाही छोड़ महला पंजवा नानक बिजलियां चमकन गुरन घटा अत कालिया बरसन मेघ अपार नानक संगम तेरी सुहंदिया महला पंजवा जल थल नीर परे शीतल पवन झुलार दे सेगड़िया सोयन हीरे लाल जड़न दिया सुबर कपड़ भोग नानक तेरी विहूनी तत्तिया पौड़ी कारण करता जो किया सोई है करना जे सौ ताम है प्राणिया पावे धुर लेना बिन कर्मा किसु न लभई जे फिरे सब धरना गुर मिल पो गोविंद का भय डर दूर करना बहते बैराग उपजे हर खोजत फिरना खोजत खोजत सहज उपजया फिर जन्म न मरना ज्याय कमाए ज्याया पाया साध सरना बोहित नानक देव गुरु जिस हर चढ़ाए तिस

कीमत कहन न जाइए सच सा अडोलै सिद्ध साधक ज्ञानी जानिया कौन तुद नो तोलै बन्नन गड़न समरथ है ओपत सब परलै करण कारण समरथ है घट घट सब बोलै रिजक समाहे सब सै।

रहाऊ। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा। जी बधो सु धर्म कर थापो, अधर्म कहो कत पाई, आपस को मुनवर कर थापो, काको कहो कसाई। मन के अंधे आप न बूझो, काहे बुझावो भाई, माया कारण विद्या बेचो, जन्म अभिर था जाई। नारद बचन व्यास कहत है, सुख को पूछो जाई, कह कबीर राम रम छूटो, नाहे तबूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है, जो लो मनो न तजे विकार, जे घर बन संसार किया ते पूरे संसार। सार सुख पाई है रामा, रंग रवो आत्मा राम रहाओ, जटा भस्म लेपन किया कहा गुफा में बास। मन जीते जग जीतया, जाते बिछया ते होए उदास। अंजन दे सब कोई सुख चान माहे बिडान, ज्ञान अंजन जे पाया ते लोयन परवान। कह कबीर अब जानया।

राम उदक जे जन पिया ते बहुर न पई प्यास। गोर प्रसाद जे बूझिया आसा ते भया निराश। सब सच नजरी आया जो आत्म भया उदास। राम नाम रस

सुनने सुन मिलया समदर्शी पवन रूप हो जावेंगे। बहर हम काहे आवेंगे आवन जाना हुक्म तिसै का हुक्म बुझ समावेंगे। रहाओ जब चूके पांच

को बहर न को जल फेरा। राग मारू बाणी कबीर जियो की को ओंकार सदगुर प्रसाद। अनुभव किन न देखिया बैरागी अड़े बिन बै अनुभव।

जीड़े ममता जालिया पिंड बना हम बै चिंता जाल तन जालिया बैरा जीड़े जे मन मृतक होए बना हम बै सतगुर बिन बैराग।

चार मुकत चारे सिद मिलकै दूले प्रभु की शरण पर्यो। मुकत भयो चौहो जुग जान्यो जस कीरत माथे छत्र धर्यो। राजा राम जपत को न करयो गुरु उपदेश साध की संगत। भगत भगत ताको नाम पर्यो रहाओ। शंख चक्र माला तिलक विराजत देख प्रताप जम डर्यो। निर्भव भय राम बल गर्जत जन्म मरण संताप हिर्यो। अम्बरीक को दियो अभय पद राज भीकण अधिक करयो। नवनिध ठाकुर दई सुदा मैं धुरु अटल अज हूँ न टर्यो। भगत हेत मार्यो हर नाखस नरसिंह रूप होय देत हर्यो। नामा कै भगत बस के सब।

पेट भरो पशुआ जो सोयो, मनुख जन्म है हारे रहा। साध संगत कब हो नहीं कीनी, रचियो धंधा झूठ। स्वान सूकर बायस जिमे, भटकत चाल्यो ऊठ। आप

राम, निंदा करते जन्म सिरानो, कभु न सिमरो राम। कह कबीर से तय नहीं, मूर्ख मुगध गवार, राम नाम जान्यो नहीं, कैसे उतरस पार। राग मारू बाणी जयदेव जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चंद सत भेदया, नाद सत पूरिया, सूर सत थोड़ सादत किया। अबल बल तोड़या, अचल चल थपया, अघड़ घड़या तहां अप्यो पिया। मन आद गुण आद बखानया, तेरी दुबदा दृष्ट सम्मानया। रहा अर्ध को अर्धया, सर्द को सर्दया, सलल को सल सम्मान आया। बदत जय देव जय।

चार पदार्थ अष्टमा सिद्ध नव निध कर तलता कह, हर हर हर न जपस रसना, अवर सब छाड़ बचन रचना रहाओ, नाना ख्यान पुराण वेद विद चौतीस अक्षर माहे, व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरना है। सहज समाज उपाध रहत हो बड़े भाग लिव लागी, कह रविदास उदास दास मत जन्म।

कोई न बेली गुरमुख अमृत पीवा। रचना राच रहे निरंकारी सब मन कर्म सुकर्मा। नानक पंथ निहाले साधन तू सुन आत्म रामा। बाबिया प्रयो बोले को कल बानिया। साधन सब रस चोले अंक समानिया। हर अंक समानी जा प्रभु बानी सा सोहा गण नारे। नवघर थाप मैल घर।

नानक चेत सहज सुख पावे जे हर वर घर धन पाए। वै साग बला साखा वेश करे धन देख हर द्वार आवो दया करे। घर आओ प्यारे दुतर तारे सुध बिन अड न मोलो। कीमत कौन करे तुझ पावा देख दिखावे टोलो। दूर न जाना अंतर माना हरता मैल पछाना। नानक वै साखी प्रभ पावे सुरत शब्द मन माना। माओ जेठ भला प्रीतम क्यों विसरे। खलता पै सर पार साधन बिनो करे।

सुख मैली, नानक देख जाने तिस जैसे कर्म मिले गुण गहली। आषाढ़ भला सूरज गगन तपे, धरती दुख सह सुख अगन पक्ष। अगन रस सुख मरिय सुख भी सो किरत नहारे, रस फिर छाया धन ताते टीन लवे मंज पारे। अवगुण बाद चले दुख आ गए, सुख तिन साथ संभाले। नानक जिसनो यो मन दिया, मरण जीवन सब नाले। सावन सरस मना, घन वर्षा ऋतु।

परे बरस रुते रंगमानी, बरसै निज काली क्यों सुख बाली, दादर मोर लवंते, प्रिय प्रिय चवै बबीहा, बोले भुयंगम फिर डसंते। मच्छर डंग सायर पर सुबर बिन हर क्यों सुख पाई है, नानक पूछ चलो गुरु अपने, जय प्रभु तै ही जाइए। असुन आओ फिरा साधन झूर मुई, ता मिली है प्रभु मेले दूजे पाए हुई। झूठ विभूति ता फिर मोती, को कह कहां से फुले, आगे काम पिछे रुत जाडा, देख चलत मन डोले। दै दिस साख हरी हरियावल, सहज पचै सो मीठा, नानक असुन मिलो प्यारे, सतगुर पए बसीठा। कतर किरत पया जो प्रभु पाया, दीपक सहज बलै तत जलाया। दीपक रस्ते लो धन फिर मेलो, धन ओ मा है सरसी, अवगुण मारी मर न सीजै, गुण मारी ता मरसी। नाम भगत दे निज घर बैठे, अजो तिनाड़ी आसा, नानक मिलो कबड़ दर खोलो, एक घड़ी खतमासा। मंगर माओ भला हर गुण अंक समावे, गुणवंती गुण रवे मैं फिर नेचल पावे। नेचल चतुर सुजान विदाता, चंचल जगत सबाया, ज्ञान ज्ञान गुण अंक समाने, सब पाने ता पाया। गीत नाद कवित कवे सुन, राम नाम दुख भागे, नानक साधन नहा प्यारी, अब भक्ति तिर आगे। ओख तुखार पड़े वर्ण तृण रसोख, आवत की नाही मंतन वसे मुखे, मंतन रव रहा जग जीवन, गुर सब धी रंग मानी। अंडर जीरज से तज उद्भुज, गट गट जोत समानी, दर्शन देहो दया पत दाते, गत पावो मत देहो। नानक रंग रवै रस रसिया, हर स्यो पीत स्नेहो। माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जानिया, साजन सहज मिले गुण गय अंक समानिया। प्रीतम गुण अंके सुन प्रभु बंके, सुर पावा सरनावा, गंग जमुन तै बेनी संगम, सात समुन्द समावा। पुन दान पूजा परमेश्वर, जुग जुग एको जाता, नानक माघ महारस हर जप, असर तीरथ नाता। फल गुण मन रहसी प्रेम सुभाया, अनदिन रस बया आप गवाया, मन मोह चुकाया जा तिस पाया, कर कृपा घर आओ, बहुते वेत करे फिर बाजो, मैली दान खाओ। हार डोर रस पाठ पटंबर, तिर लोड़ी सिंगारी, नानक मेर लही गुरु अपने घर वर पाया नारी। बेदस मारुति छिट्टी वार भले, घड़ी मूरत पर साई।

राखो खेती हर बुरहेती, जागर छोर न लागे। जम मगन जाओ ना दुख पाओ, जम का डर बहु भागे। रब सस

जमनाती कल घूंघट कैसा मटकी फोड़ निरारी, नानक आपै आप पछाणै गुरमुख तत बिचारी। तुखारी महला पहला। मेरे लाल रंगीले हम लालन के लाले, गुर अलख लखाया अवर न दूजा पाले। गुर अलख लखाया जा तिन पाया जा प्रभ कृपा तारी, जग जीवन दाता पुरुष बिदाता सहज मिले बनवारी। नगर करे तू तारे तरिये सच देवो दीन दयाला, प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्व जिया प्रतपाला। भरपूर धार

हर सिमर एकंकार साचा सब जगत जिन उपाया पौन पानी अगन बादे गुर खेल जगत दिखाया आचार तू विचार आपे हर नाम संयम जप तपो।

जब लग दर्श न होए क्यों अमृत पीवी है राम। क्यों अमृत पीवी है हर दिन जीवी है तिस दिन रह न जाए। हम दिन प्रो प्रो करे दिन राती फिर दिन प्यास न जाए। अपनी कृपा करो हर प्यारे हर हर नाम सब सारे आ। गुर के शब्द मिलिया मैं प्रीतम हाँ सतगुर विटो वारिया। जब देखा फिर प्यारा हर गुण रस रवा राम। मेरे अंतर हुए विगास प्रो प्रो सत नित चवा राम। प्रो चवा प्यारे शब्द निस्तारे बिन देखे तृप्त न आवे। शब्द सिगार होवे नित कामन हर हर नाम पे आवे। दया दान मंगत जन दीजै मैं प्रीतम देहो मिलाए। अन दिन गुर गोपाल ते आई हम सतगुरु विट्टो कुमाए। हम पात्र गुर नाव बिख पव जल तारी है राम। गुरुदेवो शब्द सुभाए मैं मूड निस्तारी है राम। हम मूड मुगध किस मित नहीं पाई तू अगम वड जानिया। तू आप दयाल दया कर मेले हम निर्गुणी निमाणिया। अनेक जन्म पाप कर परमे हुन तो शरणागत आए। दया करो रख ले वो हर जियो हम लागे सतगुर पाए। गुर पारस हम लो मिल कंचन होया राम। ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोया राम। काया गढ़ सोया मेरे प्रभ मोया क्यों साथ गिरास विसारी है। अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हो सतगुर के बलिहारी है। सतगुर आ गए शीश टेक दियो जे सतगुर साचे भावे। आपे दया करो प्रभ दाते नानक अंक समावे। तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा। जो तुम त्यावे जगदीश ते जन पाओ बिखम तरा। बिखम पाओ तिन तरया सुहेला जिन हर हर नाम ते आया। गुरवाक सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मिलाया। ज्योति ज्योत मिल ज्योत खवाणी हर कृपा कर तरणी तरा। हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा। तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा। तू अलख अपेयो अगम गुर सतगुर बचन लया। तन तन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे। विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे। जा बह गुरमुख हर नाम बोले जा खड़े गुरमुख हर हर कया। तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा। सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेव्या गुरमत हरे। तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे। तिनके पाप दोख सब बिन से जिन मन चित इक अरा दिया। तिनका जन्म सफल हो सब किया करते जिन गुर बचनी सच पाखिया। ते तन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पौ बिखम तरे। सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेविया गुरमत हरे। तू अंतर जामी हर आप ज्यों तू चलावे प्यारे हो तिवे चला। हमरे हाथ किस नाहे जा तू मेले ता हौ आए मिला। जिन को तू हर मेले स्वामी सब तिन का लेखा छुटक गया। तिनकी गणत ना करो को भाई जो गुरबचनी हर मेल लया। नानक दयाल होआ तिन ऊपर जिन गुर का पाना मनिया पला। तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला। सुखारी महला चौथा तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ। तिन तू त्याया मेरा राम जिन कह तुर

मात जिनको तुर हर लिखिया स्वामी तिन हर हर नाम आराध्या तिनके पाप एक निमक सब लाथे जिन गुरु वचनी हर जापिया तन तन ते जन जिन हर नाम जपिया तिन देखे हो पया सनाथ तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ तू जल थल मई अल परपूर सब ऊपर साच धनी जिन जपिया हर मन चीत हर जप जप मुक्त कणी जिन जपिया हर ते मुक्त प्राणी तिनके उजल मुख हर द्वार ओए हलत पलत जन पे सुहेले हर राख लिए रखन हार हर संत संगत जन सुनो पाई गुरुमुख हर सेवा सफल बनी तू जल सल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी तू थान सनम तर हर एक को एक रव्या वन त्रिन त्रिभवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चवया सब चवे हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावे सो तन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते भावे सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सब चवया तू थान सनंतर हर एक को एक रव्या तेरी भगत पंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले जिस कै मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिके हर गुण हृदय टिके तिसके जिस अंतर पाव पावनी होई बिन पै किने ना प्रेम पाया बिन पै पार ना उतरिया कोई पाओ पाओ प्रीत नानक तिसे लागे जिस तू अपनी कृपा करे तेरी भगत पंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले तुखारी महला चौथा नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श पया दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया अंतर ज्योत परगासी जन्म मरण दुख खिन में बिन से हर पाया प्रभ अविनाशी हर आप करते पूर्व किया सतगुरु कुल खेत नावन गया नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श भया मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा अन दिन भगत बनी खिन खिन निमख विखा हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोक वेखने आया जिन दर्श सतगुरु गुरु किया तिन आप हर मेला आया तीरथ उद्दम सतगुरु किया सब लोक उदरण अर्था मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ खबर पई संसार आए त्रै लोआ देखने आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया जिन परसिया गुर सतगुरु पूरा तिनके किलविख नाश गवाया जोगी दिगंबर सन्यासी खर दर्शन कर गए गोष्ठ टोआ प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व होआ दुतिया जमुन गए गुर हर हर जपन किया जागाती मिले दे पेट गुर पिछे लंघाए दिया सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम से आया गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जागाती नेड़ ना आया सब गुरु गुरु जगत बोले गुर के नाए ले सब छुटक गया द्वितीया जमुन गए गुर हर हर जपन किया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलक भया सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लिया आड़ दाम किच पया ना बोलक जागातिया मोहन मुंडन पई पाई हम करें क्या किस पास मांगे सब पाग सतगुरु पिछे पई जागातिया उपाव स्यान कर विचार डिठा पन बोल का सब उठ गया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया मिल आए नगर मां जना गुर सतगुर ओट गही गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद ते आया देही नगर कोट पंच चोर बटवारे तिनका थाओ थे ओ गवाया कीर्तन पुराण
नित पुन होवे, गुरु बचन नानक हर भगत लही, मिल आए नगर महाजना, गुर सतगुर ओट गही, सुखारी संत मैला पंजवा इको अंकार। सतगुर प्रसाद कोल कुमाई लालना गुर मन दीना, सुन बचन तुम्हारा मेरा मन पीना, एहो मन पीना ज्यो जल मीना, लागा रंग मुरारा कीमत कही न जाई ठाकुर, तेरा महल अपारा सगल गुणा के दाते स्वामी, बिनो सुनो एक दीना, देहो दर्श नानक बलिहारी जीड़ा बल बल कीना, एहो तन मन तेरा सब गुण तेरे, खनिए वंजा दर्शन तेरे, दर्शन तेरे सुन प्रभ मेरे, निमख दृष्ट पेख जीवा, अमृत नाम सुनी जय तेरा, कृपा करें ता पीवा, आस प्यासी फिर कह ताई, जो चात्रिक बूंदे रे, कहो नानक जीड़ा बलिहारी, देहो दर्श प्रभ मेरे, तू साचा साहिब साओ अमिता, तू प्रीतम प्यारा प्राण हित चित्ता, प्राण सुखदाता गुरमुख जाता, सगल रंग बन आए, सोई कर्म कमावे प्राणी, जेहा तू फुरमाए, जाको कृपा करी जगदीसर, तिन साध संग मन जिता, कहो नानक जीड़ा बलिहारी, जियो पिंड तौ दिता, निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुरु टाक लिया मोह पापी पर्दा, ठाकन हारे प्रभु हमारे, जी प्राण सुख दाते, अविनाशी अवगत स्वामी, पूरन पुरख विदाते, पुस्तक कहन न जाए तुम्हारी, कौन कहे तू कद का, नानक दास ता कह बलिहारी, मिले नाम हर निंका, केदारा महल।

फूले कपट तपट बुझ तृष्णा जीवों पेख दरसारी कौन सो जतन उपाव कनेहा सेवा कौन बिचारी मान अभिमान मोह तज नानक संते संग उधारी किरारा महला पंजवा हर हर हर गुण गावो करो कृपा गोपाल गोविंदे अपना नाम जपावो रहाओ काड लिए प्रभ आन बिखेते साध संग मन लावो तंपो मोह कट्यो गुरु वचनी अपना दर्श दिखावो सबकी रेन होए मन मेरा अहं बुद्ध तजावो अपनी भगत देह दयाला वड पागी नानक हर पावो किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारत जात तज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात रहाओ तन जो बन संपै सुख पोगवै।

मद मोहत काम क्रोध के खात कर गए लिहो दास नानक को प्रभ जियो होए साथ। केदारा महला पंजवा हर बिन कोए न चालस साथ दीना नाथ करना पत स्वामी अनाथा के नाथ राव सुत।

आत करण समरथ अटक अगोचर हर सिमरत दुख लात नानक दीन तूर जन बाशत मिले लिखत तुरमात किदारा मैला पंजवा कर पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद बिसरत नाहे मनते हरी अब एह प्रीत मां परबल सही आन बिखै जरी रहाओ बूंद कहा त्याग चात्रिक मीन रहत न करी गुण गोपाल उचार रसना टेव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध तरी किदारा महला पंजवा प्रीतम बस रिद में खोर परम पीत निवार ठाकुर गह लियो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारो तोर संत संग हर चरण बोहत उदरते लै मोर गर्भ कुंट में जिने तारियो नहीं दिखे बन में होर हर सकत सरन समरथ नानक।

त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान, मिथन मोह दुरंत आशा झूठ सर परमान, सत पुरख अकाल मूर्त हृदय तारो त्यान, नाम निधान लाभ नानक बस ए परवान, केदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार, कल कलेश ना कछ व्यापे संत संग व्यवहार, रहाओ कर अनग्रह आप राख्यो न उपजतो बेकार, जिस परापत होए सिमरे तिस दहत नह संसार, सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार, नानक दास शरणागति तेरे संतना की चार, केदारा महला पंजवा हर के नाम बिन त्रिग स्रोत, जीवन रूप विसार जीवे ते कत जीवन होत, रहाओ खात पीत अनेक बिंजन जैसे पार बाहक खोत, आठ पैर महाश्रम पाया जैसे बिरख जंती जोत, तज गोपाल जे आन लागे ते बहु प्रकारी रोत, कर जोर नानक दान मांगे हर रखो कंठ परोत, किदारा महला पंजवा संते तूर ले मुखमली, गुणा अचुत सदा पूरन नह दोख व्यापे कली, राव गुरु बचन कार्य सर्व पूरन ईत ऊत ना हली, प्रभ एक अनक सर्वत पूरन दिखे अग्न ना जली, जह पूजा लीनो दास अपनो ज्योति ज्योत रली, प्रभ चरण शरण अनाथ आयो नानक हर संग चली, केदारा महला पंजवा हर के नाम की मन रुचे कोट सांत आनंद पूरन, जलस छाती बुझे रहाओ, संत मार्ग चलत प्राणी पतत उदरे मुचे, रेन जन की लगी मस्तक अनेक तीरथ सुचे, चरण कमल ध्यान पीतर कट कटे स्वामी सुजे, शरण देव अपार नानक बहुर जम नहीं लुजे।

संग जाता, संतन संग जाता, पुरुष विदाता, काट काट नजर निहालिया, जो सरनी आवे सर्व सुख पावे, तिल नहीं पन्ने कालिया, हर गुण निद गाए सहज सुभाए, प्रेम महारस माता, नानक दास तेरी शरण आई, तू पूरन पुरुष विदाता, हर प्रेम भगत जन बेदिया, से आन कत जाही, मीन बिछोहा ना सह, जल बिन मर पाही, हर बिन क्यों रही है, दुख किन सही है, चात्रिक बूंद प्यासिया, कब रैन बिहावे, चकवी सुख पावे, सूरज किरण परगासिया, हर दर्श मन लागा, दिन सवागा, अन दिन हर गुण गाही, नानक दास कहे बेनंती, कत हर बिन प्राण टिकाही, सास बिना ज्यो देहुरी, कत तोबा पावे, दर्श बिहुना साध जन खिन टिकना आवे, हर बिन जो रहना, नरक सो कहना, चरण कमल मन बेदिया, हर रसक बैरागी, नाम लिव लागी, कतो न जाए निखेदिया, हर क्यों जाए मिलना, साध संग रहना, सो सुख अंक ना मावे, हो कृपाल नानक के स्वामी, हर चरने संग समावे, खोजत खोजत प्रभ मिले, हर करुणा तारे, निर्गुण नीच अनाथ में नहीं दोख विचारे, नहीं दोख विचारे, पूरन सुख सारे, पावन बिरद बखानिया, भगत वचल सुन अंचलो गया, कट कट पूर समानिया, सुख सागरो पाया सहज सुभाया, जन्म मरण दुख हारे, कर गए लीने नानक दास अपने, राम नाम उरहारे, राग के दारा बाणी कबीर जियो के।

निंदा दौ विवर्जत तजो मान अभिमाना। लोहा कंचन सम कर जाने ते मूरत पगवाना। तेरा जन एक आद कोई काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित हर पद चीने सोई रहाओ। रज गुण तम गुण सत गुण कही है ए तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीने तिन्ही परम पद पाया। तीर्थ व्रत नेम सुच संजम सदा रहने कामा। कृष्णा अर माया प्रम चूका चितवत आत्म।

जेते कट अमृत सभी में पावे तिसे पियाई। नगरी एक नौ दरवाजे तावत बर्ज रहाई। त्रिपुटी छूटे दसवा दर फूले तामन खीवा पाई। अबे पद पूर ताप तहना से कह कबीर बिचारी। उबट चलनते ए मद पाया जैसे खोंद फुमारी। काम क्रोध तृष्णा के लीने गत नहीं एक कह जानी। फूटी आँखें कछु न सूजे बूढ़ मुए बिन पानी।

राम ना जपो कवन प्रम पूले, तुम ते काल ना दूरे, अनेक जतन कर एहो तन राखो, रह अवस्था पूरे। आपन किया कछु न होवे, क्या को करे परानी, जा तिस पावे सतगुरु पेटे, एको नाम बखानी, बलुआ के करुआ में बसे।

राव लालच झूठ विकार महामद के विद औद बिहान कह कबीर अंक की देर आए लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मटिया संग ना कछ ले जाए। रहाओ देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लो संग माए मरहट लग सब लोग कुटम मिल हंस इकेला जाए। वै सुत वै बित वै पुर पाटन बौर न देखे आए कहत कबीर राम की न सिमरो जन्म अकार जाए। राकेदारा बाणी रविदास जीओ की इको अंकार सतगुर प्रसाद। खत कर्म कुल संयुक्त है हर भगत हृदय नाहे चरनार बिंद ना कथा पावे सुपत तुल समान। रेचित चेत चेत अचेत काहे ना बालमी कै देख किस जात ते के पदे अमरियो राम भगत विशेख रहाओ। स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावे हेत लोग बपुरा क्या सारा है तीन लोक प्रवेश। अजामल पिंगला लुबत कुंचर गए हर के पास ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरे रविदास। राग पैरों मैला पहला कर पहला चौक दे।

समाई मन जोगी मन बिनस देओगी मन समझे गुण गाई गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहिब पर पुरलीना सात शब्द निस्तारा पैरों महला पहला नैनी दृष्ट नहीं तन ही ना जर जीत्या सिर कालो रूप रंग रहस नहीं साचा क्यों छोड़े जम जालो प्राणी हर जप जन्म गयो सात शब्द बिन कब होना छूटत बिरसा जन्म भयो रहाओ तन में काम क्रोध हो ममता कथन पीर अत भारी गुरमुख राम जपो रस रसना किन बिद तरकू तारी बैरे करन अकल भई होछी शब्द सहज नहीं बूझिया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुर अंग न सूझिया रह उदास आस निराशा सहज ध्यान बैरागी प्रणवत नानक गुरमुख छूटस राम नाम लिवलागी पैरों महला पहला पूंडी चाल चरण कर खिसरे तुचा देह कुमलानी नेत्री तुंद करन पै बहरे मन मुख नाम न जानी अंगुले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुर की सेवा चाले मूल गवाए रहाओ जिहवा रंग नहीं हर राती जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापस पशु पे कदे होए नानी के अमृत का रस विरली पाया सतगुर मेल मिलाए जब लग शब्द पेड़ नहीं आया तब लग काल संताए अन को दर कर कब होना जानस एक को दर्श प्यारा गुर प्रसाद परम पद पाया नानक कह विचारा पैरों महला पहला सगली रैन सोवत गलफाही दिनस जंजाल गवाया किन पल कड़ी नहीं प्रभ जानिया जिन एहो जगत उपाया मन रे क्यों छूटस दुख पारी क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रहाओ पूंदो कवल मन मुख मत होची मन अंदे सिर तंदा काल विकाल सदा

काल नेत्र फुन अंधुले, शब्द सुरत नहीं पाए, शास्त्र वेद त्रै गुण है माया, अंधलो तंद कमाई, खोयो मूल लाभ कह पावस, दुर्मत ज्ञान विहूने, शब्द विचार राम रस चाख्या, नानक साच पति ने पैरों महला पहला, गुर के संग रह दिन राती, राम रसन रंग राता, अवर न जानस शब्द पछाणस, अंतर जान पछाता, सोजन ऐसा मैं मन पावे, आप मार अपरंपर राता, गुर की कार कमावे रहाओ, अंतर बाहर पुरख निरंजन, आद पुरख आदेशो, कट कट अंतर सर्व निरंतर, रव रहा सच वेशो, साच रते सच अमृत जेवा, मिथ्या मैल नाराई, निर्मल नाम अमृत रस चाख्या, शब्द रते पच पाई, गुणी गुणी मिल लाहा पावस, गुरमुख नाम वडाई, सगले दुख मिटे गुर सेवा, नानक नाम सखाई, पैरो महला पहला, हृदय नाम सर्व तन तारण, गुर प्रसादी पाइये, अमर पदार्थ से किरतार्थ, सहज ज्ञान लिवलाइये, मन रे राम भगत चितलाइये, गुरमुख राम नाम जप हृदय, सहज खेती कर जाइये रहाओ, परम पेद पाओ कभो न छूटस, आवत जात न जानी, बिन हर नाम को मुक्त न पावस, डूब मुए बिन पानी, तंदा करत सगली पत खोवस, परम न मिटस गवारा, बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी, अंधले तंद पसारा, अकुल निरंजन स्यों मन मानिया, मन ही ते मन मुआ, अंतर बाहर एक को जानिया, नानक अवर न दुआ, पैरों मैला पहला, जगन होम पुन तप पूजा, दे दुखी नित दुख सह, राम नाम बिन मुक्त न पावत, मुक्त नाम गुरमुख लह।

पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे दंड कमंडल शिखा सूत तोती तीरथ गवन अप प्रमन करे राम नाम बिन शांत ना आवे जप हर हर नाम सोपार परे जटा मुकुट तन पखम लगाई वस्त्र छोड़ तन नगन भया राम नाम बिन तृप्त ना आवे किरत के बांधे पेख पाया जे तेजी जंत जल फल महियल जत्र कत्र तू सर्व जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक चोल पिया।

जात का गर्भ न करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्भ न कर मूर्ख गावारा, इस गर्भ से चले बहुत विकार आ रहा। चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई। माटी एक सगल संसारा, बोविद पांडे करे कुमारा। पंच तत् मिल देही काकारा, कट वद को करे बिचारा। कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई।

तिरम कसाई, मिलोगी दयाल पंच शब्द बजाई, पणत नानक करे क्या कोए, जिसनो आप मिला वै सोए पैरों महला तीजा। सो मुन जे मन की दुबदा मारे, दुबदा मार ब्रह्म विचारे, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौनिद।

चार हुक्म बुझ समान। कर्म होवे गुरु कृपा करे, यह मन जागे इस मन की दुविधा मरे। मन का स्वभाव सदा बैरागी, सब में बसे अतीत अनुरागी। कहत नानक जो जाने पेओ, आद पुरख निरंजन देओ। पैरों महला तीजा, राम नाम जगत निस्तारा। पव जल पार उतारन हारा, गुरु प्रसादी हर नाम समाल। सद ही निभ है तेरे नाल, रहाओ नाम।

नानक हृदय नाम वसाए पैरों महला तीजा। नामे उदरे सब जितने लो गुरुमुख जिना प्राप्त होए। हर जियो अपनी कृपा करे गुरुमुख नाम वडियाई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार आप उदरे सब कुल उदाहरण हार। बिन नामे मनमुख जमपुर जाए औखे होवे चोटा खाए। आपे करता देवे सोए नानक नाम प्राप्त होए। पैरों महला तीजा गोविंद प्रीत सनकादिक उधारे राम नाम शब्द विचारे। हर जियो अपनी कृपा धार गुरमुख नामे लगे प्यार रहाओ। अंतर प्रीत भगत साथी होए पूरे गुर में लावा होए। निज कर वसे सहज सुभाए गुरमुख नाम वसे मन आए। आपे वेखे वेखन हार नानक नाम रखो उधार। पैरों महला तीजा कल युग में राम नाम उधार। बिन नामे माथे पावे चार राम नाम दुलभ है भाई। गुर प्रसाद वसै मने।

नानक गुरमुख नाम प्यार पैरों में लाती जा। कल युग में बहु कर्म कमाए ना रुत ना कर्म थाए पाहे। कल युग में राम नाम है सार गुरमुख साचा लगे प्यार। रहाओ तन मन खोज करे मैं पाया गुरमुख राम नाम चितलाया। ज्ञान अंजन सतगुर ते होए राम नाम रव रहा ते लोए। कल युग में हर जियो एक होर रुत न काई नानक गुरमुख हृदय राम नाम लियो जमाई। पैरों में लाती जा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। डुबदा मन मुख रोग व्यापे कृष्णा जले अधिकाई। मर मर जम में ठौर न पावे बिरथा।

जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया, नानक निश्चल साचा एको ना ओ मरे न जाया। पैरों मैला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा गुरमुख बूझे रोग गवावे गुर सब दी।

विचारा हर जियो सत्संगत में लाए नानक तिसनो देव दयाए जो राम नाम सितलाए रहाओ ममता काल सब रोग व्यापे तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ न आवे जिन हर राख्या उर्धारा जिन हर का नाम न गुरमुख जाता।

शब्द विचारे सो जन साचा, जिनके हृदय साचा सोई। साची भगत करे दिन राती, तां तन दुख न होई। भगत भगत कहे सब कोई, दिन सतगुर सेवे भगत न पाये। पूरे पाग मिले प्रभ सोई राव, मन मुख मूल गवावे।

कृष्णा अगन पचाए सदा आनंद राम रस राते हृदय नाम दुबदा मन पागी हर हर अमृत पी तृप्ताते रहाओ आपे पार ब्रह्म सृष्टि जिम साजी।

गुरमुख मन वसाई आप तरे सगले कुल तारे जिनी राम नाम लिवलाई। मेरा प्रभ है गुण का दाता

गुर प्रसाद परम पद पाया, सब इच्छ पुजावन हार राव, सब मैं एको रब रहा, गुर बिन बूझ न पाए, गुरमुख प्रगट होआ मेरा, हर प्रभ अंग दिन हर गुण गाए, सुखदाता हर एक है, होर थे सुख न पाए, सतगुरु जिनी न सेवया दाता।

प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाकड़े बिगाड़े दुष्ट सभा में मंत्र पकाया प्रहलाद का राखा होए रघुराया हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार हर तेरा कहां तुझले उबार किन मैं पयान रूप लिख्या थम उपार हरनाकस नखी विदारिया प्रहलाद लिया उबार संत जना के हर जियो कार सवारे प्रहलाद जन के इच्छी कुले उदारे गुर के शब्द हो मैं बिख मारे नानक राम नाम संत निस्तारे पैरों महला तीजा आपे दैंत लाए दिते संत जना को आपे राखा सोई जो तेरी सदा सरनाई तिन मन दुख न होई जुग जुग भगता की रखदा आया दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किछु न जाने शब्द मेल मिलाया रहाओ अन दिन भगत करे दिन राती दुबदा शब्द खोई सदा निर्मल है जो सच राते सच वस्या मन सोई मूरख दुबदा पने मूर

सुकृत करनी सार जप माले, हृदय फेर चले तुझ नाले, हर हर नाम जपो बनवाले, कर कृपा मेलो सब संगत, टूट गई माया जमजाली राव। गुरुमुख सेवा काल जिन काली, तिस करिय सब सची टकसाली, हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्दा हर पाली, हम बारिक हर पिता तत पाली, जन नानक तारो नगर निहाली, पैरों महला चौथा सब कट तेरे तू सब ना माहे, तुझते बाहर कोई ना है, हर सुखदाता।

कोए जिसको तुम हर राखिया भावे तिसके नेड़े कोई न जावे तू जल थल मैयल सब ते भरपूर जन नानक हर जप हाजरा हजूर पैरों मेला चौथा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद हर का संत हर की हर मूरत जिस हृदय हर नाम मुरार मस्तक पाग होवे जिस लिखिया सो गुरमत हृदय हर नाम समार मधुसूदन जपिए उर्धार देही नगर तस्तर पंच तातु गुर शब्दी हर का डे मार राओ जिनका हर सेती मन मानिया जिनका

कहो कबीर इहो किया वखाना, गुर पीर मिल खुद खसम पचाना, कहरो महला पंजवा, दस मिर्गी सहजे बंगयानी, पांच मिर्ग बेदे शिव की बानी, संत संग ले चढ़ो शिकार, मिर्ग

नानक कह कर केवल नाम पैरों महला पंजवा। जेसो लोच लोच खावाया साकत हर हर चीतना आया संत जना की लेहो मते साध संग पावो परम गते रहाओ पात्र को बहु नीर पवाया। मैं पी गए अदुख सुकाया खट शास्त्र मूर्खे सुनाया।

तब आराधन निर्मल रीत साध संग बिन सी विपरीत नीत हीत तन न पारणा तन तन मेरे नारायणा नानक बोले अमृत बाणी एक बिना दूजा नहीं जाने पैरों महला पंजवा आगे दे पाछे नारायण मद पाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सौन सुख सहज आनंद गृह पौन रहाओ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभु सिमर सिमर अमृत पीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द वजे दरबारे कर कृपा प्रभ लिए मिलाए नानक प्रभ शरणागति आए पैरों महला पंजवा कोट मनोरथ आवे।

आओ पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम पहने काम राजमाल साधन दरबार सिमरत नाम पूरन आचार नानक दास एहो किया विचार बिन हर नाम मिथ्या सब चार पैरों महला पंजवा लेप न लागो तिलका मूल दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल हर जन राखे पार ब्रह्म आप पापी मुआ गुर प्रताप रहाओ अपना खत्म।

हर जप जप उदरिया सगल जहान पैरों मैला पंजवा अपने दास को कंठ लगावे निंदक को अग्न में पावे पापी के राखी नारायण पापी की गत कत हूँ नाही पापी पछया आप कमाएं रहाओ दास राम जियो लागी प्रीत निंदक की होई विपरीत पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगताया दुखी अपना कीता पाया आए न जाई रहा समाई नानक दास हर की शरणाई।

श्री तर मोहन सगल उपावन निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभु छोड़ करें अन सेवा कवन बिछिया रसमाता। रे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर उपाव सगल मैं देखे, जो चित भी है चित बिगरस पाज रहाओ। ठाकुर छोड़ दासी को सिमरें, मन मुख अंध अज्ञाना, हर की पगत करे तिन निंदे, निगुरे पशु समाना। जियो पिंड तन तन सब प्रभु का, साकत कहते मेरा, अहं बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर पल जल फेरा। होम जग जप तप सब संयम, तट तीरथ नहीं पाया, मिटिया आप कहे शरणाई, गुरुमुख नानक जगत कराया। पैरो महला पंजवा, बन में पेख्यो तृण में पेख्यो, गृह पेख्यो उदासाए।

जिस तू राखे तुझ कौन मारे, सब तुझ ही अंतर सगल संसार है। कोट उपाव चितवत है प्राणी, सोहो वै जे करे चोज विदानी। राखो राखो कृपा तार, तेरी शरण तेरे दरबार राव। जिनसे व्या निरपो सुख दाता,

जन नानक अपर न साचे कोय, पैरो मैला पंजवा। तौ करिए जे होवे बाहर, तौ करिए जे विसरे नर हर, तौ करिए जे दूजा पाए, क्या करिए जा रहा समाए। माया मोह करे कड़पतिया, बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ।

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, नाम बिना सब सद ही चूरे, बिन गुरु दीक्षा कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कथनी सर्व विकार, कहो नानक दर का विचार, पैरू मेला पंजवा, हो मैं रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस लीना, दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाग रोग खप गए।

वासन रोग पवर विनसानो एक रोग का सगल संसारा त्रिविद रोग में बदे विकारा रोगे मरता रोगे जन्मे रोगे फिर जोनी पर में रोग बंद रहन रति न पावे बिन सतगुरु रोग कत है न जावे पार ब्रह्म जिसकी दया वहाँ पकड़ रोगों कद लया टूटे बंधन साध संग पाया कहो नानक गुरु रोग मिटाया पैरों महला पंजवा चीत आवे ता महा आनंद चीत आवे ता सब दुख पांजे चीत आवे ता सरदा पूरी चीत आवे ता कभे न चूरी अंतर

मन मानिया नानक भगवंता कहरो महला पंजवा। बाप हमारा सद चरण जीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा अविनाशी, कुटुंब हमारा निकरवासी, हम सुख पाया।

नानक उदरे नाम पुनः चार, हवर कर्म लोके पतियार, पैरों महला पंजवा, नमस्कार ताको लख बार, रुमन दी जय ताको वार, सिमरन ताके मिटे संताप, होए आनंद न व्यापे ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम, जास जपत पूरन सब काम रहाओ, जाके दृष्टि दुख दे रात है, अमृत नाम शीतल मन गह, अनंत पगत

पूरन होत न कारज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तरफ मुआ जो जल बिन मीना, जिसके राखे हुए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुरु पूरा पाया, पैरो मैला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के किल विच जाए, राम नाम जी को आधार, गुरु प्रसाद जपो नित पाए, तार ले सागर संसार राव, जिनको लिखिया हर एहो निधान।

जिस लड़ लाए ले सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, तेरे भगत भगतन का आप, अपनी महिमा आपे जाप, जी जंत सब तेरे हाथ, नानक के प्रभु सभी साथ, पैरों महला पंजवा, नाम हमारे अंतर जामी, नाम हमारे आवे कामी, रोम रोम रविया हर नाम, सतगुर पूरे तीनो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमूला अपर

स्वाओ नाम न विसरै संत प्रसाद नाम लेत अनहद पूरे नाद प्रभ कृपा ते नाम नौ निज पाई गुरु कृपा ते नाम स्यो बने आई तनवंते सेई प्रधान नानक जा कै नाम धान पैरों महला पंजवा तू मेरा पिता।

रंग रस माने, कट कट अंतर तुम्हें समाने, तुमरी कृपा ते जपिए नाओ, साध संग तुमरे गुण गाओ, तुमरी दया ते होए दर्द विनाश, तुमरी माया ते कमल विलास, हौं बलिहार जाऊं गुरुदेव, सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव, दया करो ठाकुर प्रभु मेरे, गुण गावे नानक ने।

नाम तिस शरणाई सदा सुख होए कर कृपा जाको मिले सोए रहाओ जा के कर्तव्य लखे न जाए जा का प्रवासा सब कट माए।

अनित पाप जाए निर्मल मना, सगल मनोरथ पूरन काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करन करामन हार स्वामी।

है, मूर मुग्ध हो चतुर सुज्ञान है, सगल पयान का पौन से जन अपने के हर मन बसे, पार ब्रह्म प्रभु सुख निदान है, तत् ज्ञान हर अमृत नाम है, कर कृपा संत टहले लाए, नानक साधु संग समाए, पैरों महला पंजवा। संत मंडल में हर मन वसे, संत मंडल में दुर्त सब नसे, संत मंडल में निर्मल रीत, संत संग होए एक प्रीत, संत मंडल कहाँ का नाओ, पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ, संत मंडल में जन्म मरण रहे, संत मंडल में जम किचु ना कहे, संत संग होए निर्मल बाणी, संत मंडल में नाम वखाणी, संत मंडल का नेचर आसन, संत मंडल में पाप विनाशन, संत मंडल में निर्मल कथा, संत संग हो मैं दुख नसा, संत मंडल का नहीं विनाश, संत मंडल में हर गुण पास, संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक ओत पोत भगवान, पैरों महला पंजवा। रोग कवन जा राखे आप, जिस जन होए न दुख संताप, जिस ऊपर प्रभु कृपा करे, जिस ऊपर के काल पर हरे, सदा सखाई हर हर नाम, जिस चीत आवे तो सदा सुख होवे, दुख न आवे ता कै जाम रहाओ, जब ए नासो तब किने उपाया, कवन मूल के क्या प्रगटाया, आपे मार आप जीवाले, अपने भगत को सदा

कोए, हर हर नाम जपै जन सोए, रहाओ अहं बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम तिराए हर हर।

0: कोई भगत जपे नाम जाप मन पर दास गुरते मत लई। कहो नानक ताकि पूरी पई।
1: पैरों महला पंजवा सुख नाही बहुते तन खाटे, सुख नाही पेखे नृत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए।

जो पावे त्यों रखो गुसाई पैरों मैला पंजवा गुर मिल त्याग्यो दूजा पाओ गुरमुख जप्यो हर का नाम बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कर कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्व सुख पाए।

सहो नानक प्रभु कृपा करी, सास गिरास जपो हर हरी, पैरो महला पंजवा, सबसे ऊंचा जाका नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ, जिस सिमरत सगला दुख जाए, सर्व सुख वसे मन आए, सिमर मना

नानक को गुरु कहे दयाल पैरों में ला पंजवा जिस सिमरत मन होए प्रगास मिटे कलेश सुख सहज निवास जिसे प्राप्त जिस

सगल कटा के अंतर जामे, कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरणाए। पैरों महला पंजवा, लाज मरे जो नाम ना लेवे, नाम विहून सुखी क्यों सोवे। हर सिमरन छाड़ परम गत चाहे, मूल बिना शाखा कत आहे। गुरु गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारे। बंधन काट हर संग मिलाए रहो।

सो तनवंता जिस बुद्ध विवेक, सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पछानी, गुरु प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रैंत आया, टूटे बंधन पूरन आसा, हर के चरण रिदमाय निवासा, कहो नानक जाके पूरन कर्मा, सो जन आया प्रभु की शरणा, आप प्रेत पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने, पैरों महला पंजवा, नाम लैत किस बिघन न लागे, नाम सुनत जम दूरों पागे, नाम लैत सब दुख है नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ, हर सिमरत किछ चाख न जो है, हर सिमरत दैत देओ न पो है, हर सिमरत मोह मान न बद्दे, हर सिमरत गर्भ जोन न रुद्दे, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माए अकेला, जात अजात जपे जन कोए, जो जापे तिसकी गत होए, हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूरन रंग, नानक को प्रभु कृपा तार, सास सास हर दियो चितार, पैरों महला पंजवा, आपे सासत आपे बेद, आपे कट कट जाने पेद, ज्योत स्वरूप जाकी सब वत, करण कारण पूरन समरथ, प्रब की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुख आरादो, दुश्मन दुख ना आवे नेरे, रहाओ आपे वन त्रिन त्रिभुवन सार, जाके सूत परोया पार।

सुत बंद नारायण आद जुगाद भगत गुण गायण तिसकी तर प्रभ का मन जोर एक बिना दूजा नहीं और नानक कह मन इहो पुरखारथ प्रभु हमारा सारे स्वार्थ पैरों महला पंजवां पै कौ पौ पड़िया सिमरत हर नाम सगल ब्याद मिटी त्रिहो गुण की दास के होए पूरन काम रहाओ हर के लोग सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूरन धाम जन का दर्श बांचे दिन राती होए पुनीत धर्म राय जाम काम क्रोध लोभ मद निंदा साध संग मिटिया अभिमान ऐसे संत पेटे वड पागी।

प्रतपाल प्रभ कृपाल कवन गुण गनी अनेक रंग बहुत रंग सर्व को तनी रहाओ अनेक ज्ञान अनेक ध्यान अनेक जाप जाप ताप अनेक गुणत तुनत ललित अनेक ताप।

नी नानक सेव अपार देव तटें खटें बर्त पूजा गवन पवन जात्र करन सगल फल पुनी पैरों अष्टपदिया महला पहला कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। आत्म मह राम, राम मह आत्म चीनस गुर बिचारा अमृत बाण।

चलत उपाया, अनहद बाणी शब्द सुनाया, मन मुख पूले गुरमुख बुझाया, कारण करता करदा आया, गुर का शब्द मेरे अंतर ध्यान, हों कब होना छोड़ो हर का नाम रहाओ, पिता प्रहलाद पढ़न पठाया, ले पाटी पांदे कह आया, नाम बिना नहीं पढ़ो अचार।

लक्ष्मी पौ करे नासा कह जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए, सतगुरु नाम निधान।

करते अपना रूप दिखाया, पैरों महला तीजा, गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हों मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन वस्या, मनसा मन है समाई, हर जियो कृपा करू मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे गुरु।

साचे हर प्रभ आप मिलाए। गुर की वाणी शब्द पछाती साच रहे लिव लाए। तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल गुर के शब्द विचारे नानक।

आया, कहो नानक तत्तै तत मिलाया, पैरों महला पंजवा, कोट बिशन कीने अवतार, कोट ब्रह्मंड जाके तर्मसाल, कोट महेश उपाय समाए।

सोतरवर चंदन होय निबरियो, पारस के संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन होय निबरियो, संतन संग कबीरा बिगरियो, सो कबीर रामे होय निबरियो, माथे तिलक हथ मार

पहचाना, उलट जात कुल दो विसारी, सुन सहज मैं बुनत हमारी, हमरा चगरा रहा न को। पंडित मुला छाड़े दो रहाओ, बुन बुन

कह कबीर जिस उदर तिस माया, तब छूटे जब साधु पाया। जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे।

क्यों लीजै गड बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई। रहाओ पांच पच्चीस मोह मद मत्सर, आडी परबल माया, जन गरीब को जोर

बहुत मंत्र मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूरज जाके प्रगास, कोट महादेव अर कबिलास, दुर्गा कोट जाके मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम रहाओ।

बासक कोट सेज बिस्थरे, समुंद कोट जाके पानी हार, रुमावल कोट अठारे पार, कोट कमेर परे पंडार, कोटक लक्ष्मी करे सिगार, कोटक पाप

रहाओ। जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर तन का हितकारी। कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामी प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए। कबहु न टूटस रहा समाए, नामे चित लाया सचनाए। जैसी प्रीत बारिक अरमाता, ऐसा हर सेती मन राता। प्रणवै नाम देव लागी प्रीत, गोविंद बसे हमारे चीत।

जपताना। पापी का कर अग्ने माहे, जलत रहे मिट वे कब नाहे। राव हर की भगत ना देखे जाए, मार्ग छोड़ अमार्ग पाए। मूलो पूला आवे जाए, अमृत डार लाद बिखाए। ज्यो बेसवा के परे अखारा, कापर पहर करे सिंगारा। पूरे ताल निहाले सास, वहां के गले जम का है फांस। जाके मस्तक लिखियो कर्मा, सो पज पर है गुर की सरना। कहत नाम दियो इहो विचार, इन विद संतो उतरो पार। संडा मर कह जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पछारे। राम कह कर ताल बजावे, चटिया सब बिगारे। राम नामा जप वो करे,

काल गुरुमुख राम नाम गुण गाए तू अपरंपर सर्व पाल रहाओ बिन साध ना पाये हर का संग बिन गुरु मैल मलीन अंग बिन हर नाम ना सुध

काए गुर संग दिखायो राम राय। मिल सकी सहेली हर गुण बने, हर प्रभ संग खेले वर कामन। गुरमुख खोजत मन मने रहाओ, मनमुखी दुहागन नाहे पेओ। ओ कट कट रावे सर्व प्रेओ, गुरमुख तिरची ने संग देओ। गुरु नाम दृढ़ाया जप जपेओ, बिन गुर भगत ना पाओ होए। बिन गुर संत ना संग दे, बिन गुर अंधले तंद रोए। मन गुरमुख निर्मल मल शब्द खोए।

तैसे संत जन राम नाम रवत रहे। मैं मूरख मुग्ध ऊपर करो दया, तौ शरणागत रहो पया। कहत नानक संसार के ने फल कामा, गुरु प्रसाद को पा।

तीजा राते साथ हर नाम निहाला दया करो प्रभु दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोए ज्यों पावे त्यों राखे सोए गुरु गोपाल मेरे मन पाए रह ना सकूं दर्शन देखे।

मन मुख मोए नाही हर मन माहे मर मर जमे पी मर जाहे से जन जीवे जिन हर मन माहे साथ समाले साथ समाए राव हर ना सेवे ते हर ते दूर दिसंतर पवे सिर पावे तूर हर आपे जन लिए लाए तिल सदा सुख है तिल ना तमाए।

जीवत मरे मर मरण सवार गुरु कै शब्द साच उधार रहाओ। गुरुमुख सच पोजन पवित शरीरा मन निर्मल सद गुणी गहीरा जब मैं मरे ना आवे जाए गुरु प्रसादी साथ समाए साचा से वो साथ पछाने गुरु कै शब्द हर दर निशाने दर साचे सच शोभा होए निज करवासा पावे सोए आप अपूल सच्चा सच सोए और सब पूले दूजे पथ होए साचा सेवो साची बाणी नानक नामे साच समाणी बसंत महला तीजा बिन कर्मा सब परम पुलाए माया मोह बहुत दुख पाए मनमुख अंधे ठौर न पाए बिस्ता का कीड़ा बिस्ता माए समाए हुकम मने सो जन प्रवान गुर कै शब्द नाम निशान रहाओ साच रते जिना।

ले पाए सो बुझे जिस आग बुझाए सतगुरु सेवा नाम दृढ़ाए जिन एक जाता के जन प्रवान नानक नाम रते दा निशान बसंत मैला तीजा कृपा करे सतगुरु मिलाए आपे आप बसे।

सब संत हे मन मौलिया सतगुरु संग तुम साथ से आवो मुग्ध मना ता सुख पावो मेरे मना रहाओ इत मन मौलिया पया आनंद अमृत फल पाया नाम गोविंद एको एक सब आख बखाने हुकम बूझे ता एको जाने कहत नानक हो मैं कह न कोए आखन वेखन सब साहिब ते होए बसंत महला तीजा सब जुग तेरे कीते होए सतगुरु पे तै मत बुद्ध होए हर जियो आपे लहो मिलाए गुर कै शब्द सच नाम समाए रहाओ मन बसंत हरे सब लोए पले फुलिये राम नाम सुखोए सदा बसंत गुर शब्द विचारे राम नाम राखे उदारे मन बसंत तन

पूरे पाग हर पगत कराए, इस मन को बसंत की लगे न सोए, ए मन चलिया दूजे दोए रहाओ, यो मन तंदे बांदा कर्म कमाए, माया मूठा सदा बिन लाए, ए मन छूटे जा सतगुरु पेटे, जम काल की फिर आवे ना फेटे, ए मन छूटा गुरु लिया छाए, नानक माया मोह शब्द जलाए, बसंत महला तीजा बसंत चढ़िया फूली बन राए, ए जी जंत फूले हर चितलाए, इन विद ए मन हरिया होए, हर हर नाम जपे दिन राती, गुरमुख हो मैं कद्दे तोए रहाओ, सत गुर पानी शब्द सुनाए, ए जग

गुरसा लाई सद अपना पाई, गुरचरणी चित लाई, मेरे मन राम नाम चित लाए, मन तन तेरा हरिया होवे, इक हर नामा फल।

टूट तिना की अकुली है पाई, सब संगत मेल मिलाए, आप सराय करे आप भाई, जिन हरिया किया सब कोए, नानक मन तन सुख।

ते सब आलस दुख पंज प्रभ पाया, गुरमत गावो गुण प्रभ के रे रहाओ, मन मुख फिर हो मैं मोए, काल दैत संगारे जमपुर गए, गुरमुख हर हर हर निव लागे, जन्म मरण दो दुख पागे, भगत जना को हर कृपा धारी, गुरु नानक तुथा मिलिया बनवारी, बसंत हिंडोल मैला चौथा, कर दूजा इको अंकार, सतगुर प्रसाद। राम नाम रतन कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लुकानी, सतगुर मिले ता खोजिए मिल ज्योति जोत समानी, माधो साधु जन देओ मिलाए, देखत दर्स पाप सबना से पवित्र परम पद पाए, राव पंच चोर मिल लागे नगरिया, राम नाम तन हिरिया, गुरमत खोज परे तब पकरे, तन साबत रास उबरिया, पाखंड परम उपाव करता के, रिद अंतर माया मा

हम किए पतत पवीछे बसंत ही डोल मैला चौथा। मेरा एक छिन मनुआ रह न सके नित हर हर नाम रस गी दे जो बारिक रसक परयो थन माता थन का दे बिलल बिली दे। गोविंद जी ओ मेरे मन तन नाम हर दी दे।

पग थारा दें जोग जुगत, नेत्र संतोखे दर्स पेख, रसना गाए गुण अनेक, तृष्णा बूजी गुर प्रसाद, मन आधा ना हर रसे स्वाद, सेवक लागो चरण सेव, आद पुरख अपरंपर देव, सगल उदाहरण तेरो नाम, नानक पायो इहो निधान, बसंत महला।

तरों टेक, सर्व कला प्रभु तुम पर बीन, अंत न पावे जलह मीन, अगम अगम ऊंचे ते ऊंच, हम थोरे तुम बहुत मूच, जिन तू त्याया से गनी, जिन तू पाया से पनी, जिन तू सेव्या सुखी से।

लागे। एवड पाग हो है जिस प्राणी सो पाए एव पद निर्वाणी रहाओ। दूजी सेवा जीवन बिरथा कछु न होई है पूरन अर्था।

सुना बसंत महला पंजवा जिस बोलत मुख पवित होए जिस सिमरत निर्मल है सोए जिस आरादे जम किछ ना कहे जिसकी सेवा सब किछ लहे राम।

नानक जन हर हर त्याए। बसंत महला पंजवा, मन तन पीतर लागी प्यास, गुरदयाल पूरी मेरी आस। किलविख काटे साध संग, नाम जप्यो हर नाम रंग। गुर प्रसाद बसंत बना, चरण कमल हृदय उधारे। सदा सदा हर जस सुना रहाओ। समरथ स्वामी कारण करण, मोहे अनाथ प्रभु।

राम रंग सब गए पाप, राम जपत तक नहीं संताप, गोविंद जपत सब मिटे अंधेर, हर सिमरत कछना है फेर, बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यो सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जय गोविंद भगत सो तन देश, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद कट कट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाठ करत तू सदा संग, निकट पेख प्र

जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा गुर कृपा ते नित चवा प्रभ रख वाले माई बाप जा कै सिमरन नहीं संताप। खसम त्याई इक मन इक भाए गुर पूरे की सदा शरणाई साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ अपने जन प्रभ आप रखे दुष्ट दूत सब प्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए दुख देश दुसंतर रहे ताए किरत ओना का मिटस नाहे ओए अपना बीजिया आप खाए जन का रखवाला आप सोए जन को पहुँच ना सकस कोए प्रभ दास रखे कर जतन आप अखंड पूरन जा को प्रताप गुण गोविंद नित रसन गाए नानक जी वह हर चरण ध्याए। बसंत महला पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूरन काम जप जी वह नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर्षित आवे बिन सत गुरु दी सह बिन लांती साकत फिर आवे जावे रहाओ।

संगत प्रभु कियो निवास, हर जप जप होई पूरन आस, जल थल मही अल रव रया, गुर मिल नानक हर हर कया, अष्ट सिद्ध नव निद एहे, करम प्राप्त जिस नाम देहे, प्रभ जप जप जीवे तेरे दास, गुर मिल नानक कमल परगास, बसंत महला पंजवा कर पहला, इक तुके इको अंकार, सतगुर प्रसाद, सगल इच्छा जप पुनिया, प्रभ मेले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोविंद रवन जोग, जित रवे सुख सहज भोग रहाओ, कर कृपा नदर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, सेज सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुखतनी, मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया, प्रभ नानक चरण पुजारिया, बसंत महला पंजवा, किल बिख बिन से गाए गुना, आन दिन उपजी सहज तुना, मन मौलियो हर चरण संग, कर कृपा साधु जन बेटे, नित रातो हर नाम रंग रहाओ, कर कृपा

नानक प्रभ कृपा भई। बसंत महला पंजवा, रोग मिटाए प्रभु आप, बालक राखे अपने कर थाप। सांत सहज गृह सद बसंत, गुरपुरे की सरणी आए। कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाओ। सोग संताप कटे प्रभु आप, गुर अपने को नित नित जाप। जो जन तेरा जपे नाओ, सब फल पाए निचल गुण गाओ। नानक भगता कली रीत, सुखदाता जप दे नीत नीत। बसंत महला पंजवा, हुक्म कर कीने निहाल। अपने सेवक को पया दयाल, गुरपुरै।

देख फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो प्रभ सभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले इक रहे सूख।

दुबदा दूर करो लिवलाए। हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा बिछाए। इन बिद पासा तालो वीर, गुरमुख नाम जपो दिन राती। अंत काल में लागे पीर रहाओ, परम तरम तुम चौपर साजो। सत करो तुम सारी, काम क्रोध लोभ मोजी को, ऐसी खेल हर प्यारी। उठ स्नान करो प्रभाते, सोए हर आराधे। बिखड़े दाव लंघावे मेरा सतगुर, सुख सहज से ती कर जाते। हर आते खेले आते देखे, हर आते रचन रचाया। जन नानक गुरमुख जो नर खेले, सो जिन बाजी कर आया। बसंत महला पंजवा हिंडोल, तेरी कुदरत तू है जाने, और न दूजा जाने। जिसनों कृपा

तेरा है भाणा, कहो नानक कह तया द्वारे, रख ले वो मुग्ध अजाना, बसंत हिंडोल मेला पन्नवा, मूल न बूझे आप न सूझे, परम व्यापी अहं मनी, पिता पार ब्रह्म।

जानो या पीतर जो राम बसत है साचो तहे पछानो रहाओ। यो जग है संपत सुपने की देख कहाँ ऐडानो। संग तिहार है कछु न चाले ताहे कहाँ लपटानो। उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उर्यानो। जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो। बसंत महलाना।

के गाए, बसंत महला पहला, अष्टपदियां कर पहला, दो तुकियां इको अंकार। सतगुरु प्रसाद जग कौआ नाम नहीं चीत, नाम विसार।

नानक ठाडे चाहे प्रभु द्वार, तेरे नाम संतोखे कृपा धार। बसंत मेरा पहला मन फूलो परमस आए जाए, अत लुभद लुभानो विकम माए, नह अस्थिर दिसे।

मन चले न जाई ठाक राख, बिन हर रस राते पतना साख, तू आपे सुरता आप राख, पर कारण देखे जाने आप, आप फुलाए

तू अपुल ना पूलो कदे ना है, गुर शब्द सुनाए मत आगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे, बसंत महला पहला दर्शन की प्यास जिस नर होए, एक तरह से पर हर दोए, दूर दर्द मत अमृत खाए।

किसै न भावो, नानक हूं मैं शब्द जलाया, सतगुरु साचा दर्श दिखाया, बसंत महला पहला, चंचल चीत न पावे पारा, आवत जात न लागे बारा, दुख कणो मरिए करतारा, बिन प्रीतम को करे न सारा, सब उत्तम किस आखो ही ना, हर पगती सच नाम पतीना, रहाओ औखद कर था।

रोग व्यापे कट कट रव रहा प्रभ जापे सुख दुख ही ते गुर शब्द अतीता नानक राम रवै हित चीता बसंत महला पहला हित तुकिया मत पसम अंधूले।

गुरु नानक बोले पली बाण, तुम हो सुजा खेल हो पछाण, बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अगली कार, मन मुख पर मैं मजगुबार, मन अंधला अंधली मत लागे, गुर करनी बिन परम ना पागे, रहाओ मन मुख अंधले गुरमत ना भाई, पशु भय अभिमान ना जाए, लख चौरासी जंत उपाए, मेरे ठाकुर भाणे सिर समाए, सगली पूले नहीं शब्द अचार, सो समझे जिस गुर करतार, गुर के चाकर

आज बेअंक अपारा सच पति जय करने हारा नानक पूले गुर समझावे एक दिखावे साच टिकावे बसंत महला पहला आपे पौरा फूल बेल आपे संगत नीत मेल ऐसी

तू अकल निरंजन परम हीर, तू आपे करता करण जोग, ने केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुरु प्रीतम जन्म बाद, बसंत हिंडोल में।

वे चौहस दिए एका एका वारी मेहरवान मधुसूदन माधो ऐसी सकत तुम्हारी रहाओ कर कर लश्कर पावक तेरा धर्म करे सिकदारी करती देख मिले इक वेरा आग तेरा भंडारी नासा बूर होवे फिर मंगे नारद करे खुआ।

करेंगे कर कर सिफ्त तुम्हारी, तीरथ सिमरत पुन दान किचला मिले दिहाड़ी, नानक नाम मिले वड़ियाई मेका कड़ी समाली, बसंत हिडोल कर दूजा महला चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद। पाया नगर एक बालक वसिया खिन पल थिर ना रहाई, अनेक उपाव जतन कर खाके बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन सतगुर मिले ता पूरा पाई है।

जो कृष्ण बिदर कर आया मिलियो सुदामा पावनी तार सब किछ आगे दालद पंज समाया राम नाम की पैज वडेरी मेरे ठाकुर आप रखाई जे सब साकत करें बकीली इक रत्ती तिल ना कटाई जन की उस्तक है राम नामा दैद शोभा पाई निंदक साकत खाव ना सके तिल अपने कर लू की लाई जन को जन मिल शोभा पावे गुण में गुण परगासा मेरे ठाकुर के जन प्रीतम प्यारे जो होवे बासन दासा आपे जल अपरंपर करता आपे मेल मिलावे नानक गुरमुख सहज मिलाए जो जल जले समावे बसंत महला पंजवा कर पहला दो तुकिया इको अंकार सतगुर प्रसाद सुन साखी।

ले मस्तक लावो कर कृपा देन रहाओ। जनका उदरी हर कह तोत, गज इंद्र त्यायो हर कियो मोक। विप्र सुदा में दाल दुपंज, रे मन तू भी पज गोविंद। बदक उदार्यो खम्पर हार।

बसे संग रविदास ते आए प्रभ अनूप गुरु नानक देव गोविंद रूप बसंत महला पंजवा अनक जन्म परमे जोन माहे हर सिमरन बिन नरक पाहे भगत बिहूना खंड खंड बिन बूजे जम देत दंड गोविंद पजो मेरे सदा मीत साथ शब्द कर सदा प्रीत रहाओ।

मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे, ईट मीत को सखाना है।

अपार कर कृपा लड़ने हो लाए, नानक दास प्रभु की शरणाए। बसंत की वार महला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। हर का नाम से आए कै हो वरिया भाई, कर्म लिखन तय पाई है ए रुत सुहाई। वन त्रिन त्रिभुवन मौलिया अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजे लखी सब छाई। नानक सिमरै एक नाम फिर बहुर न ताई। पंजे बद्दे मां बली कर सच्चा ढोआ, अपने चरण जपायन विच दया खड़ोआ। रोग सोग सब मिट गए नित नवा निरोआ, दिन रह नाम से आयदा फिर पाए न मोआ। जिस ते उपजिया नानका।

अगम अगोचर साहेबो दूसर लवेन लावे सच पूरे गुर उपदेशिया नानक सुनावे बसंत माणी भगतां की कबीर जी कर पहला इकोंकार सतगुर प्रसाद मौली तरती मौलिया आकाश कट कट मौलिया आत्म प्रगास राजा राम मौलिया।

ओए परम पुरुष देव आदि देव भगत हेत नरसिंह देव कह कबीर को लख न पार प्रहलाद उधारे अनेक बार इस तन मन मदे मदन चोर जिन ज्ञान रतन हिर लीन मोर मैं अनाथ प्रभु कहो काहे को ना बिगू तो मैं को आहे माँ दो दारण दुख सहो न जाए मेरो चपल बुद्ध स्यों कहा बसाए रहाओ सनक सनंदन शिव सुकाद नाभि कमल जाने ब्रह्माद कब जन जोगी जटा तार सब आपन अवसर।

पेट खाया, गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी।

जिन सकल विकल प्रमुख आते मोर, रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुरु का शब्द काटे कोट कर्म, बसंत बाणी नाम देव जी के इको अंकार। सतगुर प्रसाद साहिब संकट वे सेवक पजे, चिरंकाल न जीवे दो कुल लजे, तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे, चरण कमल मेरे हीरे बसे, रहाओ जैसे अपने तने प्राणी मरण मांडे, तैसे संत जना राम नाम ना छाडे, गंगा गया गोदावरी।

जैसे पंकज त्रुट तुहाकती सर सोवन चाली लाडली रहाओ तो भी कोवे बिरह बिराता हर चरण मेरा मन राता पंत नाम दियो रम रहा अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की इको अंकार सतगुरु प्रसाद तुझे सुजनता कछु नाहे पहरावा देखे उब जाहे गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ तू काए गर्भे बावली जैसे पादो खूब राज तू

कोट कहरव दास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जून काम बसंत कबीर जियो इको ओंकार सतगुर प्रसाद सुर है की जैसी तेरी चाल तेरी पूंछट ऊपर चमक बाल इस घर में है सो तू ढूंढ खाए और किस ही के तू मत

तेरो मन मानिया हर पाए प्राण आधारा रहाओ इन विद हर मिलिए वर कामन तन सुहाग प्यारी जात बरन कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी जिस मन माने अभिमान ना।

हर के संत जना की हम धूर, मिल सत्संगत परम पद पाया, आत्म राम रहा भरपूर रहाओ। सतगुर संत मिले शांत पाये, दिल विच दुख काटे सब दूर। आत्म जोत पई प्रफुल्लत, पुरुष निरंजन देख।

सांस वसै मन आए, गुर कृपाल पै तब पाया, हर चरणी चित लाए, मत परदास पई हर ध्याया, ज्ञान तत् लिव लाए, अंतर ज्योत प्रगति मन मानिया, हर सहज समाध लगाए।

नाम जपत सुख पाए। सारंग महला चौथा, मेरा मन राम नाम मन मानी, मेरे ही रह सतगुरु प्रीत लगाई, मन हर हर कथा सुखानी रहाओ। दीन दयाल हो वो जन ऊपर, जन देवो अकथ कहानी, संत जना मिल हर रस पाया, हर मन तन नीठ लगानी, हर कै रंग रते बैरागी, जिन गुरमत नाम पछानी, पुरख है पुरख मिलिया सुख पाया, सब चूकी आवन जानी। नैनी बिरहों

जप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यों प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक सब दिन से सब रात रहाओ। हर की उपमा अनेक अनेक अनेक गुण गा।

हर कै निकट निकट हर निकट ही बसते ते हर के जन साधु हर पगात ते हर के जन हर

के पंच शब्द वद पाग मथोरा, तिन जन के सब पाप गए, सब दोख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए, तिन जन के हर मार कदे पंच चोरा, हर राम बोलो हर साधु हर के जन सा

जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान, सब सृष्टता प्रभो मेरे मन हर बोल हर पुरुष अविनाशी रहाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे सो पी है जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मेले जिस सतगुरु सो जन, हर हर अमृत नाम।

प्यास चात्रिक जो जल की सफल दर्शन कर पाओ रहाओ अनाथा को नाथ सर्व प्रतिपालक भगत वत्सल हर नाओ जाको कोई न

निष्बासुर त्रय त्रय मुख तेरो, नींद पलक नहीं जागियो, हार कजर बस्तर अनक सिगार रे, बिन फिर समय दिख लागियो।

वंदना अमोल दास रोदियो साध संगत अरदागियो करो कृपा मोहे प्रभु मिलावो निमक दस पे खा गयो दृष्ट पई तब सीतर आयो मेरा मन अंगिन शीत लागयो कहो नानक रस मंगल गाए शब्द अनाहद बाजे।

पाए जो जो शरण पर्यो करुणा निद ते पाए तराए रहाओ सुख सोयो अर सहज समायो सहसा गुरहें गवाए जो चाहत सोई हर कियो मन बांचत पल पाए हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाए।

अवर सब फूले प्रमत न जानिया, एक सुधा फिर जा कह हृदय वस्या, इन वेदें तत पछानिया रहाओ, परवृत मार्ग जेता।

जगदीश है। खोजत खोजत ए बिचारियो सर्व सुखा हर नामा, कहो नानक किस पयो प्राप्त जा के लेख मथामा। सारंग महला पंजवा, हम दिन राम के गुण कही है, सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बांचत फल लिये रहाओ। आवो संत प्राण सुख दाते सिमरन प्रभ अविनाशी, अनाथे नाथ दीन दुख पंजन पूर रहो खटवासी। गावत सुनत सुनावत सरदा हर रस पी वड पागे, कल कलेश मिटे सब तंते राम नाम लिव जागे।

परम त्याय उपदेश हमारी गत करन रहाओ। दुख रोग तय सगल विनाशे जो आवे हर संत शरण। आप जपे अवरे ना

गुर प्रसाद नानक संतोखे, नाम प्रभु जप जप उदरन, सारंग महला पंजवा, गायो री मैं गुण निध मंगल गायो, पले संजोग पले दिन अवसर, जो गोपाल री जायो रहाओ, संते चरण मोर लो माथा, हमरे मस्तक संत

कैसे कहूँ मोहे जी वेदनाई, दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर, मन ना रहे बहुविध उमकाई रहाओ। चितवन चितवो प्रिय प्रीत बैराग।

मानस जन्म दुलवाई, गर्भ जोन छोड़ जो निकसो तौ लागो अनठाही, करें बुराई ठगाई दिन रहन नेफल कर्म कमाही, कान नाही तो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही।

सो मिलिया जो प्रभु मिलाया, जिस मस्तक लेख लिखाई, कहो नानक किन जन बलिहारी, जो अल्प रहे मन माही, सारंग महला पंजवा, क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिछड़त होत मृतका, गृह में रहन न पाई, रहाओ जी ही प्राण को दाता, जाके संग सुहाई, करो कृपा।

मन कहां लुभाइए आन कहो, कींत ऊत प्रभु सदा सहाय, जी संग तेरे काम को रहाओ, अमृत नाम प्रिय प्रीत मनोहर, यह अगावन पान को, अकाल मूर्त है साध संतन की, ठहरनी की ध्यान को, बाणी मंत्र महापुरुषन की, मने उतारन मान को, खोज लहो नानक सुख थाना, हर नामा विश्राम को, सार मेला पंजवा, मन सदा मंगल गोविंद गाए, रोग शोक तेरे मिटे सगल अग

ताए मात पिता पाई नानक को सुखदाता हर प्राण साए। सारंग महला पंजवा हर जन सगल उधारे संग के पहे पुनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुखारे। रहाओ मार्ग चले तिनी सुख पाया जिनसो गोष्ठ से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में ते साधु संग पार परे। जिनके पाग बड़े हैं पाई तिन साधु संग मुख जुरे तिनकी तूर बांचे नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे। सारंग महला पंजवा हर जन राम राम राम से आए एक पलक सुख साध।

मोहन काय आवो करो जो दरिया, मान करो अभिमान बोलो, फूल चूक तेरी प्रक्रिया रहाओ, निकट सुनो अर देखो नाही, परम परम दुख परिया, होए कृपाल गुर लाहे पार दो, मिलो लाल मन हरिया, एक निमक जे बिसरे स्वामी, जानो कोट दिन सलख बनिया, साध संगत की पीर जो पाई, तो नानक हर संग मिरिया, सारंग महला पन्नवा, अब क्या सोचो सोच बिसारी, करना सा सोई कर रहया, देह नाव बलिहार।

सारी नानक पाग परयो हर पाछे राख संत सदकारी सारंग महला पंजवा अब मोहे सर्व उपाव बिरकाते करण कारण समरथ स्वामी हर एक स्ते में।

प्रमतो प्रमतो हार जो पड़े हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया हे सुख बिहानी राते सार महला पंजवा अब मोहे लब दियो है हर टेका गुर दयाल पय सुखदाई अंधुले मानक देखा।

जो अल कमला लो भांगे, गुण निधान मन मोहन लाल ने सुखदाई सर्वांगे, गुरु नानक प्रभ पाहे पठायो मिलो सखा गल लागे। सार महला पंजवा, अब मोरो ठाकुर शिव मन माना, साध कृपाल दयाल पहे है क्यों छेदियो दुष्ट बिगाना रहाओ। तुम ही सुंदर तुम्हे सियाने, तुम ही सुगर सुजाना, सगल जोग अज्ञान प्यान, इतने मत ना कीमत।

मेरे मन शीत आए प्रिय रंगा, बिसरो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा। रहाओ हर सेवो हर हृदय बसावो, हर पाया सत्संगा। ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम, सुख पाए मुख मंगा। प्रयो अपना गुर बसर दीना, पोगो पोग निसंगा। निरपो पै नानक पौ मिटिया, हर पायो पाठंगा। सारंग महला पंजवा, हर जियो के दर्शन को कुर्बानी। बचन नाद मेरे श्रवनो पूरे, देहा प्रिय अंक समानी। रहाओ सूत्र ते गुर की सुहागन, हर पायो सुख।

जन नानक के प्रपुरख विदाते मेरे ठाकुर अगय अतोला सारंग महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहन एक निमख उपाय समावे देख चरित मन मोहन रहाओ जिस सुनिए मन होए रहस अत हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो बन आई प्रभ तोहं किलविख गए मन निर्मल होई है गुर का दे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करण कारण समर्थोहं सारंग महला पंजवा नैनो देखो चलत तमाशा सबहु दूर सबहु ते नेरे अगम अगम कटवासा रहाओ अपूल ना पूले लिखो ना चलावे मता ना करे पचासा किन में साज संवार बिना है भगत वचल गुण तासा अंध कूप में दीपक बलियो गुर हृदय कियो परगासा कहो नानक दर्श के

गुर मिल ऐसे प्रभु ते आया, कयो कृपाल दयाल दुख पंजन, लगे न ताती बाया रहाओ, जेते सास सास हम लेते, तेते ही गुण गाया, निमख न बिसरे करी न बिसरे।

जो सुख सागर में पाया सारंग महला पंजवा मेरे मन शब्द लगो गुर मीठा खुलियो कर्म पयो परगासा कट कट हर हर गीठा रहा पार ब्रह्म अजोनी संभो सर्वथान कट भीठा पयो प्राप्त अमृत नामा।

आखे निमक बचन प्रभ हीर बस्यो सगल कूफ मेरी लाखे रहाओ कृपा निधान गुण नायक ठाकुर सुख समूह सब नाथे एक आस मोय तेरी स्वामी और द्वितीया आस बिराथे नैन तृप्ता से देख दर्शावा गुर कर तारे मेरे माथे कहो नानक मैं अतुल सुख पाया जन्म मरण पहला थे सारंग महला पन्नवा रे मूड़े आन काहे कत जाए संग मनोहर अमृत है रे फूल फूल बिखाई रहा।

न्यायी, जैसे मात पिताई, किस बिन निमख नहीं रह सकी है, बिसरना कब हूँ जाई। कहो नानक मिल संत संगत ते, मगन पए लिवलाई, सारंग मैला पंजवा, अपना मीत स्वामी गाये, आसना अवर काहू की कीजे, सुखदाता प्रभ ध्याये रहाओ, सुख मंगल कल्याण जिसे घर, तिस ही शरणी पाये, तिसे त्याग मानुख जे सेवो, तो लाज लोन हो जाये, एक ओट पकरी ठाकुर की, गुर मिल मत बुद्ध पाये, गुण निधान नानक प्रभ मिलिया, सगल चुकी मोहताये, सारंग महला पंजवा, ओट सतानी प्रभ जियो मेरे, दृष्ट ना लिया वो अवर

नाम औखद मुखदीनो जाए पया गुर पैरे। समन उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दाते रे। काट सिलक जो अपना कीनो नानक सुख कनेरे। सारल महला पंजवा प्रभ सिमरत दुख विनाशी। पयो कृपाल जी सुखदाता।

तब अरोग जब तुम संग बसतो छुटकत होए रवारे कमन बसेरो दास दासन को थाप्यो थापन हारे नाम न विसरे तब जीवन पाये बिनती नानक हे सारे सारंग मेला पंजवा मन ते पै पाओ दूर पर आयो लाल दयाल गुलाल लाडले सहज सहज गुन गायो रहाओ गुर बचनात कमात कृपा ते बहुर न कथु धायो रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वचल गृह पायो नाद विनोद कोड आनंदा सहजे सहज समायो करना आप करावन आपे

कहो नानक सास विचारो सारंग महला पंजवा बिन प्रभ रह न जाय करी सर्व सुख ताहू कै पूरन जा।

पैमान अपने पैताना अपने ही पै अर्था किन्ही राज जोबन तन मिलखा किन्ही बाप महतारी सर्व थोक नानक गुर पा।

मिथ्या राज जोबन अर उमरे मीर मलक अर खान मिथ्या कापर सुगंध चतुराई मिथ्या पोजन पान दीन बंदरो दास दासरो संते की सारान मांगन मांगो हुए अचिंता मिल नानक के हर प्राण सारंग महला पंजवा अपनी इतनी कछु न सारी अनेक काज अनेक तावरता उर्जियो आन जंजारी रहाओ ज्योस चार के दिशे संगी उहा नाही जह भारी तिन्स्यों राच मात हित लायो।

आज काल खुले तेरी गांठली सारंग महला पंजवा गुरजियो संग तुम्हारे जानियो कोट जोत ओआ की बात न पूछिए ता दरगे भी मान्यो रहाओ कवन मूल प्राणी का कहिए कवन रूप दृष्टानियो जोत परगास पई माटी संग दुलब दे बखानियो।

जाने। जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान, जन का संग पाये वडभागी नानक संतन कह कुर्बान। सारंग महला पंजवा करो गत दयाल संतो मोरी, तुम समरथ कारण करना टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिकी तुम तारे सुमत संग।

संताप मित्र सत्र पेख समत विचार्यो सगल संबाखन जाप तपत बुझी शीतल आघाने सुन अनहद विषम पै विषमाद अनद भया नानक मन साचा पूरन पूरे नाद सारंग महला पंजवा मेरे गुर मोरो सहसा उतारिया तिस गुर कह जाइए बलिहारी सदा सदा हो वारिया रहाओ गुर का नाम जपियो दिन राती गुर के चरण मन धारिया गुर की तूर करो नित मज्जन किलविक मैल उतारिया गुर पूरे की करो नित सेवा।

सब नासै साध संग हित लावे रहाओ। हर हर हर हर मन आराधे रसना हर जस गावे सज अभिमान काम क्रोध निंदा वासुदेव रंग लावे दामोदर दयाल आराधो गोविंद।

आन उपाव त्याग जन सगले चरण कमल रिद धारे प्राण आधार मीत साजन प्रभ एक है एकंकार सबते ऊंचे खाक।

मन बासत फल पाओ, सहु नानक लाभ लहा ले चालो, सुख से ती कर जाओ। सारंग महला पंजवा, ठाकुर तुम शरण आई आया।

अनद अनद गुण गाया, बाँ पकड़ कदली ने अपने गृह अंधकूप ते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे बिछरत आन मिलाया। सारंग महला पंजवा, हर के नाम की गत ठांडी, वेद पुराण सिमरत साधु जन, खोजत खोजत काढ़ी, रहाओ शिव ग्रंथ अर इंद्र।

पै हरणी मन बांछत चितवत नानक दास तेख जीवा प्रभ चरणी सारंग महला पंजवा सीते हर के नाम बिन साध अमृत रस कीर्तन हर गाई है।

प्रभ जी मोहे कवन अनाथ बिचारा, कवन मूल से मानुष करया के ऊपर ताप तुहारा रहाओ। जी प्राण सर्व के दाते गुण कहे न जाए।

जियो प्राण आधार तेरा, तून थावे थाओ सास सास समाल हर हर, नानक सद बल जाओ सारंग महला पंजवा, बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ, मुकत

कहत सुनत किछ शांत ना उपजत बिन विश्वास क्या सेखा प्रभु त्याग आन जो चाहत ता कै मुख लागे का लेखा जा कै रास सर्व सुख स्वामी आन ना मानत देखा नानक दर्श मगन मन मोहयो।

जन्म मरण संकट ते छूटे जगदीश भजन सुख ध्यान तेरी शरण पूरन सुख सागर कर कृपा देवो दान सिमर सिमर नानक प्रभु जीवे दिन जाए अभिमान सारंग महला पंजवा तूरत सोई।

परवाना। सारंग महला पंजवा। हर हर संत जना की जीवन दिखे रस भोग अमृत सुख सागर, राम नाम रस पीवन रहाओ। संचन राम नाम तन रतना, मन तन पीतर सीवन, हर रंग रांग पय मन लाला, राम नाम रस खीवन। ज्योमी ना जल स्यो उर्जानो, राम नाम संग लीवन। नानक संत चात

सरनाहे जप तप संजम कर्म सुख साधन तुलना कछु लाहे चरण कमल नानक मन भेद्यो चरण संग समाए सारंग महला पंजवा मेरा प्रभ संगे अंतर जामी आगे कुशल पाछे खेम सूखा।

पूरन होत न कथो बातें अंत प्रतिहार रहाओ। सांस सुख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार, आप पर का कछ न जाने काम करो दे जार। संसार सागर दुख व्यापियो दास ले वो तार, चरण कमल।

नानक जोन प्रवीण गोविंद बिसरे कवन दुख गनिए सुख नानक हर पद चीन सारंग महला पंजवा मायरी चरने ओट गही दर्शन पेख मेरा मन मोहयो।

ना प्रवति आए रतन जन्म अपार जीतियो बौर जोन ना पाए पय कृपाल दयाल गोविंद पया साधु संग हर चरण रास नान।

मानो द्वितीया पाओ सब लुहराओ त्याग गोपाल अवर जो करना ते बिखिया के खूह दर्श प्यास मेरा मन मोयो काडी नरक ते तू संत प्रसाद मिलियो सुखदाता बिनसी हो मैं हूँ राम रंग राते दास नानक मौलियो मन तन जूह सारंग महला पंजवा।

गोविंद गुप्त होए रहो न्यारो, मत अंग मत अहंकार कर कृपा प्रभ संत राखे, चरण कमल आधार कर जोर नानक।

सेवक पै दूर करन कलमल दोख जारे, कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते, राम राम सार भूत नानक तत बिचारे, सारंग महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग सगल कामी, रहाओ प्रीत लाए हर त्याए गुण गो

पंजवा गुण लाल गावो गुर देखे पंचा ते एक छूटा जो साध संग पग रहो रहाओ दृष्टो कछ संग ना जाए मान त्याग मोहा के कह हर प्रीत लाए मिल साध संग सोहा पायो है गुण निधान सगल आस पू

जन मुक्ता राम भजन चित लावे सारंग महला नावा मन कर कबहू ना हर गुण गायो।

सहज समाध सदा लिव हर्ष्यों जीवा हर गुण गाई गुर के शब्द रता बैरागी निज कर ताड़ी लाई शुद्ध रस नाम।

अनपो विसर गए प्रवजाच्या हर निर्माइल संगी चंचल मत त्याग पौ पंजन पाया एक शब्द लिव लागी हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल ले बढ़ पागी अमृत सिंच भय सुबर सर गुरमत साच निहाला मन रत नाम रते नहीं केवल आज जुगा दयाला मोहन मोहलिया मन मोरा बड़े पाग लिव लागी साच विचार किल विक दुख काटे मन निर्मल अनरागी।

हर रस रते अधिकाई, एक कस्बिन में अवर न जाना, सतगुर बूझ बुझाई, अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया, सुबर भरे नाही चित डोले।

आवागौन निवार सच राते, सात शब्द मन भाया, सतगुर से सदा सुख पाइए, जिन विच्चों आप गवाया, साचे शब्द सहज तुन उपजे, मन साचे लिव लाई, अगम अगोचर नाम निरंजन, गुरमुख मन वसाई, एक समय सब जग तो वरते, विरला एक पछाने, शब्द मरे ता सब किछ सूजे, अंधन एक को जाने, जिसनो नजर करे सोई जन बूझे, होर कहना कछ न जाई, नानक नाम रते सदा बैरागी, एक शब्द लिवलाई, सारंग महलाती जा, मन मेरे हर की अकथ कहानी, हर नजर करे सोई जन पाए, गुरुमुख विर ले जानी, रहाओ, हर गहर गंभीर गुणी गहीर, गुर के शब्द पछानिया, बहुविध कर्म करें पाई दूजे, बिन शब्द बहुरानिया, हर नाम नाम है सोई जन निर्मल, फिर मैला मूल ना होई, नाम बिना सब

सच संजम करनी किरत कमावे आवन जान रहाई से दर साचे साच कमावे जिन गुरमुख साच अधारा।

अगम अगाध सुनो जन कथा, पार ब्रह्म की अचरज सभा रहाओ। सदा सदा सतगुरु नमस्कार, गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन पीतर होवे प्रगास, ज्ञान अंजन अज्ञान बिना।

का दाता। कट कट पूरन है अलपाता, कट कट पूरन कर विस्थिरन, जल तरंग ज्यों रचन किया, हब रस माने भोग कटाने।

सा अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थन अंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह न सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोयो पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा कर कृपा अपने पह आया तन सुरदा जी चरण बसाया संत संगाया।

करें मनमुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मनमुख दूजा परम है दूजे लोभाया कूड कपट कमाम दे कूड़ो अलाया पुत्र कलत्र मोहित है सब दुख समाया जम दर बद्दे मारिए परमे परमाया मनमुख जन्म गवाया।

मूर्ख अंधिया अंधी सात कह कह कहन कहायन आप महला पहला आखन औखा सुनन औखा आख ना जाती आख एक आख आखे शब्द पाखे अर्ध उर्द दिन रात जे क्यों होए ता क्यों दिसे।

आँख न जापे आँख पौड़ी, ना ही सुनिए मन रहसिए ना मी शांति आई, ना ही सुनिए मन तृप्तिए सब दुख गवाई, ना ही सुनिए ना उपजे ना मी वड्याई, ना में ही सब जात पत ना में गत पाई, गुरुमुख नाम से आई है नानक लिव लाई। श्लोक महला पहला, झूठ न रागी झूठ न वेदी, झूठ न चंद सूरज की पेदी, झूठ न अन्नी झूठ न नाई, झूठ न मियो वरे है सब थाई, झूठ न तरती झूठ न पानी, झूठ न पौने माई समानी, नानक निगुरिया।

मैं अंधे नाउ सुजाता। जेता आखण साही सबदी पाख्या पाए सुवाई, नानक बहुता एहो आखण सब तेरी वड्याई। महला पहला।

सतगुरु के पाणे जो चले हर से तीर लिया, जमकाल जो न सकई कर चानन बलिया, नानक बख्श मिलायन फिर गर्व न गलिया। श्लोक महला पहला सच वर्त संतोष।

तिकना नाद ना वेद ना गी रस रस तस ना जानंत तिकना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक से नर असल खर जे दिन गुण गर्भ करा।

वस्त पराए आप गर्व करे मूर्ख आन गणाए नानक बिन बूझे किने न पायो फिर आवे जाए महला तीजा मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम सरसे सज्जन संत प्यारे जो तुर मिले ना विछड़े कब हूँ जे आप मेले करतारे अंतर शब्द रविया गुरु

कुल न हो गई। नाम वसे मन आए बिन नामे जे होर खाना, चित रोग लग जाए तन खाए, नानक रक्त सब सलाहना। आपके ले मिलाए महला तीजा, जिया अंदर जियो सब।

हर अचिंत बुलावे कृपा कर, हर आपे पावे खाए, हर किसे त्यागो संत जनो जो अंते ले चलाए। हर कीर्त भगत आनंद है, सदा सुख वसे मन आए, जिना गुरमुख नाम आराध्या तिना दुख दुख ले जाए। जन नानक तृप्त है गाए गुण, हर दर्शन देहो सुवाए पौड़ी, गुरपुरे की दात नित देवे चढ़े सवाइया, तुस देवे आप दया।

आप छोड़ सरनाए पवे मन ले रजाए। गुरमुख जम डंड ना लगे होमे विचों जाए, नानक सेवक सोई आखिए जे सच रहे लिवलाए महला तीजा। दात जोत

अवन होते अधिक सतर पत छिन में गए दिलात। हर के संत सदा सिर पूजो जो हर नाम जपात, जिनको कृपा करत है गोविंद के सत्संग मिलात। मात पिता बनता सुख संपत अंत न चल संगात, कहत कबीर राम पद।

साध मन हर विमुखन को संग सारंग महला पंजवा सूरदास एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर के संग बसे हर लोक तन मन अर्प सर्व से।

गया है मरना। खसम विसार खुआरी कीनी, एक जीवन नहीं रहना। प्राणी एको नाम दियावो, अपनी पक्षी की घर जाओ रहाओ।

देहि नानक रुत सुहावी साई बिन नामे रुत के ही मलार मैला पहला करो बिनो गुर अपने प्रीतम हर बर आन मिलावे सुन कंकोर शीतल मन मोरा।

मन मानिया हर वर नार तई सोहागण मन तन प्रेम सुखानिया अवगन त्याग तई बैरागण अस्थिर वर सोहाग हरी सोग विजोग तिस कदे ना व्याप हर प्रभ अपनी कृपा करी आवन जान नहीं मन में चले पूरे गुर की ओट गही नानक राम नाम जप गुरमुख तन सुहागन सच सही मलार महला पहला साची सुरत नाम नहीं तृप्ते हों मैं करत गवाया।

हर का नाम न भाया, रतन पदार्थ पर हर त्या गया, जब को तप ही आया, दिष्टा कीत पय उत ही ते, उत ही मन समाया, अधिक स्वाद रोग अधिकाई।

जिन तन तिरका साब न जानिया साबिल को बदन कुमलानी पई निराशी परम की फांसी बिन गुर परम तुलानी बरस करा मेरा फिर कर आया बल जावा गुर अपने प्रीतम जिन हर प्रभ आन मिलाया रहाओ नौतन प्रीत सदा ठाकुर स्यो हम जिन भगत सुहावी मुक्त पे गुर बरस दिखाया जुग जुग भगत सुभावी हम सारे त्रिभुवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिले निरंजन पाया दौड़ न पव जल फेरा अपने पिर हर देख विदासी तो तन साथ सिगारो अतुल निरंजन स्यो सत साची गुरमत नाम आधारो मुक्त पाई बंधन गुर खोले सबद सुरत पट पाई नानक राम नाम हृद अंतर गुरमुख मेल मिलाई महला पहला मल्हार पर दारा पर तन पर लोबा हों मैं बिछै बिकार दुष्ट पाओ तज निंद पर आई काम क्रोध चंगार महल में बैठे अगम अपार पीतर अमृत सोई जन पावे जिस गुर का शब्द रतन आचार रहाओ दुख सुख दो संकर जाने बुरा पला संसार शुद्ध बुद्ध सुर्ख नाम हर पाये सत्संगत गुर प्यार एन सलाहा हर नाम प्राप्त गुरदाता दे मनहार गुरमुख सुख सोई जन पाए जिसनो नगर करे करतार काया महल मंदिर कर हरता किसने राखी जोत अपार नानक गुरमुख महल बुलाये।

मानस का तल तब मैं सास सास दे काया तल पाए ताके पाछे कोई न पाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूट से साचे नाए मलार महला पहला दुख महुरा मारन हर नाम।

आप कृष्णा उगने की दंज नगर करे ता बंदा तीर ज्यों वेखा ले त्यों वेखा वीर ना यो तंग जाएगा ना जाएंगे खम्ब पौने पानी अग्नि का सन बंद नानक कर्म होवे जतिए।

तेरे हो आतिश समाना, चूक गया पासारा मलार महला तीजा। जिन्नी हुक्म पछाणिया से मेले हो मैं शब्द जलाए, सच्ची भगत करें दिन राती सच रहे लिवलाए। सदा सच हर वेख दे गुर कै शब्द सुभाए, मन रे हुक्म मन सुख होए प्रभ पाना अपना भावदा। जिस बच्चे तिस बिघन ना कोई रहाओ, त्रै गुण सबा तात है ना हर भगत ना भाए। गत मुक्त कदे ना हो वही हो मैं कर्म कमाए, साहिब पावे सोथी है पये किरत फिराए। सतगुर तोतिए मन मर रहे हर नाम वसे मने।

मेरा हर पद अगम अगोचर है, कीमत कह न जाए, गुरु प्रसादी बुझिए सब देकार कमाए, नानक नाम चलाए तू हर हर दर शोभा पाए, मलार मैला पी जा, गुरमुख कोई गुर ना बूझे जिस

मेरे मन हर अमृत नाम ध्याए, सतगुरु पुरख मिले ना उपाय, हर नाम में सदा समाये रहाओ, मन मुख सदा विचले फिरे, कोई न किसी नाल, हूँ मैं वड्डा रोग है, सिर मारे जमकाल, गुरमत सत्संगत ना विचले, अंधन नाम समाल, सबना करता एक तू, नित कर देखे विचार, एक गुरमुख आप मिलाया, बक्षे पलक पंडार, तू आपे सब किस जानदा, किस आगे करी पुकार, हर हर नाम अमृत है, नगरी पाया जाए, हम दिन हर हर उच्च

दात शब्द सुख अंतर सदा निभे तेरे आल राव। मन मुखता खंड कदे न चूके दूजे पाए दुख पाए नाम विसार दिखिया मन राते बिरथा जन्म गवाए ते वेला सुर हथ नावे अंदिन सदा पछताए मर मर जन्मे कदे न बूझे विस्ता मय समाए गुरमुख नाम रते सेव दुरे गुर का शब्द विचार जीवन मुक्त हर नाम त्याए।

तस बिन मैं और ना जाना, सतगुरु दिया बुझाई, मन मेरे नाम रहो लिवलाई, अदिष्ट अगोचर अपरंपर करता, गुर के शब्द

इहो हुकम कर श्रेष्ठ उपाय, गुर प्रसादी बूझो भाई, सदा रहो हर की शरणाई। सो पंडित जो तिहां गुणा की पंड उतारे, अंजन एको नाम वखाणे।

हौ तिन जन के सब लागो पाए, हौ जीवा सदा हर के गुण गाई। गुर का शब्द महारस मीठा, हर के नाम मुक्त गत पाई रहाओ। माया मोह अज्ञान दुवार, मनमुख मोहे मुक्त गवार। हम दिन तंदा कर्क निहाए, मर मर जम मैं मिले।

रसना नाम सब कोई कहे, सतगुरु सेवे का नाम लहे, बंधन तोड़े मुक्त कर गए, गुर शब्दी अस्थिर कर गए, मेरे मन काहे रोष करी जाए, लाहा कलज गुराम नाम है, गुरमत अंदन हृदय रवी जाए, रहाओ बाबी हाँ खिन खिन दिल लाए, दिन फिर देखे नींद ना पाए, यो विछोड़ा सहा ना जाए, सतगुर मिले का मिले सुवाए, नाम ही दिन से दुख पाए, तृष्णा जलिया पूख ना

हर हर प्रभु कृपा धारी, नैनी हर हर लागी तारी, सतगुरु देख मेरा मन बिगस्यो। जन हर पेट्यो बनवारी रहाओ, जिन ऐसा नाम विसारिया मेरा हर हर, तिसके कुल लागी गारी, हर तिसके कुल प्रसूत ना करियो, तिस विधवा कर महकारी, हर हर आन मिलावो गुर साधु, जिस

गुरपुर हूं मैं तीस तोरी, जन नानक मिले बनवारी। मल्हार महला चौथा, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती, ते करें उद्दम तूर साधु की ताई। किल विच मैल परे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की तूर गवाई। तीरथ असठ मज्जन नाई, सब संगत की तूर परी उड़ नेत्री, सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ। जहर नवी तपे पागीरथ रानी, केदार था प्यो महसारी। काशी कृष्ण चरावत गाऊ, मिल हर जन शोभा पाई। जितने तीर्थ देवी थाते, सब जितने लोचे तूर साधु की ताई। हर का संत मिले गुरु।

हर जन हर कार लावे, सतगुरु हर हर नाम दिलावे। हर बोलो गुर के सुख मेरे भाई, हर पौ जल जगत करावे रहाओ। जो गुर को जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभु भावे। हर की सेवा सतगुर पूजो, कर कृपा आप करावे। कर्म पूले अज्ञानी अंधुले, कम कम फूल तोड़ावे। निर्जीव पूजे मरा सुरेवे, सब दुखि काल गवावे। ब्रह्म बिंदे सो सतगुर कहिए, हर हर कथा सुनावे। उस गुर को छादन पूजन पाठ, पतंबर बहुबुदे सत कर मुख संचो। किस पुन की फिर कोट नावे, सतगुर देव प्रतक हर मुहूर्त। जो अमृत वचन सुनावे, नानक पाग पल

मेरा मन बिगसै हौ किन कै सद बल जांत। ज्ञानी हर बोलो दिन रात तिनकी तृष्णा पूप सब उतरी जो गुरमत राम रस्थांत रहाओ हर के दास साध सखा।

तिनानी हर हृदय के कपटी नरमित कपट तमाक तिनको क्या कोई देख वाले वो आप बीज आते ही खाते हर का चिन्ह सोई हर जन का हर आते जन में आप रखाते तन तन गुरु नानक समदर्शी जिन निंदा उस्तत करी त्रांत मलार महला चौथा अगम अगोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जप लया सब संगत साध पाई वड पागी संग साधु पार पया मेरे मन अंदिन अंध भया।

0: तिन संगत हर मेलो करमया, तिनका दर्श देख सुख पाया, दुखों में रोग गया, जो अनदिन हृदय नाम दिया है, सब जान तिना का सफल भया, वे आप करे सुष्ट सरकारी, सब कुल भी पार कया, तुद आपे आप उपाया सब जग, तुद आपे वश कर लया, जन नानक तो प्रभु कृपा धारी, दिख दुबदा ताब लया।
1: मल्हार महला चौथा। गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया, कृष्णा फूक न जाई, मन मुख मूल जलत अहंकारी, हूं मैं विच दुख पाई, आवत जात बिरथा जन्म गवाया, दुख लागे पछताई, जिसते उपजे तिसे न चेते, त्रिग जीवन त्रिग खाई, प्राणी गुरमुख नाम दे आई, हर हर कृपा करे गुर मेले, हर हर नाम समाई रहा, मन मुख जन्म भया है बिरखा, आवत जात लजाई, काम क्रोध डूबे अभिमानी, हों मैं विच जल जाई, तिन सिद्ध ना बुद्ध भई मत मद्दन, लोभ लहर दुख पाई, गुर बिहून महा दुख पाया, जम तकरे दिल लाई, हर का नाम अगोचर पाया, गुरमुख सह सुभाई, नाम निधान वस्या घट अंतर,

मिल साध संगत हर तोर रहाओ। हर तन बन जो हर तन संचो, जिस लागत है नहीं चोर। पात्रक मोर बोलत दिन राति, सुन कन हर की कोर। जो बोलत है मृग मीन पंखेरु, सो बिन हर जापत है नहीं होर। नानक जन हर कीरत गाई, छूट गयो जम का सब सोर। मलार महला चौथा, राम राम बोल बोल खोजते बड़ पागी। हर का पंथ को बतावे, हौंका कह पाए लागी। रहाओ हर हमारो मीत सखाई, हम हर स्यों प्रीत लागी। हर हम गावे हर हम बोले, और दुतिया प्रीत हम त्यागी। मन मोहन मोरो प्रीतम राम, हर परमानंद बैरागी। हर देखे जीवत है नानक, एक निमत पलो मुख लागी। राग मल्हार महला पंजवा, चौक दे कर पहला इको अंकार। सतगुरु प्रसाद, क्या तू सोचे, क्या तू चितवे, क्या तू करे उपाय। ताको कहो

खीर आधार बारक जब होता बिन खीरे रह न जाई, सार समाल माता मुख नीरे तब हो तृप्त अघाई। हम बारक पिता प्रभु दाता, फूले बारक अनेक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की, सर्प अगन कर मेले, माता पिता कंठ लाए राखे, अनद सहज तब खेले। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, इस बारक भूख कैसी, नवनिद नाम निधान गृह तेरे, मन बाँचे सो लैसी। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारक मुख मांगे सो देना। नानक बारक दर्श प्रभ चाहे, मोहि हृदय बसे नित चरना। मनार महला पंजवा, सगल विधि जुर आहर करया, सजियो सगल अंदेशा, कार्य सगल अरंभियो करका, ठाकुर का भरोसा। सुनिए बाजे बाज सुहावी, और पया मैं प्रेम मुख देखे, गृह मंगल सुहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना, पूछो संता जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो। पगत करो निर पाए, जब प्रेम आए बसे गृह आसन, तब हम मंगल गाया। मीत साजन मेरे पहे सुहेले, प्रभु पूरा गुरु मिलाया। सखी सहेली पै अनंदा, गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता, छोड़ न जाई दूरे। मलार महला पंजवा, राज ते कीट कीट ते सुरपत कर, दोक जठर को परते, कृपा निध छोड़ आम को पूजे, आत्म का सी हरते। हर बिसरते दुख दुख मरते, अनेक बार प्रमे बहु जोनी, एक न काहू तरते रहाओ।

नानक शरण चरण कमलन की तुम ना डारो प्रभ करते। राग मलार महला पंजवा दुख दे कर पहला इको ओंकार सतगुर प्रसाद। प्रभ मेरे ओए बैरागी त्यागी हौ इक खिन तिस बिन रह ना सको प्रीत हमारी लागी रहाओ उनके संग मोहे।

कृपाल पे बड़ पागी मां सुख पाया बर न फाको रेन नानक जन पागी मल्हार महला पंजवा माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई सगल सहेली सुख पर सूती जे कर लाल बसाई रहाओ।

सुख सुखदाई, एक निमख में मेरा सब दुख काटिया, नानक सुख रहन बिहाई। मलार महला पंजवा, बरस मेघ जी तिल बिल न लाओ, बरस प्यारे मने सदारे, होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ।

नाथ दीन दुख पंजन आप लिए लड़ लाई, हर की ओट जीवे दास तेरे नानक प्रभ शरणाई। मल्हार महला पंजवा, मन मेरे हर के चरण रवि जय, दर्श प्यास मेरो मन मोयो, हर पंख लगाए मिली जय रहाओ, खोजत खोजत मार्ग पा

कर गह लिहो दास अपने को, नानक अपनों की जय। मलार महला पंजवा, प्रभ को भगत बछल बिरदायो, निंदक मार चरण तल दीने, अपनो जस वरतायो रहा।

महा आनंद करो दास हर के, नानक विश्वास मन आयो। राग मल्हार महला पंजवा, चौप दे कर दूजा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद गुरुमुख दीसै ब्रह्म पसार, गुरुमुख त्रै गुणिया विस्तार। गुरुमुख नाद वेद विचार, बिन गुर पूरे कोर अंधार। मेरे मन गुर गुर कर सदा सुख पाये, गुर उपदेश हर हृदय वस्यो। सांस गिरास अपना खसम त्या।

गुर बोहित पग दल तारणहार, गुर पेटे ना हुए जोन अवतार, गुर की सेवा सो जन पाए, जाको कर्म लिखिया तुर आए, गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सतगुर शरणाई, नानक गुर पार।

ना जाए, कर कृपा पूरन सुखदाते, तुम्हारी कृपा से तू चित आवे, आठ पैर तेरे रंग राते रहाओ, गावन सुनन सब तेरा भाना।

ज्ञान, सदा सदा जाइए कुर्बान। काल गवाया करते आप, सदा सदा मन किसनो जाप। दृष्ट तार राखे सब जंत, गुण गावो नित नित भगवंत। एको करता आपे आप, हर के भगत जाने प्रताप। नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बोलाया। मलार महला पंजवा, गुर शरणाई सगल निधान। साची दरगै पाये मान, ब्रह्म को दुख दर्द सब जाए। साध संग सब हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा सालाए। नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाए रहाओ। सतगुर जेवड़ अ

सो मन निर्मल जो गुरु संग राची गुरपुरा पाए वडवाग काम क्रोध लोभ मनते त्याग कर कृपा गुरु चरण निवास नानक की प्रभु सत अरदास राग।

नूरी सगल सिंगार, तजोरी सगल विकार, ताव तो अस्थिर थी आ रहा। ऐसे रे मन पाए के आप गवाए के कर साधन स्यों संग, बाजे बजे में

नानक प्रयो प्रीतम किया मल्हार महला पंजवा मन कने प्रमे बने उमक तरस चाले प्रभ मिलबे की चाहा रहाओ त्रै गुण माई मोह आई कहो बेदन काहे आन उपाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे हज शरण साधु नानका मिल गुण गोविंद गाहे मल्हार महला पंजवा त्रै की शोभ सुहावनी नीकी हा हा हू हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ सुनत ललित गुणग अनक भांत बहुविध रूप दिखावनी नीकी गिरतर थल जल पवन परपुर कट कट लालन छावनी नीकी साध संग रमैया रस पायो नानक जा कै पावनी नीकी मल्हार महला पंजवा गुरप्रीत प्यारे चरण कमल रिद अंतर धारे रहाओ दर्श सफलियो दर्श पेखियो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे विषम विस्मय विषम भई अब कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तोहारे जन नानक शरण द्वारे मल्हार महला पंजवा बरस सरस आग्या होहे आनंद सगल पाग रहाओ संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग कन कोर प्रीत मोर चित चात्रिक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोहो त्याग माया तोहो मिल संत नानक जागया मल्हार महला पंजवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ कै संग हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत पार ब्रह्म पै दयाल बिनस गए बिखे जंजाल साध जना कै चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत मल्हार महला पंजवा कन गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाओ हर चरण शरण तरण सागर तुन अनहता रस बैन पथिक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन।

हे समरथ अगम पूरन मोहे मयाधार अंधकूप मोह भयान। नानक पार उतार मल्हार महला पहला अष्टपदियां कर पहला इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। चकवी

लाई। शात्रिक जल बिन प्रयो प्रयो टेरे, बिल करे बिल लाई। कम हर कोर दसो दिस बरसे, बिन जल प्यास न जाई। मीन निवास उपजे जल ही ते, सुख दुख पूर्व कमाई। खिन तिल रह ना सके पल जल बिन, मरण जीवन तिस ताई। तन वाडी तिर देश निवासी, सच्चे गुर पै सबद पठाई।

साई गुर प्रसाद कर ही फिर पाया, कौ नानक तपत बुझाई मलार महला पहला, जागत जाग रहे गुर सेवा बिन हर मैं को नाही, अनेक जतन कर रहे न पावे आच पाच टर पाही, इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिन सत बार न लागे बवरे, हो मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहा।

अमर अनाथ सर्व सिरमोरा काल विकाल परम पैखंजन कागद कोट इहो जग है बपरो रंगन चेन चतुराई नानी सी बूंद पवन पत खोवे जन्म मरे खिन ताई नदी उपकंठ जैसे कर तरवर सरपन कर कर माही उल्टी नदी कहाँ कर तरवर सरपन डसे दूजा मन माही गरुड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी विख्या गुरमत जारी मंथन हेम पै सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाते तू सर्व जिया दयाला तुमरी शरण परे पत राखो साच मिले गोपाला बादी तंग अंग नहीं सूजे बदिक कर्म कमावे सतगुरु मिले ता सूजस बूजस।

चात्रिक मीन जल ही ते सुख पावै सारिंग सबद सुहाई रैन बबीहा बोलियो मेरी माई रमाओ त्रै स्यो प्रीत न उल्टे कबहू जो तै पावे साई नींद गई हो मैं तन फाकी सचमत हृदय समाई रूखी बिरखी उदो पूखा पीवा नाम सुवाई लोचन पार ललता बिललाती।

कहु नानक तुझते मन मानिया कीमत कह न जाए मलार महला पहला अष्टपदियां कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद अखली ऊंडी जल पर नाल डूगर ऊंचो गढ़ पाताल सागर शीतल गुर शब्द विचार मार्ग मुक्ता हो मैं मार मैं अंधुले नाम की जोत नाम आधार चला गुर के पै पेत रहाओ सतगुर शब्दी

पार, ना जल डूंगर ना ऊंची धार, निज कर वासा ते मगना चालनहार, जित कर वसे तू है बिद जाने, बीजो महल न जाते, सतगुरु बाजो।

पल पंकज में नाम छुड़ाए जे गुर सबक सिंजापे। एक मूर्ख अंधे मुग्ध गवार एक सतगुर के पै नाम आधार। साची बाणी मीठी अमृत धार जिन पीती तिस मोख द्वार। नाम पै

जो तुर लिखिया सो मेटना न जाए, हुक्मे बांदा कार कमाए, एक शब्द राचे सत समाए, चौ दिस हुक्म वर्ते प्रभ तेरा, चौ दिस नाम पतालं, सब में शब्द वर्ते प्रभ साचा, कर्म मिले बयालं, जामन मरना दिसे सिर उबो, खुदया निद्रा कालं, नानक नाम मिले मन भावे, साची नगर रसालं, मलार महला पहला, मरण मुकत गत सार न जाने, कंठे बैठी गुर शब्द पछाने, तू कैसे आर

मन मेरे हर हर नाम शीतलाए, सतगुर ते हर पाई है साचा, हर स्यों रह समाए रहाओ। सतगुर ते ज्ञान उपजै ता ए संसार जाए, सतगुर ते हर बुझिए गर्भ जोनी नह पाए।

वेद बाणी जग वर्तदा त्रै गुण करे विचार बिन नावे जम दंड सह मरजन में वारो वार सतगुर पेटे मुक्त होए पाए मोख द्वार मन रे सतगुर सेव समाए वड्डे भाग गुर पूरा पाया हर हर नाम ते आए रहाओ हर अपने पाने सृष्ट उपाई हर आपे दे आधार हर अपने भाने मन निर्मल किया हर स्यों लागा प्यार हर कै

तिस जेवड़ अवर ना कोई आपे बख्शे मेल लए करम प्राप्त होए साचा साहिब मारो सतगुरु दिया दिखाए अमृत वर्षे मन संतोखिए सच रहे निवलाए।

को सतियाए हर कृपा ते सतगुर पाइए ते पैसे सुवाए मन मुख परम पुलाया बिन पागा हर तन ना पाए त्रै गुण सबा तात है पर करे विचार मुक्त कदे ना हो वही नौ पायन मोख द्वार बिन सतगुर बंधन ना तुत ही नाम न लगे प्यार पढ़ पढ़ पंडित।

है। हर सिउ रहा समाये, मल्हार महल आती जा, अष्टपदी कर दूजा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद हर हर कृपा करे, गुर की कारे लाए, दुख पल्लर हर नाम बसाए, साची गत साचे चित लाए, गुर की बाणी शब्द सुनाए, मन मेरे हर हर सेव निधान, गुर कृपा ते हर तन पाई है।

नानक साचे साच समाए राग मल्हार छंत मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद। प्रीतम प्रेम भगत के दाते अपने जन संग राते, जन संग राते दिन सराते एक निमख मनो ना विसरै। गोपाल गुण निद सदा संगे सर्व गुण जगदीसरै। मन मोहलीना चरण संगे नाम रस जन माते। नानक प्रीतम कृपाल सदहू किने कोट मदे जाते। प्रीतम तेरी गत अगम अपारे महापतित तुम पारे। पतित पावन भगत वचल कृपा सिंध स्वामिया। संत संगे भजन संगे रहो सदा अंतर जामिया। कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारे। नानक दर्श प्यास हर जियो आप लिहो समारे। हर चरण कमल मन लीना प्रभ जल जन तेरे मीना। जल मीन प्रभ जियो एक तू है पिन आन ना जानिए। गह पूजा लेवो नाम देवो तो प्रसादी मान।

आप उसको आप मिलाया, तम पंजन हर राया, अचरज स्वामी अंतरजामी, मिले गुण निध प्यारिया, महामंगल सुख उपजे, गोविंद गुण निध सारिया, मिल संग सोहे देख मोहे, पूर्व लिखिया पाया, बिनवंत नानक शरण तिनकी, जिन्नी हर हर ध्याया, वार मलार की महला पहला, राणे कैलाश तथा माल दे की तुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला तीजा। गुर मिलिए मन रहसी है, ज्यों उठे तरण सिगार, शब्द से हरियावली सर करे सदर ताल, अंदर रचे सच रंग ज्यों मंजी छे लाल, कमल विग से सच मान।

काल खुदया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल एनी अखी नदर न आवई जिचर

तू सच्चा मन सच महला पहला हेको पादर हेक दर गुर पौड़ी निज थान रूड़ो ठाकुर नानका सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी ने आप साज आप पछाणिया अंबर तरत बिछोड़ चंदो आताणिया विण थम्मा गगन रहाए सब निशाणिया सूरज चंद उपाए जोत समाणिया किए रात दिनंत चोज विलाणिया तीरथ तरम विचार नावन कुर्बाणिया तुझ सर अवर न कोए के आख वखाणिया सच्चे तख्त निवास होर आवन जाणिया। श्लोक महला पहला नानक सावन जेवस है चहो उमाहा होए नागा मिर्गा मच्छियां रसियां करतन होए। महला पहला नानक सावन जेवस है चहो विछोड़ा होए गाई पुत्ता निर्दना पंथी चाकर होए पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्म बड़ा कहाए अंत न पाया ना किस बाप न माए किंतु जाया ना किस रूप न रेख वर्ण सबाया ना किस पुख प्यास रज्जा ताया गुर में आप समोए शब्द वरताया सच्चे ही पते आए सच समाया। श्लोक महला पहला वैद बुलाया वैदगी पकड़ टंडोले बाहा होला वैद न जाने।

लोड लहो जित वन्य रोगा कान जित दारू रोग उठिए तन सुख वसे आए रोग गवाए अपना का नानक वैद सदाए पौड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया ब्रह्मे दित्ते वेद पूजा लाया दस अवतारी राम राजा आया दैता मारे ताए हुक्म सवाया ईस महेश्वर सेव तिन्नी अंतना पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया दुनिया तन दे लाए आप छपाया।

जुलाए, जो जल में कमल अलिप्त है ऐसी बंत बनाए, से सुखिए सदा सोने जिन विच्चों आप गवाए, तिन सोग विजोग कदे नहीं जो हर के अंक समा

सच्चा साहिब मन वसे सा मन चिंदिया फल पाए नानक तिनका आखिया आप सुने जे लयन पन्ने पाए महला तीजा अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार गुरमुख जिन्नी बुझिया हर अमृत रखिया उधार हर अमृत पीवे सवा रंग राते होमे तृष्णा मार अमृत हर का नाम है वरसे कृपा धार नानक गुरमुख नगरी आया हर आत्म राम मुरार पौड़ी अतुल क्यों तोलिए बिन तोले पाया ना जाए गुर के शब्द विचारिये गुण में रह समाए अपना आप आप तोलसी आपे मिले मिलाए जिसकी कीमत ना पवे कहना किछु ना जाए हौ बलिहारी गुर अपने जिन सच्ची बूझ दिती बुझाए जगत मुसे अमृत लुटिए मन मुख बूझ न पाए विण नामे नाल न चलसी जासी जन्म गवाए गुरमति जागे तिन्नी कर रखिया दूता का किसना वसाए श्लोक महला तीजा बाबी हा ना बिललाए ना तरसाए इहो मन खसम का हुक्म मन नानक हुक्म मने तिख उतरे चढ़े चवक गलवन महला तीजा बाबी हा जल में तेरा वास है जल ही मैं फिरा है जल की सार न जानही ता तू कूकन पाहे जल फल चहु दिस वर्षदा खाली को ठाव नाहे एते जल वर्षदे तिख मरे पाग तिना के नाहे नानक गुरमुख तिन सोजी पई जिन वस्या मन माहे पौड़ी नाथ जति सिद्ध पीर किने अंत न पाया गुरमुख नाम पियाए तुझे समाया जुग शक्ति गुबार तिस ही पाया जला बिंब असराल तिने वरताया नील अनिल अगम सरजीत सवाया

नानक एहो जगत सब जल है, जल ही ते सब कोए, गुरु प्रसादी को विरला बूझे, सो जन मुक्त सदा होए। पौड़ी सच्चा वे परवाह इको तू धनी, तू सब किच आपे आप दूजे किस गणी, मानस कूड़ा गर्भ सच्ची तुदमणि, आवा गौण रचाए उपाई मेदनी, सतगुर सेवे अपना आया किस गणी, जे हो मैं विच्चों जाए ताके ही गणत गणी, मनमुख मोह गुबार ज्यो पुल्ला मंजवणी, कट्टे पाप असंख नामे इक कणी। श्लोक महला तीजा, बाबी हा खसमे का महल न जाने, महल देख अरदास पाए, अपने पाने बहुता बोले, बोलिया थाए न पाए, खसम वड्डा दातार है, जो इच्छे सो फल पाए, बाबी हा क्या बपुरा, जगते की तिख जाए महला तीजा, बाबी हा किन्नी रैन बोलिया, सहजे सच सुभाए, क्यों जल मेरा जियो है, जल बिन रह न जाए, गुर शब्दी जल पाई है, विच्चों आप गवाए, नानक जिस बिन चसा न जीवई, सो सतगुरु दिया मिलाए। पौड़ी खंड पताल अस

कोई एक राजे खान मलूक कहे कहा में कोई एक सना सदा में संत धन दूजे पट खोई एक दाते एक मंगते सगना सिर सोई बिना में बाजारिया पिहावल होई कूड़ निखुटे नानका सच करे सो होई। श्लोक महला तीजा बाबी हा गुणवंती महल पाया औ गुणवंती दूर अंतर तेरे हर वसे गुरमुख सदा हजूर। कूक पुकार ना हो गई नदरी नगर निहाल नानक नाम रते सहजे मिले शब्द गुरु कै काल। महला तीजा बाबी हा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान जल बिन प्यास न उतरे छुटक जाहे मेरे प्राण। तू सुखदाता बेअंत है गुणदाता निधान नानक गुरमुख बस ले अंत बेली होए भगवान पौड़ी आपे जगत उप

अब गयार जिस बच्चे सो पाए सी गुर सर्दी विचार। श्लोक महला पंजवा। रात न विहावी सापता जिना विसरै नाओ, राती दिन सुहेलिया नानक हर गुण गाओ। महला पंजवा। रतन जवे हर मान का हबे मणि मथन, नानक जो प्रभु पाया सच्चे दर सोहन पौड़ी। सच्चा सतगुर सेव सच समा लिया, अंत खलोआ आए जे सतगुर अगे कालिया। कोई न सके जमताल सच्चा रखवा लिया, गुरसा की जोत जगाए दीवा बालिया। मन मुख बिन नावे कूड़ियार फिर बेतालिया, पशु मानस चंप लेते अंदरों कालिया। सबो वर्ते सच सच्चे सबर निहालिया, नानक नाम निधान है पूरे गुर देखा लिया। श्लोक महला तीजा। बाबी है हुकुम पछाणिया गुर कै सह सुवाए, मेघ वर्षे दया कर गूड़ी छे बरलाए। बाबी है कूक पुकार रह गई सुख वसिया मन आए, नानक सोसा लाई है जे दिन दासवना जिया रिजिक समाए। महला तीजा। चात्रिक तू ना जानही क्या तुद विच तिखा है, कित पीते तिख जाए। दूजे पाले परम्या अमृत जल पल्ले ना पाए, नदर करे जे अपनी ता सतगुर मिले सुवाए। नानक सतगुर ते अमृत जल पाया सहजे रहा समाए पौड़ी। एक मन खंड बैसे जाए सदना दे वही, एक पाला चक्कर पान शीतल जल हे वही। एक पसम चढ़ा में अंग मैलना तो वही, एक जटा बिकट विकराल कुल कर खो वही। एक मगन फिरे दिन रात नींद ना सो वही, एक अगन जला में अंग आप विगो वही। गिनना में तन चार क्या कह रो वही, सोहन खसम द्वार जे सतगुर से वही। श्लोक महला तीजा। बाबी हा अमृत वेले बोलिया तां दर सुनी पुकार, मेघे नो फुरमान होआ वर्षो कृपा कार। हौ तिन कै बलिहार ने जिन्नी सच रखिया उधार, नानक नामे सब हरियावली गुर कै शब्द विचार। महला तीजा। बाबी हा इव तेरी तिखा न उतरे जे सो करे पुकार, नदरी सतगुर पाईए नदरी उपजै प्यार। नानक साहिब मन वसै विचों जाए विकार।

फिर खुहाए ना पद कराया, कुचल रहे दिन रात शब्द ना पाया, तीन जात ना पक्ष ना कर्म जन्म गवाया, मन झूठे वे जात झूठा खाया, बिन शब्द आचार ना

गुरमुख शब्द संभालिए, सच्चे के गुण गाओ, नानक नाम रते जन निर्मले, सहजे सच समाओ पौड़ी, पूरा सतगुर सेव पूरा पाया, पूरे कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया, पूरे ज्ञान ध्यान मैल चुकाया, हर हर तीर्थ जान मनुआनाया, शब्द मरे मन मार तन जने दी माया, दर सच्चे सच्चे आर सच्चा आया, पुछ ना सके कोई जाखस ने भाया, नानक सच सलाहे लिखिया पाया, श्लोक महला पहला, कुल्हा देन दे बावले, लेन दे वडे निलज, चूहा थद ना मावई, तिकल बन्ने छज, देन दुआई से मरे, जिनको देन से जाहे, नानक हुक्म न जा कई, कित्थे जाए समाहे,

केते मंग मंग जाहे महला पहला। सौ मन हस्ती क्यों गुड़ खावे पंज सै दाना खाए। डके फूके खीरे उड़ावे साहे गया पछताए। अंधी फूक मोई दीवानी खसम मिटी फिर भानी। अब गुल्ला चिड़ी का चुगन गैन चढ़ी बिल लाए। खसम पावे ओहा चंगी जे करे खुदाए खुदाए। सबका शिव मारे सह मिर्या सब पिछे पे खाए। होई सताना पुरे न मावे साहे गया पछताए। अंधा किसनो बुक सुनावे खसमे मूल न भावे। अक्षो प्रीत करे अक्सिद्धा अकबाली बैखाए। खसमे पावे ओहो चंगा जे करे खुदाए खुदाए। नानक दुनिया चार दिहाड़े सुख की तै दुख होई। गल्ला वाले हैं कनेरे छड ना सकते कोई। मक्खी मिठे मरना जिन तू रखे तिन नेड़ ना आवे। तिन पौ सागर तरना पौड़ी अगम अगोचर तू तनी। सच्चा अलख अपार तू दाता सब मंगते टिको देवन हार। जिन्नी सेविया तिन्नी सुख पाया गुरमति विचार। इक नानो तुद एवे पांगा माया नाल प्यार। गुर के शब्द सलाहिए अंतर प्रेम प्यार। विन प्रीति पगत न होई विन सतगुर ना लगे प्यार। तू प्रभ सब तुद सेव दे इक ताड़ी करे पुकार। जेहे दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार। श्लोक महला पहला। राती काल कटे दिन काल छिजे काया होए पराल। वर्तन वर्त्या सर्व जंजाल पुलिया चुप गया तपताल। अंधा चकचक पया चेर पिछे रोवे लिया में फेर। बिन बूझे किस सूझे नाही मोया।

मूरख पुख न जाए, दूजे सबको लग विगुता, बिन सतगुरु बूझ न पाए, सतगुरु सेवे सो सुख पाए, जिसनो कृपा करे रजाए। श्लोक महला पहला, शर्म करम दोए नानका, जे तन पल्ले पाए, सो तन मित्र न कांडी है, जित सिर चोटा खाए। जिनके पल्ले तन वसे, तिनका नाव फकीर, जिनके हृदय तू वसे, ते नर गुणी गहीर। महला पहला।

गया जानिए, कौजल तारण हार शब्द पछानिए, चोर जार जुआर पीड़े खानिए, निंदक लाए तबार मिले हरवानिए, गुरमुख सत समाए सो दरगे जानिए। श्लोक महला दूजा, नाव फकीर है पातशाहो, मूर्ख पंडित नाओ, अंधे का नाव पारखू एवं करे गुआओ, इल्लत का नाव चौधरी पूरी पूरे थाओ, नानक गुरमुख जानिए कल का एहो न्याओ। महला पहला, हरना बाजा कै सिकदारा, एना पर्याना।

पौड़ी आप उपाय मेदनी आप देकर बासार कै दिन परम ना कटी है नाम ना लगे प्यार सतगुर ते पौ उपजे।

है मन भाया पाल चलाए बन कोई ना रखसी जर जरवाना कन चरिया नथसी सत गुर बोत बेर सच्चा रखसी अगन पखे प्रहार अंदिन पक्षी फासा चुगे चोग हुक्मी छुटसी करता करे सोहोग कूड़ निखुटसी। श्लोक महला पहला।

कालकुलाल ब्रह्मा चतुर्मुख दावणा जिन विश्व संसार राचीले जा कह कर ईश्वर बावला जगत गुरु तत्सारसा ज्ञान पाखीले पाप पुण्य जा कह दांगिया।

सारंग रहाओ सुरसरी सलल कृत बारुणी रे संत जन तर्क नहीं पानंग सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनंग तर तार अपवित्र।

नितै बनारसी आस पासा अब बिक्र प्रधान ते करे दंडौत तेरे नाम शरणाए रविदास दासा मल्हार हर जपत तेऊ जना पद्म कवलास पत पास समतुल नहीं।

आपयो कहो रविदास पयो जब लेखो जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो। राग का नला चौक दे महल।

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। मेरा मन साध जना मिल हरिया, हौ बल बल बल बल साध जना को मिल संगत पार उतरिया रहा। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, हम साध जना पग परिया, तन तन साध जिन हर प्रभ जानिया, मिल साधु पत उधरिया। मनुआ चले चले बहु बहु विद, मिल साधु वस गत करिया, जो जल तंत पसारे बगत।

किल बिख दैन पए किन अंतर, टूट गए माया के फास। क्या हम किर्म क्या कर्म कमावे, मूरख मुग्ध

जिन उतारियो हर रस कृसाक, हर के संत मिले हर मिलिया, जैसे गऊ देख बछराक, हर के संत जना में हर हर, ते जन उत्तम जनक जनाक, तिन हर हृदय बास बसानी, छूट गई मुस्की मुस्काक, तुमरे जन तुम ही प्रभ किए, हर राख ले हो आपन अपनाक, जन नानक के सखा हर भाई, मात पिता बंदप हर साक, कानड़ा महला चौथा, मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत, हर हर वक्त माया गड़वेड़ी, गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत, रहाओ मिथ्या परम परम।

जय राम रविया कट अंतर। अखिर राम रविया रंग प्रीत, हर के संत संत जननी के, जिन मिलिया मन रंग रंगीत। हर रंग लहे ना उतरे कबहू, हर हर जाए मिले हर प्रीत। हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत। हर हर नाम दियो मुख औखद, जन नानक पतित पुनीत। कानड़ा महला चौथा, जप मन राम नाम जगन्नाथ। कूमन केर परे बिख बिखिया, सतगुर काढ़ लिए दे हाथ। रहाओ स्वामी अभय निरंजन नरहर, तुम राख ले हो हम पापी पाथ। काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते, काष्ट लो तरे संग साथ। तुम वड पुरख बड अगम अगोचर, हम टूट रहे पाई नहीं हाथ। तू परे परे अपरंपर स्वामी, तू आपन जाने आप जगन्नाथ। अदृष्ट अगोचर नाम ते आए, सत्संगत मिल साधु पाथ। हर हर कथा सुनी मिल संगत, हर हर जपियो अकथ कथकात। हमरे प्रभ जगदीश गुसाई, हम राख ले हो जगन्नाथ। जन नानक दास दास दासन को, प्रभ करो कृपा।

गुण गावे गुरमत हो बलबले हो बलबले जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल कानड़ा महला चौथा हर गुण गावो जगदीश एका जी की चै लख बीस जप हर हर शब्द जपीस हर हो किरपीस राव हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा हर जप जपे जप जापो जगदीश।

राम जपैते उत्तम तिन को हो कुमकुमे कुमकुम जीस हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे सो करें जे तुद पावीस जन नानक अमृत पिया गुरमती तन तन तन तन तन गुरु साबीस कानड़ा महला चौथा पज रामो मन राम जिस रूप नारेख वडाम सत संगत मिल पज राम बड हो पाग मथाम रहाओ जित गृह मंदर हर होत जास तित कर अनदो अनद पज राम राम राम राम नाम गुण गावो हर प्रीतम उपदेश गुरु गुर सतगुरा सुख होत हर हरे हर हरे हरे तज राम राम राम सब शिष्ट तार हर तुम कृपा।

महला चौथा सतगुर चाटो पग चाट जित मिल हर पादर बाट पग हर रस रस हर गाट हर हो लिखे लिलाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्तार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर पेख न पाइए हर ब्रह्म जोग हर पाइए सत संगति उपदेश गुरु गुरु संत जना खोल खोल कर

कटे काट कटे काट हर काट कानड़ा मेला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगा दो मत गुरमत हर प्रभ ला दो तुर हो लिखे लीला दो रहाओ बिख माया संत बहुचित है विकार सुख पाइए हर पज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधो ज्यो छोए पारस मनहूर भय कंचन त्यो पतित जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधा दो ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता त्यो पापी संग तरे साध साध संगति गुर सतगुरु गुर साधो चार बरन चार

साधु सुख पावे जप हर हर नाम निदान। उस्तत करें प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुरु सतगुरु भगवान। जिनके हृदय तू स्वामी ते सुख फल पावे ते तरे पव सिंध ते भगत हर जान। तिन सेवा हम लाए हरे हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान। कानड़ा महला।

जा को सतगुर अपना राखे, सो जन हर रस रसना चाखे, कहो नानक गुर कीनी माया, हालत पलत मुख उजल भया, कानड़ा महला पन्नवा, आरादो तुझे स्वामी अपने, उठत बैठत सोवत जागत, सास सास सास हर जपने।

अनेक बार कर बंदन संतन हुआ चरण गोविंद जी के बसना रहाओ। अनेक पाप कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर ध्यावो। कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत में मन पर बोदा। कृष्ण ना बूजी बहु रंग माया नाम लेत सर्व सुख पाया। पार ब्रह्म जब पै दयाल सहु नानक कौ।

अनेक स्वांग का छे पेख तारी, जैसो सा तैसो दृष्टारी, कहन कहावन सगल जंजार, नानक दास सच करनी सार, कानड़ा महला पंजवा, तेरो जन हर जत सुनत उमायो, रहाओ मने प्रगास पेख प्रभ की शोभा, जत कत पेखो आयो, सब ते परे परे ते ऊंचा, गहर गंभीर अथायो, ओत पोत मिलियो भगतन को, जन स्यो परदा लायो, गुर प्रसाद गावे गुण नानक, सहज समाज समायो, कानड़ा महला पंजवा, संतन पह आप उदाहरण आयो, रहाओ दर्शन पेटत होत पुनीता, हर हर मंत्र दृढ़ायो, कांटे रोग पे मन निर्मल।

नानक लिप्त नाम आयो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पर आई जब ते साथ संगत मोय पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो।

तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ, तुमरी आस परोसा तुमरा, तुमरा नाम हृदय ले धरना, तुमरो बल तुम संग सुहेले, जो जो कहो सोई सोई करना, तुमरी दया मया सुख पावो, हो कृपाल सा पौ जल तरना, अबे दान नाम हर पायो, सिर डारियो नानक संत चरना। कानड़ा महला पन्यवा, साध सरन चरण चित लाया।

सुख पाया तृष्णा सब बुझी है, सांस पाई गुण गाया बिन बूझे पशु की न्याई, प्रम मोहे व्याप्यो माया साध संग जम जेवरी काटी, नानक सहज समाया कानड़ा महला पंजवा, हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख शांत मूरत, सिमर सिमर नित त्याय रहाओ सगल आस होत पूरा।

सतगुरु प्रसाद। कतिय संत संग प्रभ ज्ञान, पूरन परम ज्योत परमेश्वर, सिमरत पाये मान राव।

उदरे हर सिमरत नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निज पतित उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दृढ़ायो कानड़ा महला पंजवा तन ओ प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूरन बड़ पागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी कोर परम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाओ अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूरन रतनागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्तक आन तरयो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर।

नारायण नरपत नमस्कार है। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहितार है रहाओ। कवन कवन कवन गुण कहिए, अंत नहीं कछ पारे। लाख लाख लाख कहीं कोरे, को है ऐसो विचारे। विषम विषम विषम ही भैये, लाल गुलाल रंगारे। कहो नानक संतन रस आई है।

ऊंच नीच सब पेक समानो मुख बकनो मन मान रहाओ। कट कट पूर रहे सुख सागर पै पंजन मेरे प्राण मने प्रगास पयो प्रमनास्यो मंत्र दियो गुरकान। करत रहे कर्तज्ञ करुणा में अंतर जामी ज्ञान आठ पहर नानक जस गावे मांगन को हरदान। कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन को कई केत ऐसो जन बिरलो है सेवक।

कहु नानक जन हर हर हर है, कत आवे कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर न जाए, तन मन गलत भय ते संगे, मोहनी मोहे रही मोरी माए रहाओ, जय जय पै कहो बिरसा हो अपनी, तेऊ तेऊ गहे रहे अटकाए, अनिक पाप की एक जाली, ताकि गंठ नहीं छोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए, काटे अज्ञान परम मोह माया।

कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है रहाओ, नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विषम नाम हर तारे, अगम पदार्थ लाल अमोला, पयो प्राप्त गुर चरनारे, कहो नानक प्रभु पय कृपाला, मगन पय ही रे दरसारे, कानड़ा महला पंजवा, साजन मीत स्वामी नेरो, देखत सुनत सबन कै संगे, होरे काज बुरो कै फेरो, रहाओ नाम बिना जे तो लपटायो, कछु नहीं नाही कचेरो, आगे दृष्ट आवत सब प्रगट, इहा मोयो परम अंधेरो, अटक्यो सुत बनता संग माया, देवन हार दतार बिसेरो।

पयो परगास अनद उजियारा तय समाद समायो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक ले लायो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जपती।

संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर पेटत नानक सुख पाया, कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मने सुख पाये, साध जना मिल हर जस गाये।

कोकत कपट खपट खल गर्जत मर्जत मीच अनक बरिया रहाओ अहंग मत अनरत कुमित हित प्रीतम देखत परमत लाख गरिया अनित व्यवहार अचार विधहीनत मम मद मात कोप जरिया करुण कृपाल गोपाल दीन बंद नानक उदर शरण परिया कानड़ा महला पंजवा जी प्राण मान दाता हर बिसरते ही आन रहाओ गोविंद त्याग आन लागे अमृतो डार पूम पागे दिखे रस्यों आस्कत मूड़े काहे सुखमान काम क्रोध लोभ व्याप्यो जन्म ही की खान पतित पावन सरने आयो उदर नानक जान कानड़ा महला पंजवा अविलोको राम को मुखार बिंद खोजत खोजत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाओ चरण कमल हृदय तार उतरिया दुख मंद राज तन परवार मेरे सर्व सो गोविंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद कानड़ा महला पंजवा कर पंजवा इको अंकार।

सा पूजा जे हर पावास माटी की ए पुत्री जोरी क्या ए कर्म कमास प्रभ बा पकड़ जिस मार्ग पावो सो तुद जंत मिलास अवर ओट में कोई न सूजे इक हर की ओट में आस क्या दीन करे अरदास जो सब कट प्रभु ने।

जगत उदाहरण नाम पे तेरे, नवनिद नाम निदान हर केरे, हर रंग रंग रंग अनुपेरे, काहे रे मन मोहे मगनेरे, नैनो देख साध दर तेरे, सो पावे जिस लिखत लिले रे, रहाओ सेवो साध संत चरने रे, बाँचो तूर पवित्र करे रे, अरसत मज्जन मैल कटे रे, साफ साफ त्यावो मुख नहीं मोरे, किछ संग न चाले।

बरना साकू एक तुले रे, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, मिल नानक देव जगत गुर के रे। कानड़ा महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन।

मान मोह त्याग छोड़ो तौ नानक हर जियो पेटना। कानड़ा महला पंजवा रंगा रंग रंगन के रंगा कीट हस्त पूरन सब संगा। रहाओ बरत नेम तीरथ सैत गंगा जल हेवत पूख अर नंगा पूजा चार करत मेलंगा चकर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन पेटे बिन सतसंगा हठ निग्रह अतरहत बिटंगा हौ रोग व्यापै चुके न पंगा काम क्रोध अत कृष्ण जरंगा।

जानक मंदर पाठ सेज सकी मोहि नाहे इन स्यों तात मुक्त लाल अनक भोग बिन नाम नानक हात रूखो भोजन पूम सैन।

जो संत वेद कहत पंथ गाखरो मोह मगन अहंकार राव जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सो जन उदरे जिसे उदारो आप बिनस जाए।

मोही पंच दोही उर्ज निकट बत्यो ताकि शरण साधुआ दूत संग निवार रहाओ। कोट जन्म जोन प्रम्यो हार पर्यो द्वार कृपा गोविंद पई मिल्यो नाम आधार दुर्लभ जन्म सफल नानक पव उतार पार। कानड़ा मैला पंजवा कर यारवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद सहज सुभाए आपने आए कछु ना जानो कछु दिखाए प्रभ मिल्यो सुख बाले पोले रहाओ। संजोग मिलाए साध संगाए कथु ना जाए करें बसाए गुण निधान प्रगट्यो ए चोले चरण लुभाए आन सजाए थान सनाए सर्व समाए रसक रसक नानक गुण बोले कानड़ा।

अनेक उकत चतुराई, जतन जतन अनेक उपावरे, तो मिलियो जो कृपाई, प्रभु दयार कृपार कृपा निध, जन नानक संत रे नाई, कानड़ा महला पन्नवा, माई सिमरत राम राम राम।

मृत मृत निकट निकट सदा है। हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड, बिन पजन पजन पजन अहला जन्म गई। कानड़ा अष्टपदिया

राम नाम एक तिल तिल गावे, मन गुरमत नाम समावे गो। नाम सुने नामो मन भावे, नामे ही तृप्तावे गो। कनक कनक पहरे बहु कंगना, कापर पात बनावे गो। नाम बिना सब फीक फिकाने, जन्म मरे फिर आवे गो। माया पटल पटल है भारी, कर कूमन केर कुलावे गो। पाप विकार मनूर सब भारे, विकदुत्तर करे।

अज्ञान लाए सवालिया, गुर ज्ञान लाए जगावे गो। नानक पाणे अपने ज्यो पावे तिवे चलावे गो। कानड़ा महला चौथा, जप मन हर हर नाम तरावे गो।

मिल सतगुरु नाम से आवै गो। जन्म जन्म की हो मैं मल लागी, मिल संगत मन लह जावै गो। ज्यो लोहा तरयो संग कास्ट लग, शब्द गुरु हर पावै गो। संगत संत मिलो सत्संगत, मिल संगत हर रस आवै गो। बिन संगत कर्म करे अभिमानी, कड पानी चीकड़ पावै गो। भगत जना के हर रखवारे, जन हर रस मीठ लगावे गो। खिन खिन नाम दे वड्याई, सतगुरु उपदेश समावे गो। भगत जना को सदा निव रही है।

ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गो जो जो भगत होए सो पूजो परमन परम चुकावे गो जात न जात देख मत परमो।

खरे खरोए बैठ तू उठत मार्ग पंथ त्यावे गो सतगुर बचन बचन है सतगुर पादर मुक्त जनावे गो शासन सास

उब नगर में सबला गुरखिन में मार कडावे गो सत संतोख धर्म आन राखे हर नगर।

सतगुर महापुरुष है पारस, जो लागै सो फल पावै गो। ज्यो गुर उपदेश तरे प्रहलादा, गुर सेवक पैज रखावै गो। सतगुर बचन बचन है नीको, गुर बचनी अमृत पावै गो। ज्यो अमरीक अमरा पद पाए, सतगुर मुख बचन त्यावै गो। सतगुर सरन सरन

हर हर हर हर हर सर सेवे तीन दरगे मान दिवावे गो गुरमत गुरमत गुरमत त्यावे हर गल मिल मेल मिलावे गो गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुर परचय नाम दियावे गो हर हर रूप हर रूपो होवे हर जन को पूज करावे गो साकत नर सतगुरु।

लग संगत नाम त्यावे गो नानक राख राख प्रभ मेरे सत संगत राख समावे गो छक्का पहला।

बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ भाग दर्शन पाए, मिल साधु नित पजय नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवे हर अम्यो पीवे, जन्म मरना पा गए, सत्संग पाये हर से आये, बहुर दुख ना लागे, कर दया दाते पुरख विदाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन पूर बांचे, हर दर सहज।

गोविंद गाये नित ध्याये। परवान सोई आया जप ताप संजम हर हर निरंजन। गोविंद तन संग चाले बिनवंत नानक कर दया दीजै। हर रतन बांधो पाले मंगल चार चोज आनंदा कर कृपा मिले परमा।

सतसंगत सतगुरु तन तनो तन तन तनो जित मिल हर गुण बुलोगिया सब कहो मुखो हर हर हरे हर हर हरे हर बोलत सब पाप लोगिया। श्लोक महला चौथा। हर हर हर हर नाम है गुरमुख पावे कोय हौमे ममता नाप होए दुर्मत कड्डे धोए नानक अमदिन गुण उचरे जिनको तुर लिखिया होए। महला चौथा। हर आपे आप दयाल हर आपे करे सो होए हर आपे आप वरसदा हर जेवड अवरना कोए जो हर प्रभ पावे सो थिए जो हर प्रभ करे सो होए कीमत किने न पाया बेअंत प्रभु हर सोए नानक गुरमुख हर सा लाहिया तन मन शीतल होए पौड़ी। सब जोत तेरी जग जीवना तू कट कट हर रंग रंगना सब त्यावे तुद मेरे प्रीतमा तू सत सत पुरख निरंजना एक दाता सब जगत पिखारिया हर जाते सब मंग मंगना सेवक ठाकर सब तू है गुरमती हर चंग चंगना सब कहो मुखो रिखी केस हरे जित पावे सब फल फलना। श्लोक महला चौथा। हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान जो इच्छे सो फल पाए सी गुर सब दी लगे ध्यान किल विख पाप सब कटी है चुके गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम। महला चौथा। हर हर नाम पर

पौड़ी। तू थाम सनंतर परपूर है करते सब तेरी बनत बनावणी, रंग परंग शिष्ट सब साजी, बहु बहुविध पांच उपावणी, सब तेरी जोत ज्योति विश्वरते गुरमती सुदै लावणी, जिन हो है दयाल तिन सतगुर मेले, मुख गुरमुख हर समझावणी, सब बोलो राम रमो श्री राम रमो, जित दालद दुख भुख सब ले जावणी। श्लोक महला चौथा। हर हर अमृत नाम रस, हर अमृत हर उर्धार, विच संगत हर प्रभु वर्तदा, बुज्जो शब्द विचार, मन हर हर नाम से आया, दिखो मैं कड्डी मार, जिन हर हर नाम ना चेत्यो, तिन जुए जन्म सभार, गुर तुफे हर

पहला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विच कल जुग करनी सार मत गुरु मत कीरत पाई है हर नामा हर उरहार वड पागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर पंडार बिन नामे जे कर्म कमावणे नित हो मैं होए खुआर जल हस्ती मलना वाली है फिर भी फिर पावे चार हर मेलो सतगुरु दया कर मन वसे एकंकार जिन गुरमुख सुन हर मन्या जन नानक तिन जयकार पौड़ी राम नाम वक्त।

सब चवो मुखो जगन्नाथ जगन्नाथ जग जीवनो जित पव जल पार उतारा। श्लोक महला चौथा। हमरी जेबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाहा। हम क्यों कर जपे ए आणिया हर तुम बड अगम अगाहा। हर देव प्रभु मत ऊतमा गुर सत गुर के पग पाहा। सत संगत हर मे

गुरु सतगुरु मेल दयाल। गुरु सेवा हर हम पाया, हर हुआ हर कृपाल। सब आशा मन सा विसरी, मन क्यू का आल जंजाल। गुरु तुठे नाम दृढ़ाया, हम किए शब्द निहाल। जन नानक अकुट तन पाया, हर नामा हर तन माल। पौड़ी हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे, सब ऊपर वडे वडौना। जो त्यावे हर अपरंपर, हर हर हर त्याए हरे ते होना। जो गावे सुने तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना। तुम जैसे हर पुरख जाने, मत गुरमत मुख वड वड भाग वडोना। सब त्यावो आद सते, जुगाद सते, प्रतक सते, सदा सदा सते। जन नानक दास दसोना। श्लोक महला चौथा। हमरे हर जग जीवना, हर जप्यो हर गुरु मंत्र। हर अगम अगोचर अगम हर, हर मिलिया आए अचिंत। हर आपे कट कट वर्तदा, हर आपे आप बेअंत। हर आपे सब रस भोगदा, हर आपे कवला कंत। हर आपे पिखिया पाईदा, सब सिस्त उपाई जी जंत। हर देवो दान दयाल प्रभ, हर मांगे हर जन संत। जन नानक के प्रभ आए मिल, हम गावे हर गुण चंत। महला चौथा। हर प्रभ सज्जन नाम, हर मैं मन तन नाम शरीर। सब आशा गुरमुख पूरिया, जन नानक सुन हर तीर। पौड़ी हर उत्तम हरिया नाम है, हर पुरख निरंजन मौला। जो जप दे हर हर दिन सरात, तिन सेवे चरण नित कौला। नित सार संभाले सब जी जंत, हर वक्त है निकट सब जौला। सो बुझे जिस आप बुझाए सी, जिस सतगुरु पुरख प्रभ कौला। सब गावो गुण गोविंद हरे, गोविंद हरे, गोविंद हरे। गुण गावत गुणी समौला। श्लोक महला चौथा। सुतिया हर प्रभ चेत मन, हर सहज समाज समाए। जन

पंचे शब्द वजे मत गुरमत बड़ पागी अनहद वजिया आनंद मूल राम सब देखिया गुर शब्दी गोविंद गजिया आद जुगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ पजिया हर देवो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब तन कहो गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया। श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर भरे वाहन जिना सतगुरु मन्या जन नानक वड पाग लहन। महला चौथा हर हर नाम असंख हर के गुण कथन न जाहे हर हर अग

हर हर जन कित बिद मिलहि मिलाहि, हर हर जस जपत जपंत जन, एक तिल नहीं कीमत पाए, जन नानक हर अगम प्रभ, हर मेल लहो लड़ लाए पौड़ी, हर अगम अगोचर अगम हर, क्यों कर हर दर्शन पिखा, किस वखर होए सो वरनिए, किस रूप ना रिखा, जिस बुझाए आप बुझाए दे, सोई जन दिखा, सत संगत सत गुर चटसाल है, जिस हर गुण सिखा, तन तन सो रसना तन कर, तन सो पांदा सतगुरु, जित मिल हर लेखा लिखा, श्लोक मैला चौथा, हर हर नाम अमृत है, हर जपिए सतगुरु भाए, हर हर नाम पवित्र है, हर जपत सुनत दुख जाए, हर नाम तिन्नी आराध्या, जिन मस्तक लिखिया तुर पाए, हर दरगे जन

हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए। जिन सुर मस्तक लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए। तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए। नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख ले जाए। पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा। जिना सतगुरु मेरा प्यारा देखिया तिनको मिलिया मेरा सतगुरु। जिनको तुर मस्तक लेखिया हर अगम दियाया गुरमति। तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया गुर बचन से आया जिना अगम हर। ते ठाकुर सेवक रल एकिया सब कहो मुखो नर नर हरे। नर नर हरे नर नर हरे हर लाहा हर भगत विशेखिया। श्लोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे। रम रामो राम रमीत कट कट आत्म राम है प्रभ खेल कियो रंग रीत। हर निकट वसे जग जीवना परगास कियो गुरमीत। हर स्वामी हर प्रभ तिन मिले जिन लिखिया तुर हर प्रीत। जन नानक नाम ते आया गुर बचन जप्यो मन चीत। महला चौथा हर प्रभ सज्जन लोड़ लो पाग वसै वड पाग। गुर पूरे देखा लिया नानक हर लिवलाग। पौड़ी तन तन सुहावी सफल कड़ी।

मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजाने, हर मेल दिखाए आप हर, गुरबचनी नाम समाने, तिन विट्टो नानक वारिया, जो जप दे हर निर्वाणी, श्लोक महला चौथा, हर प्रभ रत्ते लोयना, ज्ञान अंजन गुरुदे, मैं प्रभ सज्जन पाया, जन नानक सहज मिले।

पौड़ी। तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे वसगत कीता, एक मनमुख कर हारायन एक नामेल गुरु तिना जीता। हर उत्तम हर प्रभ नाम।

कट कट अंतर रव रहा जप्यो जन कोई सगल जपो गोपाल गुण प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा गुरुमुख मिले से सज्जना हर प्रभ पाया रंग जन नानक नाम सलाए तू लुड लुड दर गए।

ऐसो राम राय अंतर जामी, जैसे दर्पण माहे बदन परवानी रहाओ। बसे कटाकट लीप न छीपे, बंधन मुक्ता जात न दीसे, पानी माहे देख मुख जैसा, नामे को स्वामी बीठल ऐसा।

रामा राम राम मैं अंत न पाया, हम बार कृत पारे तुमरे, तू बड़ पुरुष पिता मेरा माया रहाओ। हर के नाम असंख्य अगम है, अगम अगम हर राय।

जन को कृपा करो मधुसूदन, हर देवो नाम जपाया मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरुमुख पाया कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहा, गुर के पग सिमरो दिन राति मन हर हर हर बसिया, हर हर हर कीरत जग सारी सस चंदन जग ससिया, हर जन हर हर हर निवलाई सब साकत खोज पया, ज्यो किरत संजोग चलियो नर निंदक पग नागन छो जलिया, जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया, कहां भया दैत करी बखीली सब कर कर चर परिया, जे तेजी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया, हर जन हर हर हर प्रभ राखे जन नानक शरण पया कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुर उपदेश हर नाम ते आयो, सब किल बिख दुख लाथे रहाओ, रसना एक जस दाए न साके बहु की जय बहु रसनते, बार बार खिन पल सब गावे गुण कह ना सके प्रभु।

कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन को क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्प आरापो, कोई मिले प्रभु मिलते, हर के गुण बहुत बहुत बहुत होबा, हम कुछ कर कर बरनते, हमरी मत वसगत प्रभु सुमरे, जन नानक के प्रभु समरथे, कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप हर गुण अतत सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई, रहाओ, सो हर हर नाम से आवे हर जन, जिस बद भाग मथई, जह दरगे प्रभ लेखा मांगे, तह छुटे नाम से आए थई, हमरे दोख बहुत जन्म जन्म के, दुखों में मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल नावाए, सब किल बिख पाप गथई, जन के रिद अंतर प्रभ स्वामी, जन हर हर नाम पज थई, जह अंति अवसर आए बनत है, तह राखे नाम साथई, जन तेरा जप गावे हर हर, प्रभ हर जपियो जगन्नाथ थई, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पात्र रख बुढ़ थई, कल्याण महला चौथा, हमरी चितवनी हर प्रभ जाने, और कोई निंद करे हर जन।

हर सेवा से काल जोए न साके, चरनी आए पवे हर जाने। जाको राख ले मेरा स्वामी, ताको सुमत दे पहकाने। ताको कोई अपर न साके, जाकी भगत मेरा प्रभु माने। हर के चोज विदान देख जन, जो खोटा खरा इक निमक पछाने। ताते जन को आनंद भया है, रिद शुद्ध मिले खोटे पछताने। तुम हर दासे समरथ स्वामी, एक मांगो तुझ पासो हर दाने। जन नानक को हर कृपा कर दीजे, सद बसे हृदय मोहे हर चराने।

मांगर मांगे पावनिया सो पाये सफल सफल सफल दर्शरे परस परस गुण गाये नानक तत् तत् सो मिलिये हीर हीर विदाये कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा सद नव तन मन रंगी शोभा रहाओ ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा भगत दान जस मंगी योग ज्ञान ध्यान सेख ना गए सगल जपे तरंगी कहो नानक संतन बलिहार है जो प्रभु के सत्संगी कल्याण महला।

योग जुगत ज्ञान पुगत सुरत शब्द तट बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली। कल्याण महला पंजवा कौन विद ताकी कहां करो तर्प त्यान ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे जरो रहाओ। विष्ण महेश सिद मुन इंदिरा कै दर शरण परो काहू पह राज काहू पह सुरगा कोट मदे मुक्त कहो कहो नानक नाम रस पाई है साधु चरण गहो। कल्याण महला पंजवा प्राण पथ दयाल पुरख प्रभ सखे गर्भ जोन कल काल जाल दुख विनाशन हर रखे।

सुरत मत चतुराई शोभा रूप रंग तन मान सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम कल्याण कल्याण महला पंजवा हर चरण सरन कल्याण करन प्रभ नाम पतित पावनो रहाओ साध संग जपनि संग जम काल तिसना खावनो मुक्त जुगत अनेक सुख।

हम निर्गुणी मनूर अत सीखे मेरे सतगुर पारस की जय रहाओ। सुरग मुक्त बैकुंठ सब बांछे नित आशा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगे मिल दर्शन तृप्त मन दी जय। माया मोह सबल है भारी मोह कालक दाग लगी जय। मेरे ठाकुर के

सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवि जय, अंतर रतन जवे हर मानक, गुर कृपा ते ली जय, मेरा ठाकुर बड़ा बड़ा है।

जय राम नाम अनुग्रह बहु किया गुरु साधु पुरख मिली जय गुण राम नाम विस्तीरन किए हर सगल पवन जस जी जय साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकी जय जो जल मीन जलन जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरी जय माँ अपाग अपाग है जिनके तिन साधु तूर न पी जाए तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे दंड धर्म राय का दी जाए सब तीर्थ बरत जग पुन किए हिवे गाल गाल तन छीजे अतुल्ला तोल राम नाम है गुरमत को पूजे ना तोल तुली जाए तब गुण ब्रह्म ब्रह्म तू

मन तम अर्प करो सब आगे रस गुरमत ज्ञान दृढ़ी जय रहा ब्रह्म नाम गुण साफ तरोवर नित चुन चुन पूज करी जय आत्म देव देव है आत्म रस लागे पूज करी जय विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल।

जो पीप पलास खाए ली जाए। सब नर में प्राणी उत्तम होवे, राम नाम में बास बसी जाए। निर्मल निर्मल कर्म बहुकीने, नित साखा हरी जड़ी जाए। परम फूल फल गुर ज्ञान दृढ़ाया, बेकार

नाम बिना नक से नर देखो तिन पस पस नाक वडी जाए साकत नर अंकारी कही है बिन नाम त्रिग जीवी जाए जब लग सांस सांस मन अंतर तप बेगल शरण करी जाए नानक कृपा कृपा कर धारो मैं साधु चरण पखी जाए कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण धुवी जाए किल बिखो दहन होए खिन अंतर मेरे ठाकुर कृपा की जय रहाओ मंगत जन दीन करे दर ठाडे अत तरसन को दान दी जय त्राहे त्राहे शरण प्रभ आए मोको गुरमत नाम दृढ़ी जय काम क्रोध नगर में सबला नित उठ उठ जूज करी जय अंगीकार करो रख ले वो गुरपुरा कार्ड कटी जाए

ज्यों सूरज किरण गव्या सर्ब ठाई, सब कट कट राम रवि जय। साधु साध मिले रस पावे, तप निज पर बैठिया पी जय। जन को प्रीत लगी गुर सेती, ज्यों चकवी देख सूरी जय। निरखत निरखत रैन सब निरखी, मुख काढ़े अमृत पी जय। सापत स्वान कहिए बहु लोभी, बहु दुर्मत मैल भरी जय। आपन स्वाय करें बहु बाता, तिना का विसाह क्या की जय। साधु साध शरण मिल संगत, जित हर अस्ताड़ कभी जय। पर उपकार बोले बहु गुनिया, मुख संत भगत हर दी जय। तू अगम दयाल दया पत दाता, सब दया तार रख ली जय। सर्व जी जग जीवन एको, नानक प्रतपाल करी जय। कल्याण महला चौथा, रामा हम दासन दास करी जय। जब लग सांस होए मन अंतर, साधु तूर कवि जय रहाओ। शंकर नारद शेख नाग मुन, तूर साधु की लोची जय। पवन पवन पवित्र हो है सब, जय साधु चरण धरी जय। ताज लाज अहंकार सब तजिए, मिल साधु संग रही जय। कर्म राय की कान चुकावे, दिख दुबदा काड कडी जय। परम सुके बहु उबसुक कही है, मिल साधु संग हरी जय। काते बिलम पल टिल न की जय, जय साधु चरण लगी जय। राम नाम कीर्तन रतन वथ, हर साधु पास रखी जय। जो बचन गुर सत्संग।

नित लोड़ो ता सतगुर शरण पवि जय जेवड भाग होए अपनी का ता गुरमत नाम दृढ़ी जय सब माया मोह बिकुन जग तरिए सहजे हर रस पी जय माया माया के जो अधिकारी विच माया पचै तची जय अज्ञान अंधेर महा पंच बिखरा अहंकार पार लग ली जय नानक राम राम राम राम राम राम ते गप की जय सतगुरु मिले ता नाम दृढ़ाए राम नाम रले मिली जय छक्का पहला।

अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद राज करवाती विपास महला पहला चौक दे कर पहला नाय

पच कब होना होए, अवर सियाण तो सगली पाज, जय बक्से तै पूरा काज रहाओ। नौ तेरा ताण नौ दीवान, नौ तेरा लश्कर नौ सुल्तान, नाए तेरे मान महत परवान, तेरी नदरी कर्म पवे निशान, नाए तेरे सहज नाए सालाह, नाए तेरा अमृत बिख उठ जाए, नाए तेरे सब सुख वसे मन आए, बिन नावे बांधी जमपुर जाए, नारी देरी कर बरदेश, मन किया खुशिया की चैवेश, जा सदे ता तिल ना पाए, नानक कूड़ कूड़ो हो जाए। प्रभाती महला पहला, तेरा नाम रतन कर्म चानन, सुर्ख तिथे लोए अंधेर अंधी वापरे, सगल ली जय खोए, यो संसार सगल विकार, तेरा नाम दारू अवर नास्त, करणहार अपार रहाओ। पाताल पुरिया एक पार होवे लाख करोड़, तेरे लाल कीमत तापवे जा सिरे होवे होर, दुखा ते सुख उपजे सुखी होवे दुख, जित मुख तू सालाई है सित मुख कैसी भूख, नानक मूर्ख एक तू हवर पला सहसार, जित तन नाम न उपजे से तन होए कुवार। प्रभाती महला पहला, जय कारण वेद ब्रह्मे उचरे संकर छोड़ी माया, जय कारण सिद्ध तय उदासी देवी मर्म न पाया, बाबा मन साचा मुख साचा कही है करिए साचा होई, दुश्मन दुख न आवे नेड़े हर मत पावे कोई, रहाओ अगन बिंब पवने की बाणी, तीन नाम के दासा ते तस्कर जो नाम ना लेवे वासे कोट पंचासा, जे को एक करे चंगियाई मन चित बहुत बसावे, एते गुण एसिया चंगियाईया दे न पछोतावे, तुद सलाहन तिन तन पल्ले नानक का तन सोई, जे को जियो कहे ओना को जम की तलब न होई। प्रभाती महला पहला, जा के रूप नाही जात नाही नाही मुखमासा, सतगुर मिले निरंजन पाया तेरे नाम है निवासा, औदू सहजे तत विचार जाते फिर ना आवो सहसार रहाओ। जाके कर्म नाही धर्म नाही नाही सुचमाला, शिव ज्योत कन्नो बुध पाई सतगुरु रखवाला, जाके बर्त नाही नेम नाही नाही बकबाई, गत अवगत की चिंत नाही सतगुरु फुरमाई, जाके आस नाही निराश नाही चित सुरत समझाई, संत को परम संत मिलिया नानका बुद्ध पाई। प्रभाती महला पहला, कांका कहया दर परवान, दिख अमृत दो संकर जान, क्या कही है सर्वे रहे समाये जो किछ वर्त।

आया सो जन जान साची दरगे पावे मान कहना सुनना अकथ पर जाए कफनी बदनी नानक जल जाए प्रभाती महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अष्ट तीर्थ संग गहे गुरु उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लह गुरु समान तीरथ नहीं कोए सर संतोष।

पुरा नावण पशु करे तो देव करे रत्ता सच नाम तल ही अल सो गुर परमल कही है जासी वास बनास पत कौर है पास चरण लिव रही है गुरमुख जी प्राण उपजे गुरमुख शिव कर जाई है गुरमुख नानक सच समाई है गुरमुख निज पद पाई है प्रभासी मैला पहला गुर कर सादी विद्या विचार है पर कर पावे मान आपा मध्य आप पर गास्या पाया अमृत नाम करता तू मेरा जजमान एक दखना हो पै पै मांगो देहे अपना नाम रहाओ पंच तस्कर कामत राखे चूका मन अभिमान दिष्ट विकारी दुर्मत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान जत सत चावल दया कनक कर प्राप्त पाती धान दूध कर्म संतोष कियो कर ऐसा मांगो दान खिमा तीरज कर गऊ लवेरी सहजे बछड़ा खीर पिए सिफत कर्म का कपड़ा मांगो हर गुण नानक रवत रहे प्रभाती महला पहला आवत किने आवाख्या जावत क्यों राख्या जाए जिससे हुआ सोई पर जाने

एक सखनी होर फेर परियत है, तैसो ही एव खेल खत्म का, ज्यो उसकी वड्याई सुरती के मार्ग चल के उल्टी नजर परगासी।

इहो रहा निर्वाण जिसते होआ सोई कर मान्या नानक गिरही उदासी सो करवाण प्रभाती महला पहला दिष्ट बिकारी बंधन बांधे हों तिसके बल जाई पाप पुन की सार न जाने फूला फिरे अजाई बोलो सच नाम करतार सुन बहुर ना आ

कुमारी त्रिपुत तरंग तत बिचारी अकथो कथो क्या मैं जोर सगत करी कराहे मोर अंतर वसे चूके मैं मोर किस से भी दूजा नहीं होर गुर का शब्द महारस मीठा ऐसा अमृत अंतर दीठा जिन चाख्या पूरा पद होए नानक प्राप्यो तन सुख होए परवाती महला पहला अंतर देख शब्द मन मान्या और न रंगन हारा एनस जिया देख संभाले तिस ही की सरकारा मेरा प्रभ रांग कणो अत रूड़ो दीन दयाल प्रीतम मनमोहन अत रस लाल सगूड़ो रहाओ ऊपर कूप गगन तनिहारी अमृत पीवन हारा जिसकी रचना सो विद जाने गुरमुख ज्ञान विचारा पसरी किरण रस कमल विगासे सस्कर सूर समाया काल बिंदु से मन सामन मारी गुरु प्रसाद प्रग पाया अति रस रंग चलू ले राती दूजा रंग ना कोई नानक रसन रसाए राते रब रहा प्रभ सोई परवाती महला पहला बारे में रावल खप जावे चहो छह में सन्यासी योगी का पड़िया सिर खूथे बिन शब्द गल फासी शब्द रते पूरे बैरागी औ हथ हस्त में पीछिया जाची।

मानस विछड़ दुख पाए, शब्द मिले से सूचा चारी, साची दरगह माने, हम दिन नाम रतन लिव लागे, जुग जुग साच समाने, सगले कर्म कर्म सुख संजम, जप तप तीरथ शब्द वसे, नानक सतगुरु मिले मिलाया, दुख पराशत काल नसे, करवाती महला पहला, संता की रेण साध जन संगत, हर की रत कर तारी, कहां करे बपुरा जन बरते, गुरुमुख हृदय मुरारी, जल जाओ जीवन नाम बिना, हर जप जाप जपो जप माली, गुरुमुख आवे साध मना, रहाओ, गुरु उपदेश साथ सुख जाको, क्या किस उपमा कही है, लाल जवेहर रत्न पदार्थ, खोजत गुरुमुख लही है, चीने ज्ञान त्यान तम साचो, एक शब्द लिवलावे, निरालंब निरहार नहीं केवल, निरपौता लीलावे, सायर सपत करे जल निर्मल, उल्टी नाम चरावे, बाहर जातो ठाक रहावे, गुरमुख से समावे, सो गिर ही सो दास उदासी, जिन गुरमुख आत पछानिया, नानक कहे अवर नहीं दूजा, सात शब्द मन मानिया, राज करवाती महला तीजा, चौपदे इको अंकार, सतगुर प्रसाद, गुरुमुख बिरला कोई बूझे, सब दे रहा।

माय नाम रते सदा सुख पावे साथ रहे लिवलाई। हर हर नाम जपो जन भाई गुर प्रसाद मन अस्थिर होवे। हम दिन हर रस रहा अघाई रहा हम दिन पगत करो दिन राती इस जुग का लोहा भाई। सदा जन निर्मल मैल न लागे सच नाम सितलाई। सुख सिगार सतगुरु दिखाया नाम वड्डी वड्याई। अकुट पंडार करे कदे तोट ना आवे सदा हर सेवो भाई। आपे करता जिसनो देवे तिस बसे मन आई। नानक नाम ते आए सदा तू सतगुरु दिया दिखाई। प्रभाती महला तीजा निर्गुणी आरे को बख्श ले स्वामी। आपे लेहो मिलाई तू बेअंत तेरा अंत न पाया सब दे देहो बुझाई। हर जियो तुद विट्टो बल जाई तन मन अर्पी तुद आगे राखो सदा रहा शरणाई। रहाओ अपने पाने विच सदा रख स्वामी हर नामो दे वड्याई। पूरे गुरते पाना जापे हम दिन सहज समाई। तेरे पाने भगत जे तुद भावे आपे बख्श मिलाई। तेरे पाने सदा सुख पाया गुर कृष्णा अग्न बुझाई। जो तू करे सो होवे करते अवर न करना जाई। नानक नावे जेवड अवर न दाता पूरे गुर ते पाई। प्रभाती महला तीजा गुरमुख हर साल आया जिन्ना तीन साल आहे हर जाता। विचों परम गया है दूजा गुर कै शब्द पछाता। हर जियो तू मेरा इक सोई तुद जपी तुद ऐसा लाही। गत मत तुझते होई रहाओ गुरमुख सालान से साध पाएन।

है ना सो हुआ न होग। हर जियो सना तेरी सरनाई, ज्यो पावे त्यो राखो मेरे स्वामी, ए तेरी वड्याई रहाओ। जो तेरी सरनाई हर जियो, तिनकी करे प्रतपाल, आप कृपा कर राखो हर जियो, कोई ना सके जमकाल। तेरी सरनाई सच्ची हर जियो, ना हो कटे न जाए, जो हर छोड़ दूजे पाए लागे, ओ जम्मे ते मर जाए। जो तेरी सरनाई हर जियो, तिना दुख पूख किछ नाए, नानक नाम सलाए सदा तू, सच्चे शब्द समाए। परवाती महला तीजा, गुरमुख हर जियो सदा ते आओ, जब लग जी प्राण। गुर शब्दी मन निर्मल होआ, चूका मन अभिमान। सफल जन्म तिस प्राणी केरा, हर के नाम समान। मेरे मन गुर की सिख सुनी जाए, हर का नाम सदा सुख दाता।

गुर के शब्द कमल पर गासिया सौ में दुर्मत खोई सब नाम एक को सच वरते विरला बूझे कोई गुरमति मन निर्मल हुआ अमृत तत्व खाने हर का नाम सदा मन वस्या विच मन ही मन माने सद बलिहारी गुर अपनी विटो जित आत्म राम पछाने मानस जन्म सतगुरु न सेविया बिरथा जन्म गवाया नजर करे ता सतगुरु मेले सहजे सहज समाया नानक नाम मिले वडियाई पूरे भाग से आया प्रभाती महला तीजा आपे पांत बनाए बहुरंगी शिष्ट उपाय प्रभ खेल किया कर कर वेख करे कराए सर्व जिया नो रिजक दिया कली काल में रव्या राम कट कट पूर रहा प्रभे को गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहा गुप्ता नाम वर्त विच कल जुग कट कट हर पर पूर रहा नाम रतन तिना हृदय प्रगटिया जो गुर शरणाई पग पया इंद्री पंच पंचे वस आने खिमा संतोष गुरमत पावे सो तन तन हर जनवड पूरा जो कह बैराग हर गुण गावे गुर ते मोह फेरे जे कोई गुर का कहया ना चित धरे कर आचार बहु संतोष संचय जो किछ करे सो नरक परे एक को शब्द एक को प्रभु वर्ते सब एक कस्ते उत्पत्तल है मानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाए रले प्रभाती महला तीजा मेरे मन गुर अपना सालाए पूरा पाग हो गए मुख मस्तक सदा हर के गुण गाए रहा अमृत नाम भोजन हर दे ओत मदे कोई विरला ले जिसनो अपनी नजर करे गुर के चरण मन माए वसाए दुख अनेरा अंदरों जाए आपे फाचा ले मिलाए गुर की बाणी सो लाए प्यार एथे ओथे एव आधार आपे देवे सृजनहार सच्चा ननाए अपना भाणा सोई तगत सुगड़ सुजाना नानक तिसके सब कुर्बाना प्रभाती महला चौथा विपास एक ओंकार सतगुरु प्रसाद रसक रसक गुण गावे गुरमत लिव उन मन नाम लगान अमृत रस पिया गुर शब्दी हम नाम विटो कुर्बान हमरे जग जीवन हर प्राण हर उत्तम रिद अंतर भायो गुरमंत दियो हर कान रहाओ आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर नाम बखान कित विद क्यों पाई है प्रभ अपना मोको करो उपदेश हर दान सत संगत में हर हर वस्या मिल संगत हर गुण जान वड्डे पाग सत संगत पाई गुर सत गुर परस भगवान गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान जन नानक को गुर कृपा भारी हर नाम दियो खिन दान प्रभाती महला चौथा उगवे सूर गुरमुखर बोले सब रैन संभाले हर गाल हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम करें प्रभु हर पाल मेरा मन साधु तूर गवाल हर हर नाम दृढ़ायो गुरमीठा गुर पद कारे हम बाल रहाओ साकत को दिन रैन अंधारी मोय फाते माया जाल खिन पल हर प्रभ हृदय नवस्यो ऋण बादे बहु विदबाल सत्संगत मिल मत बुध पाई हों छूटे ममता जाल हर नामा हर मीठ लगाना गुर की ये शब्द निहाल हम बारिक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल
दिख पौ जल डुब दे काड लियो प्रभ गुरु नानक बाल गोपाल। प्रभाती महला चौथा। एक खिन हर प्रभ कृपा धारी गुण गाए रस प्रतीक दावत सुनत दौ पे मुक्ते जिना गुरमुख खिन हर पीक मेरे मन हर हर राम नाम रसतीक गुरमुख नाम शीतल जल पाया हर हर नाम पिया रस जीक राव जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिना मस्तक ऊजल टीक हर जन शोभा सब जग ऊपर ज्यो विच उडवा सस पीक जिन हर हृदय नाम नवस्यो तिन सब कारज फीक जैसे सिगार करे देह मानुख नाम बिना नकटे नकीक कट कट रुनैया रमत राम राय सब वर्ते सब मैं एक जन नानक को हर कृपा धारी गुरु बचन ते आयो करी नीक। प्रभाती महला चौथा। अगम दयाल कृपा प्रभधारी मुख हर हर नाम हम कहे पतित पावन हर नाम ध्यायो सब किल बिख पाप लहे जप मन राम नाम रव रहे दीन दयाल दुख पंजन गायो गुरमत नाम सदार्थ लहे रहाओ पाया नगर नगर हर बसयो मत गुरमत हर हर सहे शरीर सरोवर नाम हर प्रगट्यो कर मंदर हर प्रभ लहे जो नर परम परम उद्याने ते साकत मूड मुहे जो मृग ना भी बसे बास बसना त्रम त्रम्यो चार गहे तुम वड अगम अगाध बोध प्रभ मत देवो हर प्रभ लहे जन नानक को गुर हाथ सिर करयो हर राम नाम रव रहे। प्रभाती महला चौथा। मन लागी प्रीत राम नाम हर हर जप्यो हर प्रभ वडपा सतगुरु बचन सुखाने हीरे हर तारी हर प्रभ कृपा मेरे मन पज राम नाम हर निमखफा हर हर दान दियो गुरपूरे हर नामा मन तन बसा रहाओ काया नगर वस्यो कर मंदर जप शोभा गुरमुख करपफा हलत पलत जन पै सुहेले मुख उजल गुरमुख तरफा अनपौ हर हर हर लिव लागी हर उर्धार्यो गुर निमखफा कोट कोट के दोख सब जन के हर दूर किए एक पलफा तुमरे जन तुम ही ते जाने तब जान्यो जन से मुखा हर हर आप करयो हर जन में जन नानक हर प्रभ इकफा। प्रभाती महला चौथा। गुर सत गुर नाम दृढ़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जपबा तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा दिख दुख दे बां दे कडबा जप मन राम नाम अर धाबा उपजंप उपाय न पाये कतहु गुरपूरे हर प्रभ लाबा रहाओ राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरमत रसदा लो मनूर कंचन मिल संगत हर उर्धार्यो गुर हरवा हौ मैं बिख्या नित लोग लुवाने पुत कलत मोह लुबा तिन पग संत न सेवे कबहु ते मन मुख पूंगर परदा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम करे हार तुम सरनवा ज्यो जानो त्यों राखो स्वामी जन नानक दास तुम नवा। सत्ता पहला। प्रभाती विपास पड़ताल महला चौथा। इको अंकार सतगुरु प्रसाद। जप मन हर हर नाम निधान हर दरगे पावे मान जिन जपिया ते पार प्राण रहाओ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान सुन मन हर कीरत अठ सच न जान
सुन मन गुरुमुख पावे मान, जप मन परमेश्वर प्रधान, चिन खोवे पाप कुटान, मिल नानक हर भगवान। प्रभाती महला पंजवा विपास इको अंकार। सतगुर प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया, पंच तत् रच जोत निवाजिया, सेजा तरत बर्तन को पानी, निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी। मन सतगुर सेव होए परम गते, हरख सोग ते रहे निरारा, तातु पावे प्राण पते रहाओ। कातड़ पोग रस अनक पुंचाए, मात पिता कुटंब सगल बनाए, रिजक समाहे जल फल मीत, सोहर सेवो नीता नीत। तहां सखाई जय कोई न होवे, कोट अपराध इक खिन में धोवे, बात करे नहीं पछोतावे, एका बक्स फिर बहुर ना बुलावे। किर्त संजोगी पाया भाल, साध संगत में बसे गोपाल, गुरमिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहो मुरार। करवाती महला तन्यवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन के पंडार, गुण गावे प्रभ दर्श प्यार। तुमरी पगत प्रभ तुम्हें जनाई, काट जेवरी जन लिए छुड़ाई रहाओ। जो जन राता प्रभ के रंग, तिन सुख पाया प्रभ के संग, जिस रस राया सोई जाने, तेक तेक मन में हैराने। सो सुखिया सब ते उत्तम सोए, जा के हृदय वस्या प्रभ सोए, सोई नेचर आवे न जाए, हम दिन प्रभ के हर गुण गाए। ताको करो सगल नमस्कार, जाके मन पूरन निरंकार, कर कृपा मोय ठाकुर देवा, नानक उदरे जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन होए आनंद, हाथ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कलमल जाहे, इस गुर की हम चरनी।

आए भगत हर सो मन माना, सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगै अतोले, सदा सदा प्रभ गुण निर्गाये, कहो नानक वड पागी पाये। प्रभाती महला पंजवा, से तनवंत सोई सत्सा, हर की दरगै नाम विसाहा, हर हर नाम जपो मन मीत, गुरपुरा पाये।

गुरपुरा पाये वडपागी, दर्शन को जाये पुरबान रहाओ। किलगित में तो सबद संतोख, नाम आराधन हो आजोग, साध संग हो आपरगास, चरण कमल मन माय निवास, जिनकी आकिन लिया राख, प्रभु पूरा अनाथ का नाथ, जिसे निवाजे कृपाधार, पूरन कर्मता के आचार, गुण गावे नित नित नित नवे, लख चौरासी जोर न भवे, इहा उहा चरण पुजारे, मुख उजल साचे दरबारे, जिस मस्तक गुर तरिया हाथ, कोट मदे को विरला।

ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਚੀਤ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਆ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰ

राम राम राम राम जाप, कल कलेश लोभ मोह बिन सुजाए अहंताप। रहाओ आप त्याग संत चरण लाग, मन पवित्र जाहे पाप। नानक बालक कछु न जाने, राखन को प्रभु माई बाप। प्रभाती महला पंजवा, चरण कमल शरण टेक। ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक। रहाओ प्राण आधार दुख बिगार, दैनहार बुद्ध विवेक। नमस्कार रखनहार, मन आराध प्रभु मेक। संत ऋण करो मज्जन, नानक पावे सुख अनेक।

सुत कंचन स्यों हेत बधाया, सब कुछ अपना इकराम कराया। ऐसा जाप जपो जप माली, दुख सुख पर हर भगत निराली रहाओ। गुण निधान से राम ना पाया, साच शब्द तुझ माए समा।

खगल सरोवर जोत समानी, अनद रूप वितों कुर्बानी, पाओ पगत दुर्मती पाए, हों मैं विच्चों सबद जलाए, तावत राथें थाक रहाए, सच्चा नाम मन वसाए,

जीवन मुक्त जा शब्द सुनाए, सच्ची रह सच्चा सुख पाए, सुख दाता दुख नेता हारा, अवर न सूजस भी जी कारा, तन मन तन हर आज्ञा राख्या, नानक कहे महारस चाख्या, प्रभाती महला पहला, निवली करम पुलंगम पाथी, रेचक पूरक कुंभ करे, बिन सतगुर किछ सोजी नाही, परमे पूला बूढ़ मरे, अंधा परया पर पर कोवे, अंतर की मलक दे ना लहे, नाम बिना फोकट सब कर्मा, ज्यो बाजीगर परम पुले, खट कर्म नाम निरंजन सोई, तू गुण सागर अवगुण मोही रहाओ, माया तंदा तावनी, दुर्मत्कार विकार, मूर्ख

क्यों पयाल जाए क्यों चलिए जे बल रूप पछाने राजा जनमेजा दे मती ब्रज व्यास पराया तिनका जग अठारे काए चित ना चले चलाया गणत ना गनी हुकम पछाना बोली पाए सुवाए जो किछ वरते तुरे सवाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलिपत लेप कदे न लागे सदा रहे शरणाई मनमुख मुगद आगे चेते नाही दुख लागे पछताई।

अंकर जूठा क्यों सुच होए, सब दी तो वह विरला कोए, गुरमुख कोई सच कमावे, आवन जाना ठाक रहावे।

हर मंगल हर जियो साजिया रखिया हुकुम सवार तुर लेख लिखिया सो कमावना कोई ना मेकनहार सबद चीन सुख पाया सच्चै नाए प्यार हर मंगल सब दे सोहना कंचन तोट अपार हर मंदर एहो जगत है गुरबिन कोरंतार दूजा पाओ कर पूज दे

हर मंगल में मन लोहत है मोया दूजे भाई पारस पे पै कंचन भया कीमत कहीं ना जाए हर मंगल में हर वसे सर्व निरंतर सोए नानक गुरमुख बन जिए सच्चा सौदा होए प्रभाती महला की जा कह पाए जागे सुजन जागरण करें होमे मेल उतार सदा जागे कर अपना राखें पंच तस्कर का दे मार मन मेरे गुरमुख नाम ध्याए जित मार्ग हर पाए मन से ही कर्म कमाए रहाओ गुरमुख सहज तुम उपजे दुखों में विचों जाए हर नामा हर मन वसे सहजे हर गुण गाए गुरमति मुख सोने हर राख्या उर्धार ऐसे ओथे सुख गणा जप हर हर उतरे पार होमे विच जागरण ना होवई हर पगत ना पवई थाए मन मुख दर टोई।

सुहोग विपास प्रभाती मैला पंजवा अष्टपदिया इको अंकार सतगुरु प्रसाद। मात पिता पाई सुत बनता चूगे चोग आनंद स्यों जुगता उर्ज पर्यो मन मी

अंतर कपट फिरे बेताला, वर्मी मारी साप न मुआ, प्रभ सब कुछ जाने जिन तू किया, कुंवर काप गेरी के बस्तरा, अपदा का मारिया गे के नस्ता, देश छोड़ पर देश है धार।

वेश ना पाये महा दुखियारी, बोले ना ही हुए बैठा मोनी, अंतर कल्प पवाई है जोनी, अंते रहता दुख देही सहता, हुक्म ना बूझे व्याप्या ममता, बिन सतगुर किने न पाई परम गते, पूछो सगल वेद सिमरते, मन मुख कर्म करे अजाई, जो बालू कर खौरना ठाई, जिसनो पै गोविंद दयाला, गुर का बचन तिन बांध्यो पाला, कोट मदे कोई संत दिखाया, नानक तिन के संग तराया, जे होवे पाग का दर्शन पाईए, आप तरह सब कुटुंब तराईए, रहाओ दूजा प्रभाती महला पंजवा, सिमरत नाम किलद सब काते, धर्म राय के कागर पाते, साध संगत मिल हर रस पाया, पार ब्रह्म रिद माए समाया, राम रमत हर हर सुख।

टूटा गांडा, जब कब संजम नाम समा लिया, अपने ठाकुर नगर निहा लिया, मंगल सुख कल्याण तिथाई, जय सेवक गोपाल गुसाई, प्रभु सो प्रसन्न तय गोपाल, जन्म जन्म के मिटे विताल, होम जग उर्द तप पूजा, कोट तीर्थ स्नान करीजा, चरण कमल निमख हृदय धारे, गोविंद जपते सब

सब कला प्रीतम भरपूर, मात पिता हर प्रीतम नेरा, नीत साजन भरवासा तेरा, कर गए लीने अपने दास, जप जीवे नानक गुणतास, विपास करवा।

जोगन जान बजे पुरुखोत्तम काशी अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी परवाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया

करवासी अकुल पुरख इक चलत उपाया कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया जी की जोत न जाने कोई तैने की आशो मालूम होई राव ज्यों परगा से आमाती कुंभे हो

रिद अंतर कर तल काती। ठग दुष्ट बगा लिव लागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा। कल भगवत बंद चिरामंग, क्रूर दिष्ट रता निस्वादं रहाओ। नित प्रति स्नान शरीरं,

शिलपूजस चक्र गणेशं निस्जागस पगत परवेशं पगनाचस चित अकर्मं एलं पटनाच अधर्मं मृग आसन तुलसी माला कर उजल तिलक कपाला हृदय कूर कंठ रुद्राथं रे लंपट कृष्ण अवाखं जिन आत्म तत् न चीनिया सब फोकट धर्म अवीनिया कहो बेणी गुरुमुख त्यावे बिन सतगुरु बाप न पावे।

सिमर राम सिमर ए है तेरे काज है। माया को संग त्याग प्रभु जू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या

राम भज जन्म सिरात है। कहो कहा बार बार समझत न क्यों गवार, बिन सत न लगे बार, पूरे समगात है रहाओ। सगल परम डार दे गोविंद को ना।

हाथ है। जय जावंती मेला नावा। रे मन कौन गत होए है तेरी, यह जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान।

कटा बिनोद सुट कतंच भात मीट हित बंध कतंच मोह कुटुंबते कतंच चपल मोहनी रूपं ते खंते त्यागं करोत।

प्राप्तम धर्म लखन नानक जैसो परसन माधवे मृत मोहन अलक बुद्धन रचंत बनता दिन उदसाहन जो बन बे कर्म कनक कुंडले बचित्र मंदर शोभंत बस्तर।

धरे। दयाल एक भगवान पुरखे नानक सर्व जी कृत पालके। अनित्य वित्तं अनित्य चित्तं अनित्य आशा बहुविध प्रकारं अनित्य हेतं अहम् भं अहम् बं।

विरंत गिर पतित पाताल जलंत दैदीप दैशांतरे बहंत अगा तोयं तरंगं दुखंत गय चिंता जन्मं तमरं अनेक साधन।

से अंधकार सिमरत प्रकाशन गुण रमत अग खंडने ऋत बसंत भयभीत दूते कर्म करत महानिर्मले जन्मे मरण रहंत श्रोता

विपरीत बुद्धन मारत लोकै नानक चिरंकाल दुख भोगते।

गुसाईन्द्र स्वरूपेण सिमरन सर्वत्र जीवने लब्धं संत संगेन नानक स्वस्थ मार्ग हर भक्तने मस्तं भगनंत शैलं कर्दमं तरंत पपीलके

श्याल हरे विखम स्थान मन मोह मदर महा असाद पंच तस्करे हित मोह भय भर।

अवर्ते एते सुत अक्षणे गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन्मतन बलवंत बलात् कारणे चरण कमल लय भजंत तृण समान भृग जनमने हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरन।

करे न चित्तो, जाता अस्थल तोल अमितो, सोई नानक सखा जी संग कितो। अपजसन मिटंत सत पुत्र सिमर तवर गए।

सुती होए अचिंते मन आस पुराया हर हां जा घर आया कं ता सब किस पाया।

ऊपर बने आकाश तले धर सोहती, दैदित चमके भी जल मुख को जो हती खोज।

जग में चेत्यो जान के जग में रहो समाए, जिन हर का नाम न चेत्यो बादे जन्मे आए। कबीर आशा करिए राम की, अवरे आस निराश नरक पर।

चावल काची भात साबत रखें ता राम भजे नाहे ता बिनती बात कबीर केसो केसो कुकिया ना सोए सारे।

सेवक बिरला संत कबीर राम रतन मुख को श्री पारख आगे खोले कोई आए मिले दो गाती ले दो महंगे मोल कबीर राम नाम जान्यो नहीं पाल्यो कटक कुटुंब संदेही में मर गयो बाहर पई न बंब कबीर आखी केरे मात के पल पल गई बिहाए मन जंग

जीवन से पंछी चले दिसावरी बिरखा सुफल कलंक। कबीर साधु संग प्राप्ति लिखिया होए लीलात मुकुट पदार्थ पाये खाक न अवकट काट। कबीर एक करी आदि हूँ ते आदे।

खेलत खेलत हाल करे जो कुछ होए ता होए। कबीर जो तुम्हें साध तिरम के पाके से तू खेले काठी।

कंध कुहारा सिर कड़ा वन के पर लोहारे खरीदा हो लोड़ी सो अपना तू लोड़े अंगियार खरीदा इतना आटा।

ओ लबी वाते थप्पर तू मैं क्या होए चिकर डुबे हाथ फरीदा नंदी संत नारायण वड़ी सी मोई आते।

हंस न कोदरा खाए, चल चल गईया पंखियां जिनी वसाए तल, फरीदा सर परिया पी चलसी थके कवले तल। फरीदा इत सिराने पोए सवन कीड़ा लड़ो मास, केतड़िया जुग वापरे इकत पया पास। फरीदा पन्नी कड़ी सवन वे टुटी नागर लाजे, अजराइल फिरिश्ता कै कर नाची अज। फरीदा पन्नी कड़ी सवन वे टूटी नागर लाजे, जो सज्जन को

नौबत वजी सुबह से चलन का परसाद फरीदा रात पूरी वंडी है सुतिया मिले न खाओ जिना नैन निंद्रावले तिना मिलन को आओ फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाए जग ऊंचे करके देखिया कर कर एहा अग महला पंजवा फरीदा ओम रंगावली मंज विसूला बाग जो जन पीर निवाजिया तिना अंत न लाग महला पंजवा फरीदा उम्र सुहावड़ी संग सुवनड़ी देहे विरले केई पायन जिना प्यारे ने कंदी रहन ना चाहे तो भी लेखा देवना जे कर रब रजाए वैंसदाऊ गौ करे फरीदा।

दिन गया सूला सोती रात खड़ा पुकारे पातनी बेड़ा पत्थरवात लम्बी लम्बी नदी वह कंदी के रहे बेड़े में कप

आमल आखी से था बंदगी चलन अज के कल खरीदा मोतैदा बन्ना एवें दिसे ज्यों दरिया वैता अगे दोजक तपिया सुनिए हूल पवे कहा इतना नू सब सोजी आई इक फिर दे वे

काय पटोला पारती कंबलड़ी कहरे नानक कारी बैठिया सब मिले जे नियत रास करे। महला पंजवा फरीदा गर्भ जी।

रावणे जिना विसारे मनाओ कैसे दुख कनेरिया अगे थौर न छाओ फरीदा पिछल रात ना जाग्यो जीवन दरो मोयो ए जे तें रब विसारिया ता रब ना विसरे ओए महला पंजवा फरीदा कंक रंगावला वड्डा ने मुहताज अल्ले से ती रतिया एहो सचावा साज महला पंजवा।

सिर तल उत्तर पाए। मैं जानिया वडहंस है ताने की पासंग, जो जाना बग बकुड़ा जन्म न पेड़ी अंग। क्या हंस क्या बगुला जाको नदर करे, जो किस पावे नानका सागो हंस करे। सरवर पंखी हे परो फाही वाल पचास, तिरतन लहरी गद किया सत्ते तेरी आस। कमल को अखर कमल गुण कमल को मणिया मंत, कमल को वे सोहा करी जित वस आवे कंत। निमन को अखर खमन गुण जो बामणिया मंत।

एक आन नहीं तुम भरे हर अंत नहीं पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दर तुले ब्रह्म संसार एक दिन क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार अमृत प्रवास हर अतुल भंडार भर परे ही ते परे अपर अपार पर आपनो भावन कर मंत्र न दूसरो धर उप तो कर लो एक निमक तो हर आन नई समसर उजियारो निर्मल कोट करा छते जाए नाम लिए हर हर जन नानक भगत दल कुल ब्रह्म सम

जन नानक भगदर तुल ब्रह्म समसर ए जी क्या बतन हाके बल बल बल बल।

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हर्षवंत आनंद रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं।

धन धन ते धन जने जे कृपाल हर हर भयो हर गुरु नानक जिन परसेओ से जन्म मरण दो ते रहो सत सत हर सत सत सत सत भणिए दूसर आन न आवर पुरखे पुरातन सुनिए अमृत हर को नाम लेत मन सब

जय ठाकुर सौ परसन भयो सत्संगत ते प्यार हर गुरु नानक जिन परसेओ तिन सब कुल कियो उधार सच सभा दीवान सच सचे तै धरेओ सचे सत निवास सच तपावस करेओ सच सुन जो सन

हर तारन तरम समरथ सवैद कुल समूह उदारण सो चित चेत अचेत जान सत संगते भरम अंधेर मोयो कत भौ मूरत घड़ी सापल सिमरन राम नाम रखना संगलाओ होठो काज अलग सुख बंधन कोट जन्म कहाँ दुख भौ सिखा संत नाम भजनान के राम रंग आत्म स्योरों रंच करेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार भरी खान पान सोधे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात का भाई अर बंधते बूधन के सब सोज परे बरमान होवत दिन प्रतिनित आवत निक

नानक काट भरम भरे रे मन मूस बिलावे गर्वत कर्तव करत महाम भुना संपत धौल धूल संग झूलत माया मगन भरमत भुगना सुत बनता साजन सुख बंदते तासु मो बड़ो सुघना बोयो भीत अहं मम अंकुर बीतत औध करत अधना मृत मंजार पसार मुख निरखते भुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जगे जानत सुपना देहे न देहे।

पिता माया मस्त कहाँ लोगारो। छत्र न पत्र न चौर न चावर बैठी जात हृदय न विचारो। रथ न अश्व न गज सिंहासन छिन में त्यागत नाम सिधारो। सूर न वीर न मीर न खानम संग न को दृष्ट निहारो। कोट न ओट न कोश न छोटा कर्त विकार दो कर झारो। मित्र न पुत्र कल्प साजन सुख उल्टत जात बिरख की छारो। दीन दयाल पुरख प्रभु पूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो। श्रीपत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो। प्राण मान दान मग जोहन कीत कीत दे ले ले तारी। साजन सैन में

एवं करते शोध तन जारी करम धर्म संजन सुख सुचने मा करम धर्म संजन सुचने मा चंचल संग सगल विदहारी पथ पंखी बिरख अश तावर बोगंद जौन भम्यो अत भारी सिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पथ सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उधरे और माया मगन चले सब डारी ब्रह्मांडक शिव छंद मुनि सर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरत धरण गगन आवत फुन धावत सिद्ध मांस देव अरदान एक तिल ताको मर्म न पावत प्रसव प्रीत प्रेम रस भक्ति हर जन ताके दर समावत तिसे त्याग आन को जाते मुख दंत रसन सगल घस जावत रे मन मोड़ सिमर सुख

दस्यो जम को तन डन मृत मरो है। अंत जोन संकट नरक भुंचत शासन दुख गर्त गर्यो है। प्रेम भगत उधरे सेनान के कर कृपा संत आप करो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आसमारी। औषध मंत्र तनक पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मद सर कृष्णा बिन सजाए।

गुण वर्ण चार घट दर्शन ब्रह्मादत स्मरंत गुणाम गावे गुण शेष सहस जेदा रस आद अंत लेवे।

करतार करह समरथो। सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरयो जिन हथो, तुम धरयो मस्तक।

जाकु दृष्ट अमृत धार काल को खन उतारे तिमर अज्ञान जाए दर्श द्वारे ओ जो से

हर हर दर्श समानी आत्मावंत ज्ञान जाने अकलगत गुरु परवान जाकी।

गरल नाश कन न थियो अम्यो अंतरगत पियो रिद बिगास जागयो अलग पल धरी जुगंतल सतगुर सहज समाद रव्यो सामान निरंतर उदारो चित दारद हरन तिखंते कलमल प्रसन्न सब रंग सहज कल उचरे जस जमतो लेने रसने नाम औखद नाम आधार अर नाम समाज सुख सदा नाम निशान सो है रंग रतो नाम सो कल नाम सुर नरे बो है नाम परस जन पायो सत प्रगटो रवलो दर्शन परसे गुरु कै अठ मजन हो सच तीरथ सच स्नान और भोजन भाव सच सदा सच भाषंत सो है सच पायो गुरु सबर सच नाम सुगंती बो है जिस सच संजम वर्त सचे कब जन कल खाने दर्शन परसिए गुरु कै सच जन्म परवाणी हमें दृष्ट शुभ करे हरे अघ पाप सकलमल काम क्रोध अर लोभ मोवश करे सवै बल सदा सुख मन वसै दुख सन

तीरथ रव तिर कर संसारे सात सरोवर मवल सरा। उत्तर दक्षिण पुग अर पश्चिम जय जयकार जपंत नरा। हर नाम रसन गुरुमुख बरदायो उल्ट गंग पर

सोई नाम अचल भगते भवतार अमरदास गुरु को पुरिया चित नाम लागते तुस धयावे जसी कपी सर मनवसया सोई नाम सिमर गंगे पितामे चरण चित अमृत रसया चित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सत कर संगत उदरिया सोई नाम अचल भगते भवतार अमरदास गुरु को पुरिया नाम चित संसार किरण रहो सुर कर साथे उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस भाके जन्म तयो सखे अत जित नाम हर हृदय निवासे सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन आशा से भलो प्रसिद्ध तेजो तनु कल जोड़ कर ध्यायो सोई नाम भगत भव जल हरन गुर अमरदास तें पायो नाम धयावे देव कैतीस अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड धारे जय नाम समाधयो हरक सोग समतर सहारे नाम शिरोमण सर्व में भगत रह निवधार सोई नाम परार्थ अमर गुरु तुस दियो करकार सत सूरो शील बलवंत सत भाय संगत सघन गुरु मत निर्वैर लिया जिस धीरज धुर धवल भुजा

सुख पायो अमर गुरु की खोजो। नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी। धन सतगुण सेवे जिस पसाए गत

हृदय बसो अतु हो सोए रसिन ही जातो मुखों भगत उतरे अमर गुर इत रंग रातो मस्तक निशान सचो करम पल जोय कर भायो परसो गुर सतगुरु तिलक सरब इच्छ तिन पायो चरण तपर सत्यत चरण गुर अमर पवल्ले हथ तपर सत्यत हथ लगे गुर अमर पे जी तपर सत्यत जी गुर अमर भरजे नैन तपर सत्यत नैन गुर अमर तिथ जय सरवण तपर सत्यत सरवण गुर अमर सुनिज जय सत्यत सो ही हो जित ही बसे गुर अमर दास निज जगत पिते सत्यत सो सिर जालक भणि जो सुर ने गुर अमर निते तेनर दुख ने दुख तेनर निधन नौ कई तेनर शोक नौ हुए तेनर से अंत न ले।

सुपन एक पर तख एक एक सुमेनू तीस एक अर पंज सिदे मैं तीस नीनू इको जे लाख लखो अलख है एक एक कर वन्यो गुरु अमरदास।

गुरु अमर रास निज भगत हैं, देख दर्श पावो मुकते। गुरु अमर दास परसिए कहुं पाठ बिना से। गुरु

है जालता पदार्थ इतने गुरु अमरदास जिथे मिले सच नाम करतार सुदृढ़ नानक संग्रह हो ताते अंगद

तात गुण कवण वखाणो जो गुण अलख अगंत ने गुण अंत न जानो बोलतो विधाते निर्मयो सब संगत कुल उधरणे गुरु अमरदास कीरत कहे त्राहे त्राहे तो पाशरण आप नारायण कलाधार जग में परवर निरंकार आकार ज्योत जग मंडल।

जप तप सत संतोष तिक दर्शन गुर सिखे सरण परे ते उबरे छोड़ जमपुर की लिखे भगत।

नानक कुल मल अवतरो गुण कर तारे उतरे। गुरु अमरदास जिन सवेओ तिन दुख दरिद्रे।

जब गुरु देखे सुगदिश नाम करता मुख मेरा। अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहो, गुरु अमरदास कारण करण जिम तू रखे क्यों रहो। दिखे के गुरु ज्ञान अर ध्यान तत्सव तत्।

बस करे पवन उदंत न घावे। निरंकार के वसे देश हुकम बोझ विचार पावे। कल माए रू

तनाव ज्ञान है आसन करो, धर्म धन कर गयो, भगत सिंह है सर लड़ो, धन निर्भव हर अटल मन, सबद गुरु ने जाग लो, काम क्रोध लोभ मोह।

अदना से अब गत आयो किस भेंटे दार दिन चमते कल सहार।

नाम निरंजन उर धरया। हर नाम रसक गोविंद गुण गाहते, चाहत तत समत सरे। कब कल ठकर हर दास ने, गुरु राम दास सर अबर भरे। छूटत प्रवाह अमे अमरा तत,

तिन भव निवार अन भय पद दीना शब्द मात्र ते उधर धरे कण कर्ण छकुन हरदास तने गुरु रामदास सर अवर भरे सतगुरु मत गूढ़ बिमल सत संगते आत्म रंग चलूल भया जागा मन कवल सहज परगासा अभय निरंजन घरे लहा सतगुरु दयाल हर नाम दिलाया इस पर साधवस पंच करे कर कर ठाकुर हरदास तने गुरु रामदास सर अभर भरे अनुभव अनुमान अकल लेव लागी पारस भेटिया सहज घरे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत भाय भंडार भरे मेटिया जन मंत्र मरण भव भागा चित लागा संतोष सरे कब कल ठकुर हरदास तने गुरु रामदास सर अबर भरे अबर भरे पायो अपार अंतर धारे दुख भंजन आ

गुरमुख ध्यान दुर्मत मैल धोवे जियो। सतगुरु नाम एक लिव मन जते, जिन जन दुख पाप को।

नाम सो अपार सार दीनो गुरुर्द धरे नल कौ पारस परस कच कंचना हुए चंदना सुवास जास सिमरत अंतरे जाके देखत द्वारे काम को दे।

जगत भयो आनंदे तारन मनुख जीत्यो प्रगाश। गुरु अंगद दियो निधान अकथ कथा ज्ञान पंच

सिर सर और अनल अनाद कियो। सकल खनिस सूर दिन सैल करो फल फूल दियो। सुर नर सपत सम

काठो सीखन सतगुर कियो दुख दर्द तिन के गए। सतगुरु चरण जिन परसिया ते पश प्रे

गुरु गुरु ऐनस जाते दास भट बेनत कहे जो गुरु नाम रिद मैं धरे सो जन्म मरण दो ते रहे गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुर कर सच बिचारे गुर करे मन मेरे गुर कर शब्द सुपन।

लोके अथ संसार में। गुरु गुरु गुरु करमन मेरे तारण तरण समर्थ कलयुग सुनत समाद शब्द जिसके रे। सुन दुखन नाश सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस तै मेरे। पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाए परे रे। जोहर बुध हृदय सिद चाहती गुरु गुरे गुर कर मन मेरे। गुरु मुख देख गरु सुख पायो उठी जो प्यास प्यो सेवन की बंसत सिद को विद मिलायो। पूरन भवन ठोर बसोरसे बासन सुजो दंज सधायो। गोविंद वाल गोविंद पुरी समजलन तीर विवास बनायो। गयो दुख दूर

निस्बासुर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत भांडरो भन दास तो आस जगत गुरु की पारस भेत परस करो रामदास गुरु।

ज्ञानियों शब्द हर हर जपे नाम नवनिध आपे रसन ऐनित रसे सत कर जानियों सुनु प्रेम रंग पाइए गुरमुखे ध्याइए अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियों वचन गुर रिद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियो जो तो सब सुख इत उत तो।

गुरु जप सत कर अगम गुण जान निधान हर मन धरो ध्यान ऐनक करो बचन गुरु हृदय धर सुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुरु सिख करो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निर्भव जपे प्रेम गुरु शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगद मन भ्रम तजो नाम गुरु मुख

गुर मिलत मुन जन रे तरे नार दाद संकार हर गुरु मुखे तरे एक नाम लग तजो रस अन

परमानंद गुरुमुख कयन पर तख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण भरण सतगुरु गुरु सेव।

हर जन से गुर ज्ञान रते। रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर, मुन बंसे जाकी शरण, सत गुरु गुरु सेव अलख ग।

अवलोक ब्रह्म भरम शुभ छुटकार, अवलोक ब्रह्म भरम सब छुटकार, दिव दृष्ट कारण करण सतगुरु गुरु सेव अलख गत जाकी, श्री राम दास तारण तरण। परताप सदा गुर का घट घट परदास भया।

करें पर भात शुद्ध मन गुरु पूजा विद सहित करन। कंचन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपे ध्यान धरन। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मेरिया पूर्व विद वर्णन। सतगुरु गुरु सेव अलख।

तिन तरयो समुद्र रुद्र थिन एक में जल हर बिंब जुगत जग रचा। कुंडली सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा। श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन

आपे हस्ते आप ही चितवे आपे पंच सूर पर गाता आपे जल आपे थल खम्मल आपे किया घट घट बासा आपे नर आपे कुन

पाता। गुरमुख संगत सबे बिचारो, वाओ वाओ का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़मेल तमाशा। वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन पयाल पूर रहा, अमृत ते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मा दिक रुद्रा दिके, काल का काल निरंजन जचना। गुर प्रसाद पाए परमार्थ, सत्संगत से ती मन खचना। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत

गुर समरथ गए किरिया धो बुद्ध सुमत समारन को उन धम दूजा फैरंत सदा अग पुंज तुरंग निवारन को मथुरा जन जान कहीं जय सासु और कछु न विचारन को हर नाम बहुत बड़ो कल में भव सागर पारे उतारन को संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है धर्म पंथ धर्यो धर्मी धर आप रहे ले उधार न धावत है मथुरा भन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है रव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चितलावत है निर्मल नाम सुधास पर पूरन सब त्रंग प्रगट तिन आगर

ध्यान धरे फिरत सगल जुग कभू को पावे आत्म परदास को। वेद बाणी सहत ग्रंथ जस गावे जाको शिव मुन जैना सजात कबिलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप गजा झूठ भेद किए फिरत उदास को। सोतन सतगुण सुख भाई कृपा।

लोक प्रगासे देखत दर्श भटक भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभते अल समूजो कुसुम सुबासे विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तखत गुरु रामदासे तारो संसार माया मद मोहिते अमृत नाम दियो समरथे उन कीरत वंत सदा सुख संपते रिद्ध अर सिद्ध ना छो

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा खूब भगत हर के जुगणन अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा और कबीर भणन तिनको अवतार।

मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जो तिणन। बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिणन। कर्म कर तो दर्श परस पारसन बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तैं हर परम पद पायो। जैसे तु सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन। जै सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जै सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। जै सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नव निध पावे। सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन करो। जै सतगुर लग प्रभ पाइए तो सतगुर सिमरो नरो। जिन

ज्ञान प्रगत उजियारो दुख दरिद अंधियार को नाशे। कब कीरत जो संत चरण मुन लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। ज्यों अंगद अंग संग नानक गुर त्यों गुरु अमरदास कै गुरु रामदास। जिन सतगुरु सेव पदार्थ पायो निस्बासुर हर चरण निवास। सांते संगत सगन भा

जै तिखत अत होय रहत मन सोई। संत सहार गुरु रामदास, नानक नाम निरंजन जानु तीनी भगत प्रेम लिवलाई। आते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन सबद सुरद की

जन्म ते गुरमत ब्रह्म पछाणियो, कल जोड़ कर सो जस वखाणियो। भगत जोग को जैतवार।

गुर अर्जन घर गुरु रामदास भगत उतर आयो बलधागी उन मानियो

वेदन भर सहता भय बंजन पर पीर निवारण कल संहार तोए जस भगता कुल सौदी गुरु रामदास तन धर

कहो मथुरा अमृत बैं मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धर्यो आद पुरख पर तथे लिखो अक्षर मस्तक धुरे प्रगट ज्योत जगमगे तेज भूमंडल छायो पारसे परसे परस परस

जिना वेल ना चूंबड़ी माया ठगे ठग मनमुख बन चलाई ना मिल ही वग सग आप पुलाए पुलिए

जह देखा कह एक है गुरमुख प्रगट होए। दुख विसारन शब्द है जो मन वसाए कोए, गुर कृपा से मन वसै कर्म प्राप्त होए। नानक हों हों करते खप मोए खूहन लख असंख, सतगुर मिले सोबरे साचे शब्द अलंख। जिना सतगुर इक मन सेविया तिन जन लागू पाए, गुर शब्दी हर मन वसै माया की पुख जाए। से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाए, नानक होर पाप।

बौरस साल ने सवार दी खट बस मीठे पाए त्यों बाणी पगत सलां दे हर नाम चित लाए मन तन तन आ गए राखिया सिर वेचिया गुर आ गए जाए।

तै पदती भगत बहु लोचदे प्रभ लोचा पूर मिलाए हर प्रभ वे परवाह है किस खादे तिपकाए सतगुर के पाने जो चले तिपता से हर गुण गाए तन तन कर जुग नानका जे चले सतगुरु भाए सतगुरु ना सेवियो शब्द ना रखियो उधार तिग तिना का जीविया कित आए संसार गुरमति पौ मन पवे ता हर वस लगे।

0: नाम रतन प्रकाशिया मन तन निर्मल होए। नाम हीन नक्शे फिरे बिन नाम बह रोए, नानक जो तुर करते लिखिया सो मेट न सके कोए। गुरमुखा हर तन खटिया गुर कै शब्द विचार, नाम पदार्थ पाया तुत परे पंडार। हर गुण बाणी उचरे अंत न पारा वार, नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार।
1: गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़या दसवें आकाश, तिथे ऊंग न पुख है हर अमृत नाम सुख।

पुत कलत मोह हेत है अंत बेली को न सखाए, सतगुर सेवे सो सुख पाए नाम वसै मन आए, नानक से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाए। मनमुख नाम न चेतनी बिन नाम है दुख रोए, आत्मा राम न पूजनी दूजे क्यों सुख होए, हों मैं अंतर मैल है शब्द न काढ़े तोए, नानक बिन नाम है मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए। मनमुख बोले अंगले तिसमें अग्नि का वास, बाणी सुरत न बुझनी शब्द न करे प्रगास, ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुर वचन ना करे विश्वास, ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिव सदा विकास, हर ज्ञानिया की रख

पाए। बिक का मारण हर नाम है, गुर गरुड़ शब्द मुख पाए। जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए, मिल सतगुरु निर्मल होया, बिक हो मैं गया।

सतगुरु पुरख निर्वैर है, नित हिरदय हर लिवलाए, निर्वैर नाल वैर रचाएंदा, अपने कर लूकी लाए, अंतर क्रोध अहंकार है, अंदिन जले सदा दुख पाए, कूड़ बोल बोल नित पौंक दे, बिख खा दे दूजे भाए, बिख माया कारण परम दे, फिर कर कर पत गवाए, बेसवा के रे पूत ज्यो पिता नाम तिस जाए, हर हर नाम न चेतनी करते आप खुआए, हर गुरुमुख कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए, जन नानक तिस बलिहारण जो सतगुरु लागे पाए, नाम लगे से उबरे बिन नाम है जम पुर जाए, नानक बिन नाम

जिनको पूर्व लिखिया तिना पेटिया गुरु गोविंद, नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद। सतगुर सेवन आपना गुर शब्दी विचार, सतगुर का पाना मन लैन हर नाम रखे उरदार। एथे ओथे मनियन हर नाम लगे वापार, गुरमुख शब्द सुजाप दे तित साचे दरबार। सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार।

जन की टेक हर नाम हर बिन नाम है ठवर न ठाओ गुरमति नाव मन वसे सहजे सह समाओ वड पागी नाम ते आया एहन सलागा पाओ जन नानक मंगे तूर तिन हो सतगुरु बाणे जाओ लख चौरासी मेदनी तिसना जलती करे पुकार ए मोह माया सब पसरिया नाल चले नाम तिवार बिन हर सांत ना आवई किस आगे करी पुकार वड पागी सतगुरु पाया बूझिया ब्रह्म विचार तिसना अग्न सब बुझ गई जन नानक हर उरदार असी खत्ते बहुत कमाम दे अंत ना पारावार हर कृपा करके बख्श ले हो हों पापी वड गुनहगार हर जियो लेखे वार ना आवई तू बख्श मिलावन हार गुर तुठे हर प्रभ मेलिया सब किल कट विकार जिना हर हर नाम ते आया जन नानक तिन जयकार विछड़ विछड़ जो मिले सतगुर के पै पाए जन्म मरण नहीं चल भये गुरमुख नाम ते आए गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लवन नानक लाल अमोल का गुरमुख खोज लहन मन मुख नाम ना चेत्यो तिग जीवन तिगवास जिस दा जित्ता खाना पहनना सो मन ना वस्यो गुणतास ए मन शब्द ना पेदियो क्यों होवे करवास मन मुखिया दोहागनी आवन जान मोयास गुरमुख नाम सुहाग है मस्तक मणि लिखियास हर हर नाम उरधारिया हर हृदय कमल प्रगास सतगुर सेवन आपना हो सद बलिहारी तास नानक तिन मुख उजले जिन अंतर नाम प्रगास शब्द मरे सोई जन सिजे बिन शब्द मुक्त न होई पेख करे बहु कर्म विगुते पाए दूजे परज विगोई नानक बिन सतगुरु नाव ना पाईए जेसो लोचे कोई हर का नाव अत वड ऊंचा ऊंची हु ऊंचा होई अपड़ कोई न सकई जे सो लोचे कोई मुख संजम हच्छा ना होवई कर पेख पवे सब कोई गुर की पौड़ी जाय चढ़े कर्म प्राप्त होई अंतर आए वसे गुर शब्द विचारे कोई नानक शब्द मरे मन मानिए साचे साची सोए माया मोह दुख सागर है बिख दुत्तर तरे आना जाए मेरा मेरा कर दे पच मोए हों मैं करत विहाय मन मुखा उरवार न पार है अद विच रहे लपटाए जो तुर लिखिया सो कमावना करना कछु न जाए गुरमति ज्ञान रतन मन वसे सब देखिया ब्रह्म सुवाए नानक सतगुर बोझे वड पागी चढ़े ते फौजल पार लंगाए बिन सतगुर दाता को नहीं जो हर नाम दे आधार गुर कृपा ते नाव मन वसे सदा रहे उरधार तिसना बुझे तिपत होए हर के नाए प्यार नानक गुरमुख पाईए हर अपनी कृपा धार बिन शब्द जगत बर लिया कहना कछु न जाए हर रखे से उबरे शब्द रहे लिव लाए नानक करता सब कित जानदा जिन रखी बनत बनाए होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण बिख माया मोह न मिटई विच होमे आवन जान सतगुरु मिलिए मल उतरी हर जपिया पुरख सुजान जिना हर हर प्रभ सेविया जन नानक सतगुरु बाण माया मोह बहु चितव दे बहु आशा लोभ विकार मन मुख अस्थिर नाथी है मर बिनस जाए खिनवार वड पाग होवे सतगुरु मिले होमे तजै विकार हर नामा जब सुख पाया जन नानक शब्द विचार बिन सतगुरु भगत न होवे नाम।

मन आवन जान ना सुजई ना सुजै दरबार, माया मोह पलेटिया अंतर अज्ञान गुवार। तब नरक पा जा गया सिर डंड लगा बहु पार, गुरमुखा करा उपर हर चेतिया से पायन मोख द्वार। नानक आप ओह उदरे सब कुटंब तरे परवार, शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस्त्रा पे, हर दरगे गुर सब जापे बिन शब्द मुआ है सब कोए, मन मुख मुआ अपना जन्म खोए, हर नाम न चेते अंत दुख रोए, नानक करता करे सो होए, गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत ज्ञान, सदा सदा हर गुण रवे अंतर सहज ज्ञान, ओए सदा आनंद विवेक रहे दुख सुख एक समान, तिना नदरी इको आया सब आत्म राम पहचान, मन मुख बालक बिरद समान है जिना अंतर हर सुरत नाही, विच हो मैं कर्म कमाव दे सब धर्म राय कह जाही, गुरमुख अच्छे निर्मले गुर कह सब सुवाए, ओना मैल पतंग ना लग गई जे चलन सतगुर भाए, मन मुख झूठ ना उतरे जे सो तोवन पाए, नानक गुरमुख मेलिया।

नानक गुरमुख मन से लुजै जिना सतगुर पुरख न सेवियो शब्द न कीतो विचार ओए मानस जून ना आखियन पशु टोर गावार ओना अंतर ज्ञान ना ध्यान है हरसो प्रीत ना प्यार मन मुख मोए विकार में मर जमे वारो वार जीव दियानो मिले सो जीव दे हर जग जीवन उद्धार नानक गुरमुख सोहणे सिद्ध सच्चे दरबार हर मंदर हर साजिया हर वसे जिस नाल गुरमति हर पाया माया मोह पर जाल हर मंदर वस अनेक है नव नाम समाल तन भगवंती नानका जिना गुरमुख लद्दा हर पाल वड पागी गढ़ मंदर खोजिया हर हृदय पाया नाल मन मुख दे दिस फिर रहे अत तिसना लोभ विकार माया मोह न चुकई मर जमे वारो वार सतगुर सेव सुख पाया अत तिसना तज विकार जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द विचार हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान किलविक पाप सब कटिए हो मैं चुके गुमान गुरमुख कमल विकसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम तनासरी तनवंती जानिए पाई जा सतगुर की कार कमाए तन मन सौंपे जी सो भाई लय हुक्म फिराओ जय बैसावे बैसे भाई जय पे जय ते जाओ एवड तन होर को नहीं भाई जेवड सच्चा नाओ सदा सच्चे के गुण गावा भाई सदा सच्चे के संग रहाओ पैनन गुण चंगियाईया भाई अपनी पत के साथ आपे खाए तिसका क्या सालाई है भाई दर्शन को बल जाए सतगुर विच वडियां वडियाईया भाई कर्म मिले ता पाए इक हुकम मन ना जाननी भाई दूजे भाई फिराए संगत तोई ना मिले भाई बैसन मिले ना थाओ नानक हुकम तिना मनाए सी भाई जिना तुरे कमाया नाओ तिन विटो हो वारिया भाई तिन को सद बलिहा रह जाओ से दाड़िया सतिया जे गुर चरनी लगन अंदन सेवन गुर आपना अंदन अनदरहन नानक से मोह सोहने सच्चे दर दिसन मुख सच्चे सच दाड़िया सच बोले सच कमाए सच्चा शब्द मन वस्या सतगुर माहे समाहे सच्ची राशि सच तन उत्तम पदवी पाहे सच सुने सच मन लैन सच्ची कार कमाहे सच्ची दरगे बैसना सच्चे माहे समाए नानक बिन सतगुर सच ना पाई है मन मुख भूले जाए बाबी हा प्रयो प्रयो करे जल निध प्रेम प्यार गुर मिले शीतल जल पाया सब दुख निवारण हार तिस चुके सहज उपजे चुके कूक पुकार नानक गुरमुख सांत होए नाम रखूरदार बाबिया तू सच चो सच्चे सौ लिवलाए बोलिया तेरा साई पवे गुरमुख होए अलाए शब्द चीन तिक उतरे मन लै रजाए चारे कुंडा चोक वरसदा बूंद पवे सह चुबाए जल ही ते सब उपजे बिन जल प्यास न जाए नानक हर जल जिन पिया तिस भूख न लागे आए बाबी हा तू सहज बोल सच्चे शब्द सुवाए सब किस तेरे नाल है सतगुर दिया दिखाए आप पछाणे प्रीतम मिले उठा छह बरलाए चिम चिम अमृत वरसदा तिसना पुख सब जाए पूप पुकार न हो वही ज्योति ज्योत मिलाए नानक सुख सवन सुहागणी सच्चे नाम समाए तुरु खसम पेजिया सच्चे हुकम पठाए इंद वरसे दया कर गूड़ी छह बरलाए बाबी हे तन मन सुख होए जां तत बूंद मोह पाए अन तन बहुता उपजे तरती शोभा पाए अंदिन लोक भगत करे गुर कै शब्द समाए आपे सच्चा बस लय कर कृपा करे रजाए हर गुण गावो कामणी सच्चे शब्द समाए पै का सह सिगार करो सच रहो लिव लाए नानक नामो मन वसे हर दरगे ले छड़ाए बाबी हा सगली तरती जे फिरे ऊट चढ़े आकाश सतगुर मिले जल पाईए चूके भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किस तिसके पास बिन बोलिया सब किस जानदा किस आ गए की चै अरदास नानक कट कट एको वरतदा
ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਮਾਏ, ਹਰ ਬੁੱਠਾ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਪਰ ਫੜੈ, ਸਭ ਜਗ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋਏ। ਸਬਦੇ ਸਦਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਤ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਿਆ ਮਨ ਸੋਏ, ਹਰ ਬੁੱਠੈ ਮਨ ਤਨ ਪਰਫੜੈ, ਸਭ ਜਗ ਹਰਿਆ ਹੋਏ। ਵੱਡੜੈ ਚਾਲ ਚਲੁੰਬੜੈ ਨਾਵੜਾ ਲਈਐ ਕਿਸ, ਨਾਉ ਲਈਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ ਪੰਨਣ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ। ਹਰ ਹਟ ਵੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰੈ ਬੋਲੇ ਪੱਲੀ ਬਾਣ, ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹਦੂਰ ਹੈ ਕਿਆ ਉੱਚੀ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ। ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਏ ਹਰ ਰੰਗ ਕੀਆ, ਤਿਸੈ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਆਪ ਛੋਡੈ ਤਾਂ ਸੋ ਮਿਲੈ ਸੱਚਾ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਹਉਮੈ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਬੁਝ ਨਾ ਸਕਾ ਕਾਰ। ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਤੁਝੈ ਧਿਆਇ ਦਾ, ਅੰਦਿਨ ਸਦਾ ਵਿਹਾਨ। ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਰ ਕਰ ਸਕੇ ਵਿਚਾਰ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲਹੇ ਸਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਆਏ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜੋਗ ਨਾ ਪਗਵੀ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮਹਿਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਕਰ ਬੈਠਿਆ ਜੋਗ ਪਾਈਐ ਸਤਗੁਰ ਕਹਿ ਉਪਦੇਸ਼। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਜੇ ਪਵੈ ਬੇਦ ਪੜੈ ਜੁਗ ਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਪੇਟੈ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਪਾਵੈ ਮੋਗ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਵਰਤੈ ਖਸਮ ਕਾ ਮਤ ਪਵੀ ਫਿਰੈ ਚਲ ਚਿਤ, ਮਨਮੁਖ ਸੋ ਕਰ ਦੋਸਤੀ ਸੁਖ ਕੇ ਪੁੱਛੈ ਮਿਤ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਕਰ ਦੋਸਤੀ ਸਤਗੁਰ ਸੋ ਲਾਏ ਚਿਤ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕਾ ਮੂਲ ਕੱਟੀਐ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੋਵੀ ਮਿਤ। ਪੁੱਲਿਆ ਆਪ ਸਮਝਾਏ ਸੀ।

आन दिन चिंता चिंतवे चिंता बद्दा जाए, जमन मरण ना चुकई हो मैं कर्म कमाए, गुर सरनाई उबरे नानक ले छाए। सतगुरु पुरख हर त्याय दा, सतसंगत सतगुरु भाए, सतसंगत सतगुरु सेव दे हर मेले गुर मिलाए। यो पौजल जगत संसार है गुर बोहित नाम तराए, गुर सिखी पाना मन्या गुर पूरा पार लंघाए, गुर सिखा की हर तूड़ दे हम पापी भी गत पाए, गुर मस्तक हर प्रभ लिखिया गुरु नानक मिलिया आए, जम कंकर मार बिदारियन हर दरगे ले छाए, गुर सिखा नो साबास है हर तुठा मेल मिलाए, गुर पूरे हर नाम दिलाया जिन विच्चों परम चुकाया, राम नाम हर कीर्त गाए कर चानन मग दिखाया, हों मैं मार एक लिव लागी अंतर नाम बसाया, गुरमति जम जोहे न सके सच्चे नाए समाया, सब आपे आप वरते करता जो पावे सो नाए लाया, जन नानक नाउ ले ता जीवे बिन नामे खिन मर जाया, मन अंतर हों मैं रोग परम पूले हों मैं साकत दुर्जना, नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना, गुरमति हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन रात, हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लबई, सब देखिया जगत में टोले, गुर सतगुरु नाम दृढ़ाया मन अंत न काहू डोले, जन नानक हर का दास है गुर सतगुरु के गुल बोले।

रते से जे मुखना मुड़ा ने जिनी संजाता साई चढ़ चढ़ पौधे कच्चे बिरही जिन्ना कारण आए तने विहूना पाठ सितंबर पाही सेती जाले तूड़ी विच लुडंदड़ी सोहा नानक तैसे नाले गुर कै शब्द अरादी है नाम रंग बैराग जीते पंच बैराइया नानक सफल मारू इह राग जामू इक ता लख तौ जिती पिनने दर कितड़े बामन बिरथा गयो जन्म जिन की तो सो विसरे थोरठ थोरस पीजिए कभू न फीका होए नानक राम नाम गुण गाइए दरगह निर्मल सोए जो प्रभ रखे आप तिन कोए न मारे अंदर नाम निदान सदा गुण सारे एका टेप अगम मन तन प्रभ धारे लगा रंग अपार को न उतारे गुरमुख हर गुण गाए सहज सुख सारे नानक नाम निधान हृदय उरहारे करे सुचंगा मान दुई गणत लाहे अपनी नगर निहाल आपे लहो लाए जन देहो मति उपदेश विच्चों परम जाए जो सुर लिखिया लेख सोई सब कमाए सब कष्ट दे वस दूजी नाही जाए नानक सुख आनंद भये सब की मन रजाए गुर पूरा जिन सिमरिया से भय निहाल नानक नाम आराधना कारज आवे रास पापी कर्म कमाव दे कर दे हाय हाय नानक ज्यो मथन माधानिया क्यों मथे धर्म राय नाम से आए साजना जन्म पदार्थ जीत नानक धर्म ऐसे चवे कीतो पवन पुनीत खुबड़ी कुठाए मिठी जलन कुमंत्रिया।

सुतड़े असंख माया चूकी कारणे नानक से जगन जे रसना नाम उचारणे मृग तिसना पेख भुलने बुठे नगर गंधर्व जिन्नी सच आराध्या नानक मंतन पब पतित उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरख अपार जिसे उदारे नानका।

आप कृपाल शब्द अकुट बाबा नानका खाए खर सनमाल खंब विकांदड़े जेलहा किन्ना सावी तोल तन जड़ाई अपने लहा सुख जंटोल।

जिसका सब आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। के वस्त जी नह जाई नित नित रख उधारो, तम संसार चरण लग तरिये,

रागमाला राग एक संग पंच बरंगन संग अलापे आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै कर ही पंच रागनी संग उचर ही प्रथम पैरवी बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पांचों नारी पंचम हरख दिशा सुनावे।

दुतिया माल को सका लापे संग रागनी पांचों थापे गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पांचों गाई माल राग कौशक संगलाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशक उभारा खोखट औ पौरा नद गाये अष्टमाल कौशक संगलाए पुन आयो हिंडोल पंचना।

सुरमानंद पास करे आए चंद्रबिम मंगलन सोहाय सरसबान औ आए बिनोदा गावे सरस बसंत तमोदा अष्टपुत्र में कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कछेली पटमंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कांगरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग में गावे पांचों संग बिरंगन लावे।

दुख सुख पाइए इकना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाइए है। हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई नानक हुक्म है जे

आई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीर्थ नावा जे तिस पावा बिन पाने के नाए करी जेते सिरठ उपाई वेखा बिन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा

जे तिस नदर ना आवई ता बात ना पुछै के कीता अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई ना सुझे जे तिस गुण कोई करे सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने तत धवल आकाश सुने दीप लो पाताल सुने पोहे ना सकै काल नानक।

पछताए। कागज कलम ना लिखण हार, मन्ने का वह कर्म विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने सुत हुए मन बुद्ध, मन्ने सगल

जे को मन जाने मन कोई, मन मार्ग ठाक न पाई, मन पथ स्यों प्रगट जाय, मन मग न चले पंथ, मन धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होय, जे को मन

एक पवह ना पिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोई पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावह दर गहमान पंचे सोह दर राजहान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रख्या जिन सूत जे को बुझे हुए सचियार तबले ऊपर केता पार धरती होर परे होर होर तिस ते पार तले।

अगम अगम असंख लो असंख कह सिर भार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग बखान जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए।

एक वार जो तुझ पावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हाथ पैर तन दे पानी धोते उतरस खे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओ धोए तो

गत तीरथ मल नाहु सब गुण तेरे मैं नाही कोय बिन गुण कीते भगत ना होय स्वास्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कमण सो वेला वखत कमण कमण थित कमण वार कमण से रुती माह कमण जित होवा आकार वेल न पाइया पंडती

जा करता सिर ठीक ओ साची, आपे जाने सोई किव कर आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना, नानक आख

पवह समुंद ना जानिए है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होमनी जे तिस मनो ना विसर है अंत न सिफती कहन ना अंत अंत न करने देन ना अंत अंत ना वेखण सुनन ना अंत अंत ना जापै क्या मन मंत अंत ना जापै की आयाकार अंत न जापै पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाऊं।

आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना कमाए केते मंगह जोद अपार केतियां गणत नहीं विचार।

पाठ पुराण आखह पड़े करह मखियान आखह बरमे आखह इंद आखह गोपी तै गोविंद आखह इस

देवतियां दर नाले गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारी गावन पंडित पन्न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच्छ पयाले गावन रतन उपाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावे है जोध महाबल सूरा गावे है खानी चारे गावे है खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गावे है जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस पावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात शाह सहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पत चोली।

आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध संजोग वजोग दोए कार चलावह लेखे आवह भाग आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवें चलावै जिव होवै।

आद अनिल अनाद अनाहक जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए पंडार जो किस पाया सो एकावार कर कर वे कह सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सया देश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी पौ लख हो लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एक राहे पत पवड़िया चढ़िया हुए अतीस सुन गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नदरी।

जोर ना जीवन मरन नह जोर, जोर ना राज माल मन शोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुट्टे संसार, जिस हाथ जोर कर वेख सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्म।

जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आख हो कर्म। केते पवन पानी वह संतर, केते कान महेश, केते बर में काड़त करिय है।

नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड इथे नाद बनोद कोड आनंद सर्म खंड की वाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे

राम रहया भरपूर कितै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथनी जाहे ना ओहे मरह।

वेद हथियार पाओ खला अग्न तप ताओ पांडा पाओ अमृत तित ताल करिए शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर कर्म तिन कार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत।

पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुदर तेरा केहा सो कर केहा जित बह सर्ब संभाले

सोई सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन अपाई कर कर देखे कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह सहा पत साहिब

सिखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरन संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया।

सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ, जनन पिता लोक सुत बनता, हुए न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पहु करिया, उडे उड़ आवे सह कोसा, तिस पासे बचरी शरिया, तिन कवन खलावे कवन चगावे, मन मह सिमरन करिया, सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा वरिया, राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब त्यावह तुद जी।

तुझ जी, जन नानक तिन कुर्बाना, हर त्यावह है हर त्यावह तुझ जी, से जन जुग मह सुखवासी, से मुक्त भये, जिन हर त्याया जी, तिन तूती जम की फासी, जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिन का भउ सब गवासी, जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनक अनेक अनंता, तेरी अनक करह हर पूजा जी, तप ताप है जप है बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई, तुद आपे पावे सोई वरतै जी, तू आपे करह सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नान

ज्यों हुआ साहिब स्यों मेल, कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिया नानक से दे आवन। राग या

सो कर राख वडाई तोय रहाउ विसे चसिया कड़ियां पहरा थिती वारी माह होआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेश।

क्रोध लगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडाही पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मन

साकत हर रस साधना जानिया, इन अंतर हों मैं कंडाही, ज्यो ज्यो चल है चुभै दुख पाव है, जमकाल सह सिर डंडाही, हर जन हर हर नाम सुमानी, दुख जन्म मरण भव खंडाही, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही, हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डाही, जन नानक नाम

करियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए प्यावै एहो रस अकथ कथा तिन जानी जा को आए सोई बिहाजो हर गुरु।

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग श्री राग महला पहला कर पहला मोती ता मंदर उसरे रतनी ता होए जड़ाऊ कस्तूर को अगर चंदन लीप आवे चाऊ मत देख भूला विसरे तेरा चेतना आवे नाउ हर बिन जियो जल बल जाऊ मैं अपना गुरपूछ देखिया अवर नाही थाऊ रहाऊ धरती ता हीरे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ाऊ मोहनी मुख मणि सोहै करे रंग पसाऊ मत देख भूला विसरे तेरा चेतना आवे नाऊ सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद आखा आऊ गुपत प्रगट होए बैसा लोक राखे भाव मत देख भूला विसरे तेरा चेतना आवे नाउ सुल्तान हुआ मेल लश्कर तख्त राखा पाऊ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाऊ मत देख भूला विसरे तेरा चेतना आवे नाउ श्री राग महला पहला।

नानक तिन कै संग साथ वड्यां स्यों क्या रीस जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीस श्री राग महला पहला लभ कुत्ता कूड़ चूहड़ा ठग खादा मुरदार पर निंदा परमल मुख सुधी अग्न क्रोध चंड।

जित सेवियै सुख पाईऐ तेरी दरगाह चलै मान रहाउ सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा नाम सुनह वखाण है जेतड़ी हौ तिन बलिहारै जाउ ता मन खीवा जानिऐ जा महली पाए थाउ नाउ नीर चंगियाईयां सत परमल धनवा।

हारी है, डर गया क्या हुई। श्री राग महला पहला, गुणवंती गुण वीथर, अवगुणवंती चूर, जे लोड़ है वर कामणी, नह मिलिए फिर कूर, ना बेड़ी ना तुलहड़ा, ना पाइए फिर दूर, मेरे ठाकुर पूरे तख्त अडोल, गुरमुख पूरा जे करे, पाइए साच अतोल, रहाउ प्रभ हर मंदर सोहना, तिस मेहमानक लाल, मोती हीरा निर्मला, कंचन कोटरी साल, बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो, गुर हर ध्यान निहाल, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुलहा हर नाम, गुर सर सागर बोहितो, गुर तीरथ दरियाओ, जे तिस भावे उजली, सत सर नामन जाओ, पूरो पूरो आखिए, पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहावन, पूरे आस निरास, नानक पूरा जे मिले, क्यों घाटे गुणतास, श्री राग महला पहला, आव भैणी गल मिले, अंक सहेलड़िया, मिलके करह कहानिया, समरथ कंतकिया, साचे साहिब सब गुण, अवगण सब असहा, करता सब को तेरे जोर, एक शब्द बीचारी है, जा तू ता क्या होर रहाओ, जाए पुछो सुहागणी।

केता आखण आखिया आखण तोट ना होए मंगण वाले केतड़े दाता एको सोए जिसके जी प्राण है मन वस्य सुख होए।

लहै दरगाह झूठ खुआर रहाउ आप सुजान ना भुलै सच्चा वड किरसान पहला धरती साधकै सच नाम दे दान नौ निध उपजै नाम एक कर्म पवै निशान गुर कौ जान ना जाने क्या तिस चज अचार अंधलै नाम वसारिया मनमुख अंध गुबार आवन जान ना चुकई।

सारे सच मिले गुरमत पल्ले पाए, सो नर जमे ना मरे ना आवे ना जाए, नानक दर प्रधान सो दरगाह पैंदा जाए। श्री राग महल पहला, तन जल बल माटी भया, मन माया मोहे मनूर, औगण फिर लागू पए कूर बजावे तूर, बिन शब्द परमाई है दुबदा डोबे पूर, मन रे शब्द करहो चित लाए, जिन गुरमुख नाम ना बूझिया मर जन्मे आवे जाय। रहाउ तन सूचा सो आखी है जिसमें साचा नाउ, भै सच राती देहोरी जेहवा सच सुआउ, सच्ची नदर निहाली है

चाहे गुरमुख नाम सलाही है, हौ मैं निवरी पाहे रहाव। सुन सुन गंडन गंडी है, लिख पढ़ बुझह पार। तृष्णा अहनिस अगली, हौ मैं रोग विकार। ओहो वे परवाहु अतोलवा, गुरमुख कीमत सार। लख सियाण पजे करी, लख सियों प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रापिया।

दास तू सर्व जिया प्रित पाल ही लेख सास ग्रास अंतर गुरमुख तू वस है ज्यों पावे त्यों निर्जास जियरे राम जपत मन मान अंतर लागी जल बुझी

जित कर जाई है तित जीवनिया मर मार अनहद शब्द सुहावने पाई है गुर विचार अनहद बाणी पाई है कह मैं होए बनास सतगुर सेवे अपना हौ सद कुरबान है तास खर दरगाह पैनाई है मुख हर नाम निवास जह देखा तह रव रहे शिव शक्ति का मेल त्रिहो गुण बंदी देहरी जो आया जग सो खेल बेजोगी दुख विछड़े मन मुख लह ना मेल मन बैरागी घर वसै सच भै राता होए ज्ञान महारस भोग वै बहुड़ भूख ना होए नानक एहो मन मार मिल भी फिर दुख ना होए श्री राग महला पहला एहो मनो मूर्ख लोभिया लोभे लगा लुभान।

तरात गुरमुख हर धन जान सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान नित अहनस हर प्रभ सेविया सतगुर दिया नाम कूकर कूड़ कमाई है गुर निंदा पचै पचान भरमे पूला दुख कणु जम मार करै खुलहान मनमुख सुख ना पाई है गुरमुख सुख सुभान ऐथै धंध पटाई है सच लिखत परवान।

जिस हर मन वसै तिस मेले गुर संयोग काया कामन जी करी भोगे भोगण हार इस स्यो नेहो ना की जई जो दिसै चलन हार गुरमुख रवह सुहागणी सो प्रभ सेज पतार चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल परगासिया अमृत भरिया अगाए नानक सतगुर मीत कर सच पाव है दरगाह जाए। श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी लाई तुलिए पूरे तोल कीमत किने ना पाई है रिद मानक मोल अमोल पाई रे हर हीरा गुर माहे सत संगत सत गुर पाई है अहनस शब्द सलाहे रहाओ सच वखर धन रास लै पाई है गुर परगास ज्यों अगन मरै जल पाए त्यों तृष्णा दासन दास जम जंदार ना लगई इउं भौजल तरै तरास गुरमुख कूड़ ना पावई सच रते सच पाए साकत सच ना

सुख होए खोटे वणज बणजिए मन तन खोटा होए ठाही पाथे मिर्ग ज्यो दुख घणो नेतरोए खोटे पोते ना पवह तिन हर गुर दर्स ना होए खोटे जात ना पत है खोट ना सी जस कोए खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए नानक मन समझाई है गुर कै शब्द साला राम नाम रंग रतिया पार ना भरम तिना हर जप लाहा अगला निरपव हर मन मा

आपे रसिया आप रस आपे रावण हार आपे होवे चोलड़ा आपे सेज पतार रंग रत्ता मेरा साहिब राव रहिया भरपूर रहाओ आपे माछी मछली आपे पानी जाल आपे जाल मणकड़ा आपे अंदर लाल आपे बहु बिदरंगला सखिए मेरा लाल नेत्र वै सुहागनी देख हमारा हाल।

बीज कर्मा करो सलल अपाउ सारिंग पानी मन किरसान हर हृदय जमाए लै इउं पावस पद निर्वाणी काहे गर्भस मूड़े माया।

का तू ही कित कहो साहिब आवह रोहे, जे तू साहिब आवह रोहे तू ओना का तेरे ओहे। असी बोल बगाड़ बगाड़ बोल, तू नदरी अंदर तोलह तोल, जह करनी तह पूरी मत, करनी बाजहों घटे घट काट।

क्या होए आपे सच भावै तिस सच अंधा कच्चा कच न कच रहाओ जा के रुख बिरख आराओ जेहि धात तेहा तिन नाओ फुल भाओ फल लिखिया पाए आप बीज आपे ही खाए कच्ची कंद कच्चा विच राज मत

कमावणी सच घट प्रगट होए अंतर जिस कै सच वसै सच्चे सच्ची सोए सच मिले से ना बिछड़ है तिन निज घर वासा होए मेरे राम मैं हर बिन अवर ना कोए सतगुर सच प्रभ निर्मला

भाई को ना मिले फिर आवे जाय, सब मह एक वर्तदा एको रहिया समाई, जिसनो आप दयाल हुई सो गुरमुख नाम समाई। पढ़ पढ़ पंडित जोत की वाद करह विचार, मत बुद्ध भवी ना बुझई अंतर लोभ विकार। लख चौरासी भरम दे भ्रम भ्रम हुए खुआर, पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार।

परसु हुए ज्योति ज्योत समाय जिनको पूर्व लिखिया तिन सत गुर मिलिया आय मन भुखा भुखा मत करह मत तू करह पुकार लख चौरासी जिन सिरी सब सह दे आधार निरभउ सदा दयाल है सब ना करदा सार नानक गुरमुख बुझी है पाई है।

ये निर्मले हौ सद बलिहार है जास हृदय जिनकै हर वसै इत घट है परगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याए तुर मस्तक जिनको लिखिया ते गुरमुख रहे लिव लाए रहाओ हर संत हो देखो नदर कर निकट वसै भरपूर

समाए, तिनका जन्म सफल है, जो चल है सतगुरु पाए, कुल उधार है अपना, धन जनेंदी माए, हर हर नाम ते आई है, जिसनो कृपा करे रजाए, जिन्नी गुरमुख नाम ते आया, विचो हो आप गुआए, वो अंदर हो बाहर हो निर्मले, सच्चे सच समाए, नानक आए से परवान है, जिन गुरमति हर त्याय, श्री राग महला तीजा, हर भगता हर तन रास है, गुरपूछ कर है वापार, हर नाम सलाहन सदा सदा, वखर हर नाम आधार, गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, हर भगता अतुट भंडार, भाई रे इस मन को समझाए, हे मन आलस क्या करह, गुरमुख नाम त्याय रहाओ, हर भगत हर का प्यार है, जे गुरमुख करे विचार, पाखंड भगत ना होवे, दुबदा बोल खुआर, सो जन रलाया ना रले, जिस अंतर विवेक विचार, सो सेवक हर आखी है, जो हर राखे उरतार, मन तन सौंपे आगे धरे, हो मैं विचो मार, तन गुरमुख सो

अनदिन नाम त्याय रहाउ। साची मैल ना लागई मन निर्मल हर त्याय। गुरमुख शब्द पछाणिय हर अमृत नाम समाय। गुर ज्ञान प्रचंड बुलाया अज्ञान अंधेरा जाय। मनमुख मैले मल परी हम

अहनस पूर रही नित आसा, सतगुर सेव मोह परजल, घर ही माहे उदासा रहाउ, गुरमुख कर्म कमावे बिगसै, हर बैराग आनंद, अन दिन भगत करे दिन राती, हौ मैं मार निचंद, वड्डे भाग सत संगत पाई, हर पाया सहज आनंद, सो साधु बैरागी सोई।